मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 7, तदनुसार 28 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: जगत ईश्वरक सक्रिय प्रभुक रचना थिक। जगत के ससीम आ असीमक परिसीमन सेहो कह सके छी। कोनो ससीम स्वतः पूर्ण नहीं भ सके छी, ओकरा पूर्णता असीम द्वारा प्राप्त होइ छैक। जँ गतिशील पक्षक अन्वेषण करी तऽ देखब जे हमरा लोकनिक प्रवृत्ति विशुद्ध चेतनाक अनुभव के त्यागबा दिस भ जाइ छै। विशुद्ध चेतना हो वा गतिशील चेतना, एके सत्यक ई दू भिन्न भिन्न स्थिति थिक। सर्वव्यापी चेतना में दुनू संगहि उपस्थित रहै छै। जगतक ईश्वर पर निर्भरता उपनिषद में अनेक प्रकार सिद्ध कयल गेल अछि। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के तज्जलान कहल गेलै यऽ। तज्जलान शब्द तत् ज ला आ अन केर संयोग से बनल अछि। तत् अर्थात ओ, ज अर्थात जन्म देनाई, ला अर्थात स्वयं में लीन केनाई आ अन अर्थात स्वयं में स्थित रखनाई। तज्जलानक अर्थ भेल ओ जे जन्म दिए, अपना में लीन क लिए आ स्थिर राखे। अहिना वृहदारण्यक उपनिषद में सत्यम शब्दक व्युत्पत्ति दैत तर्क कयल गेल अछि जे सत्यम शब्द तीन अक्षरक योग सँ बनल अछि, स ती आ यम। प्रसंगक रोचकता ई अछि जे एहि तीनू आखर में पहिल अर्थात स आ अंतिम अर्थात यम के सत्य आ मध्यवर्ती आखिर ती के असत्य कहल गेल छैक। मध्य तो अनृतम, स भेल सृजन आ यम भेल लय। सृष्टि ब्रह्म सँ उत्पन्न होइ छ आ ब्रह्म में मिल जाइ छ। बीचक जे स्थिति थिक ओ दुनू दिस अर्थात आदि आ अंत सँ आवृत अछि। स्थिति असत थिक किंतु ओकर उपस्थिति मात्र एही कारण छैक जे ओ आगा आ पाछा सत्य सँ रक्षित अछि। विश्व कोना अपन केंद्रीय मूल सँ उत्पन्न होइ छ एकरा स्पष्ट करक लेल अनेक रूपक प्रस्तुत कयल गेल अछि। जना मकड़ा अपना शरीर सँ तार बाहर करै छ आ पुनः अपना शरीर में ओहि तार के समेट लै छ। जना पृथ्वी सँ अनेकानेक उद्भिज उत्पन्न होइ छ आ पुनः पृथ्वी में समाहित भ जाइ छ। तहिना ओहि अविनाशी सत्ता जकरा ब्रह्म कहल जाइ छ सँ सृष्टि उत्पन्न होइ छ आ कल्पांत में पुनः वही ब्रह्म में लीन भ जाइ छ। जना अग्निक प्रज्वलन सँ असंख्य स्फुल्लिंग प्रस्फुटित होइ छ, तहिना ब्रह्म सँ अनेक सत्ताक उत्पत्ति होइ छ जे उत्पन्न भ पुनः ओहि ब्रह्म में लीन भ जाइ छ। ई अनेक सत्ता ओहिना ब्रह्मक अंश थिक जना समुद्र में उत्पन्न लहरि समुद्रक अंग होइ छ। जगतक सब संभावना आदि सत्ता में स्वीकार कयल गेल अछि। ईश्वर जगतक रचना कहाँ करै छ? ओ तो स्वयं जगत बनि जाइ छ। तैं सृष्टि के ब्रह्मेक अभिव्यक्ति कहल गेल छैक।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। क्षमा करेंगे, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 होने को हैं। अब समय है कृषि चर्चा के कार्यक्रमों का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मुनि कुमारी की वार्ता, मिट्टी जांच का महत्व।
1: कृषि चर्चा में सब किसान भाई के मोनिक स्नेहपूर्वक नमस्कार। किसान भाई खेती करो में आब जागरूक भ रहल छथिन, आधुनिक ढंग से खेती करित छथि आ माटिक जांच कखन करेबा के चाही सबटा जानकारी राखित छथिन। किसान भाई माटिक जांचक लेल सबसे आवश्यक गप ई अछि जे माटिक सही नमूना लेबा के चाही। माटिक नमूना गलत हैत त परिणाम गलत भेटत। खेतक उर्वरा शक्ति के जानकारीक लेल ध्यान देबा के गप ई अछि जे परीक्षणक लेल जे माटिक नमूना लेल गेल अछि ओ अहाँ के खेत के सब हिस्सा के प्रतिनिधित्व करे। किसान भाई खेतक जे भाग देखबा में माटिक किस्म आ फसिलक आधार पर पानिक निकास आ फसिलक उपजाऊ दृष्टिकोण से भिन्न हुए ओहिक प्रत्येक भागक निशानदेही लगाबी आ प्रत्येक भाग के खेत मानी। माटिक सफल नमूना लेवा के लेल माटि परीक्षण ट्यूब फावड़ा या खुरपी के प्रयोग किसान भाई कऽ सकैत छथिन। सबसे पहले माटिक ऊपर से घास फूस के साफ करी, जमीन के सतह से हल्के गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर तक मृदा के लेल माटिक 1 सार टुकड़ी लऽ ली। जँ खुरपी के प्रयोग करे के हुए तब भी आकार के 15 सेंटीमीटर गहीर खद्दा बनाबी। आब एक दिस से ऊपर से नीचा तक 10 से 12 अलग अलग स्थान से माटिक टुकड़ा ली आ एकरा साफ बर्तन या कपड़ा में जमा करी। जँ ठार फसिल में नमूना लेवा के हुए तब माटिक नमूना पौधक कतारक बीच खाली जगह से ली। किसान भाई माटिक जांच से खेत में उपलब्ध तत्व पीएच स्तर आ नमी के सटीक जानकारी भेटत अछि। एहि से किसान भाई के सही मात्रा में खाद आ उर्वरक चुनय में मदद भेटत अछि, जाहि से लागत कम होइत अछि आ उत्पादन बढ़त अछि। किसान भाई जांच से पता चलत अछि कि माटि में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आ सूक्ष्म पोषक तत्व के कतेक आवश्यकता अछि। एहि से सिर्फ आवश्यकता के अनुसार खाद के उपयोग होइत अछि आ अंधाधुंध उपयोग से होबय वाला बर्बादी रुकैत अछि। सही उर्वरक के उपयोग से खेती के लागत कम लागत अछि आ संतुलित पोषण भेटै से फसिलक उत्पादन बढ़त अछि। खेतक माटिक पीएच मान जे अम्लीय या क्षारीय स्तर जैविक कार्बन के पता चलत अछि। जँ माटि में अम्लता या लवणता बेसी अछि तो ओकरा सुधारे के सही मात्रा में जिप्सम या चूना एहन सुधारक देल जा सकैत अछि। किसान भाई माटिक क्षमता आ जांच रिपोर्ट के आधार पर किसान भाई ई निर्णय लऽ सकै छथिन कि हुनकर खेतक

0: फसिल या सब्जी में सबसे बेसी उपयुक्त कौन अछि? रासायनिक खादक बेसी उपयोग से माटि पानि प्रदूषण के कारण बढ़त अछि। वैज्ञानिक परीक्षण आधारित खेती से पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहत अछि। एहि के संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: मिट्टी जांच का महत्व, अभी आप मुनि कुमारी की ये वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब कुछ क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने

0: घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर मोहम्मद यासिन की भेंट वार्ता माइग्रेन। भेंट करता है संजय कुमार।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में चर्चा का विषय है माइग्रेन यानी अर्ध कपाली। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर यासीन, ये माइग्रेन जब हम बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका अर्थ क्या है?
3: माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है। इसके बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इसे अर्ध कपाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमूमन ये दर्द जो है आधे सर से शुरू होता है। ये सिर के दाएं या बाएं भाग में हो सकता है और ये अपना स्थान बदल सकता है और ये सिर के एक तरफ होने के साथ साथ और भी बहुत सारी इसकी लक्षण है। सर दर्द के साथ उल्टी हो जाना, 4 घंटे से ज्यादा का सर दर्द रहना, फोनोफोबिया या आवाज का पसंद ना आना, फोटोफोबिया या रोशनी का पसंद ना आना, ज्यादा दूर तक सफर करने के बाद दर्द शुरू होना। पुरुषों की तुलना में माइग्रेन महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होता है। कुछ महिलाओं में मासिक शुरू होने से 3 दिन पहले, मासिक खत्म होने के 3 दिन बाद तक ये कुछ महिलाओं में दर्द की संभावना माइग्रेन वाली ज्यादा हो सकती है।
2: अन्य जो सर दर्द है उससे और माइग्रेन का जो दर्द होता है सर दर्द, उसमें क्या फर्क है?
3: अन्य दर्द जो होता है वो सिर के किसी हिस्से में हो सकता है। माइग्रेन का दर्द टेम्पोरल साइट माने कान के ऊपर वाले हिस्से में विशेषकर होता है। दर्द के साथ उल्टी होना और ये थ्रोबिंग हेडेक होता है, सिर में लगेगा धड़कन के साथ दर्द का होना, इसको थ्रोबिंग हेडेक बोलते हैं। ये हो सकता है। माइग्रेन का दर्द 4 घंटे या उससे अधिक रह सकता है और सर दर्द के साथ फोनोफोबिया या फोटोफोबिया होना ये इसकी खासियत है। और किसी प्रकार के दर्द में ये स्पेशल टाइप का रोशनी या ध्वनि से जो एक तरह का दर्द बढ़ जाने की समस्या और दर्द में नहीं होती है। अदर ऑरा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्रोमल स्टेज, माइग्रेन में दर्द शुरू होने से पहले लक्षण आ जाना, आँख के सामने कुछ चमकना या आँख के सामने अंधेरा जैसा छा जाना, कुछ लोगों में हाथ के या चेहरे के कुछ भाग में सूनापन या और तरह का दिक्कत शुरू हो जाना, प्रोड्रोमल फेज और तरह के सिर दर्द में नहीं होता है, ये माइग्रेन की खासियत है।
2: कब कब हो सकता है ये दर्द?
3: इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये दर्द 1 सप्ताह में या 1 महीने में कितने बार आ रहा है? अगर ये दर्द 1 महीने में 15 दिनों से कम का रह रहा है तो इसे सिंपल माइग्रेन बोलते हैं, या ये दर्द 1 महीने में 15 दिनों से ज्यादा रह रहा है तो इसे हम लोग क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं।
2: कब डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है, कब दवाएं शुरू करने की जरूरत होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
3: जी, इसमें दवाएं 2 प्रकार की दी जाती हैं। एक तो तुरंत दर्द में आराम दे दे और उल्टी जो होता है उसमें आराम दे दे, एनाल्जेसिक और एंटीएमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो तुरंत आराम के लिए एक्यूट फेज के लिए दिया जाता है। और क्रोनिक फेज के लिए लंबे समय तक आराम के लिए दोबारा दर्द का अटैक नहीं आए उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन दिया जाता है, जो डेली रोजाना लेने की जरूरत है क्योंकि आगे का दर्द का अटैक नहीं हो। तुरंत दर्द वाली दवा तो आपको लेनी पड़ेगी जब आपको दर्द हो तो, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस आगे की क्या दर्द को रोकने वाली जो दवा है वो

0: खरीदने के लिए उसका क्राइटेरिया होता है कि अगर महीने में 3 दिन से ज़्यादा वैसा व्यथित करने वाला दर्द हो जिससे आपकी रोजमर्रा के काम करने में रुकावट आए, तब प्रोफाइलेक्सिक मेडिसिन जो है वो लगातार लेने पड़ेगी। दर्द रहित अवधि, बिना दर्द का जो समय अवधि है वो 6 महीना तक होना चाहिए, तब तक दवा लेना पड़ेगा। कम से कम 6 महीना तक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन चलेगा। जो माइग्रेन से ग्रसित लोग हैं उन्हें एक हेडेक डायरी बनाना चाहिए। जिस दिन दर्द हुआ उससे पहले उन्होंने क्या ऐसा खाया या क्या ऐसा काम किया या किस चीज़ से ऐसे एक्सपोज हो गए जिसकी वजह से दर्द बढ़ गया। कुछ लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों खाने से दर्द हो सकता है, जैसे किसी को चॉकलेट खाने से, किसी को प्रॉन या झींगा मछली खाने से, किसी को ब्रिंजल खाने से, किसी को कॉटेज चीज खाने से या रेड वाइन पीने से ये दर्द हो सकता है, किसी को बार बार देर तक टीवी देखने से या मच्छर वाली जो अगरबत्ती आती है या मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड आता है उसके सुगंध से ये दर्द हो सकता है। तो ये डायरी बना करके उसे अपने डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे हम लोग इसका ये निष्कर्ष निकाल सके कि किस चीज़ से आपको बचना है।
1: डॉक्टर मोहम्मद यासीन, आपने माइग्रेन को लेकर इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

संवेद स्वर में अभी आप देश वंदना सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति वंदना।

अभी आप हरिहरन के स्वर में ये प्यारा सा भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में ये भजन।

यह स्वर था सुरेश वाडकर का। आइए अब सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

खेद है ये भजन हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवारी। सुबह 11:00 मन की बात आप सुन सकेंगे। सुबह 11:30 पर मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण, इसका पुनर्प्रसारण रात्रि आठ बजे आप सुनेंगे। इसे एक बार फिर से सुनिए। सुबह 11:30 पर मन की बात के मैथिली अनुवाद का प्रसारण किया जाएगा, इसका पुनर्प्रसारण होगा रात्रि 8:00। दिन के 12:00 आप सुनेंगे सखी बहिन के बाद दिन के 12:30 पर मैथिली नाटक घसल अठन्नी। दिन के 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 1:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। दोपहर 3:00 विद्यापति गीत और संध्या 5:00 गैर फिल्मी गजल या गीत। संध्या 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्मी गजल या गीत। विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गुनगुनायत मन संध्या 6:30 पर। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7:00। देशभक्ति गीत रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार,
0: और साथ में मेरा भी नमस्कार करें स्वीकार कल्याण कुमार झा का। और आज हम हमेशा से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते रहे हैं एक सुविचार से। तो आज का सुविचार हमने लिया है तुलसीदास के दोहे से कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। यानी धर्म के मूल अगर कही जाए कि धर्म का मूल क्या है तो दया है। अगर हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति दया है, दीनहीन के प्रति संवेदना है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति दया की भावना है, तो इससे बढ़कर धर्म कोई और नहीं है। वहीं तुलसीदास जी अभिमान को पाप की श्रेणी में रखा है कि किसी भी प्रकार का अभिमान अगर हम अपने अंदर रखते हैं, अपने आप में रखते हैं, चाहे वो अभिमान यानी घमंड विद्या का हो, बुद्धि का हो, धन का हो, या अपनी पदवी का हो, या अपने धन वैभव का हो, तो वह पाप का कारण बनता है। तो इस विचार के बाद अब रुख करते हैं आज यानी 28 जून इतिहास के आईने में क्या कुछ झलक दिखलाता है उस पर एक नज़र। 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 1999 में रोमानिया ने अपनी वायुसेना में रूसी विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। 2003 में इसराइल फिलिस्तीन पश्चिम एशिया में खून खराबा रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए। 2004 में अमेरिकी गठबंधन की सेना ने इराक की अंतरिम सरकार को संप्रभुता सौंपी। 2005 की बात करें तो रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा। 2007 में जाफना के पूर्व प्रधानमंत्री किची मियाजावा का निधन हुआ। 2008 में बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक TS नारायण स्वामी को इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वेतन आयोग ने पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारियों को 8 जनवरी 2008 को मूल वेतन पर 30% की अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी की। लंदन में एक समारोह में आज ही के दिन 2008 ईस्वी में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया। अब एक नज़र आज के दिन कुछ महान हस्तियों के जन्म पर। तो 1921 ईस्वी में पी वी नरसिंह राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्म हुआ। और 1883 में शिवप्रसाद गुप्त जो हिंदी के एक समाचार दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। आज के दिन कुछ महान हस्तियों के निधन की बात करें तो 2012 में अमर गोस्वामी जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार थे, उनका निधन हुआ। कैप्टन नीके झाकू महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी थे, इनका निधन 1999 में हुआ। और PC महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे, इनका निधन 1972 ईस्वी में हुआ। तो

ये था आज का दिन, इतिहास के आईने में क्या कुछ झलक दिखलाता है। और आज पीवी नरसिम्हा राव के जन्मदिवस को गरीब दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो गरीब दिवस भी मनाया जा रहा है। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर, जिसके अंतर्गत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं मैथिली गीत। तो आइए सुनते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।

0: आदिशक्ति तू माया। ममता ठाकुर के स्वर में ये मैथिली गीत अभी हम सभी सुन रहे थे, भक्ति में वातावरण में। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं आशीष कुमार सिंह।
1: धन्यवाद कल्याण जी। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। सौर बाजार और बैजनाथपुर क्षेत्र में मुहर्रम के लेल एक दिनक मेला का आयोजन कैल गेल। गाम में लाठी और पारंपरिक खेल प्रदर्शित कैल गेल, जेकरा देखे के लेल बहुत संख्या में दर्शक एलत। एहि क्रम में तजिया जुलूस सेहो निकालल गेल। सहरसा में भीषण गर्मी के बीच बरखा भेल, जे कनी राहत लौ के आयल। बरखा के बाद पानी जमा भेला से नगर निगम के बहुत रास मोहल्ला सब के स्थिति खराब भ गेल छल। मौसम विभाग अगला 5 दिन में तापमान में वृद्धि के भविष्यवाणी केने अछि। सहरसा जिला के कासनगर और कनरिया थाना भवन निर्माण के लागत में संशोधन कैल गेल अछि। सुपौल में 28 जून से 2 जुलाई धरि 5 वर्ष तक के बच्चा सब के लेल पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाओल जायल। जिला पदाधिकारी सावन कुमार अभियान के शुभारंभ करतैत। बूथ के संग संग घर घर जाकर टीकाकरण देल जतन। सुपौल के लोग सब के भीषण गर्मी और उमस से राहत भेटे के उम्मीद छन। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के पट्टी पूर्वी चंपारण पहुंच चुकल अछि और अगला 48 घंटा में सुपौल समेत कोसी क्षेत्र में सक्रिय होय के संभावना व्यक्त कयल गेल अछि। सुपौल में किसान सब के लेल उर्वरक वितरण प्रक्रिया के पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनवे के लेल QR कोड आधारित ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लागू हैत। किसान सब के खाद कीने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करा पड़तन। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बरखा के तीव्रता कम होय से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज कयल

लगा रहल अछि। एहिसँ प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग राहत के सांस लेने छथि। दुनू तटबंध पूरी तरीका से सुरक्षित अछि। अंधराठाड़ी प्रखंड में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद के 7 मामला के सुनवाई भेल। 6 मामला के तुरंत वह काल में निपटारा भ गेल, जखन कि 1 मामला दस्तावेज के कमी के कारण लंबित राखल गेल अछि। मधुबनी नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के बैसार में मेयर अरुण राय के अध्यक्षता में भेल। बैसार में शहर के विकास और नागरिक सुविधा सब से जुड़ल बहुत रास महत्वपूर्ण प्रस्ताव सब पर विचार कैल गेल और स्वीकृति प्रदान कैल गेल। एहि में सबसे अहम निर्णय अर्बन चैलेंज फंड योजना के अंतर्गत टाउन क्लब मैदान में 7 मंजिला मल्टीप्लेक्स निर्माण के प्रस्ताव के लऽ कऽ आयल। समिति के मंजूरी भेटे के बाद आब ई प्रस्ताव विभाग के पठाओल जायत। बैसार में नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती के अनुसार प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स शहर के आधुनिक जरूरत के ध्यान में राखि के विकसित कैल जायत और एकर अलावा नगर निगम के दिशा हाल में निर्मित पार्क के सौंदर्यीकरण के सेहो निर्णय लेल गेल। पार्क के पूर्वी हिस्सा के विकसित कऽ के ओतय सांस्कृतिक गतिविधि के आयोजन के व्यवस्था करे के लेल भूतल स्तर पर आवश्यक निर्माण करबे पर सेहो सहमति बनल। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग 3 जुलाई 2025-27 के पीजी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा के आयोजन कऽ रहल अछि। पर्यावरण कानून और नीति सहित विभिन्न विषय के परीक्षा GMDPL महिला कॉलेज मधुबनी में होयत। मिथिला ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लेल दरभंगा जिला के 3 प्रखंड दरभंगा सदर बहादुरपुर और केवटी अंचल के 102 मौजा लेल गेल छल। आब एकर रजिस्ट्री जुलाई से शुरू होय के संभावना अछि। जमीन के खरीद बिक्री बिहार राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से कयल जा सकैत अछि और बिना निबंधन और स्टाम्प शुल्क के जमीन बेचल जायत। एकर प्रक्रिया कयल गेल अछि कि भू स्वामी सीधा आवास बोर्ड के प्रस्ताव देतैत, 7 में प्रारंभिक जाँच होयत और मूल के अनुसार DM या आयुक्त एकर कार्रवाई करतत और मंजूरी भेटला के 7 में भुगतान और रजिस्ट्री कैल जात। स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क नहीं लागत। भुगतान और रजिस्ट्री समयबद्ध तरीका से कैल जात। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र सबके सर्वांगीण विकास के बढ़ावा दे के उद्देश्य से दरभंगा जिला के 19 मॉडल स्कूल में बैंड सेट उपलब्ध करबे के तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि। ई पहल के उद्देश्य छात्र में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और सांस्कृतिक प्रतिभा का विकास करना अछि। ई विद्यालय सब में आधुनिक बैंड उपकरण उपलब्ध कराओल जायत। छात्र सब के बैंड टीम के गठन कयल जतन। बैंड सेट में बिगुल, बेस ड्रम, स्नेयर ड्रम संगे आन वाद्य यंत्र सब शामिल भ सकैत अछि। एकर उपयोग छात्र राष्ट्रीय पर्व, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में करतत। ई निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी सब उपकरण के आपूर्ति करतत। आपूर्ति BRC आ शहरी संसाधन केंद्र के माध्यम से कैल जायत। योजना के अंतर्गत विद्यालय में विधिवत बैंड टीम के गठन कैल जायत। एकर लेल प्रधानाध्यापक के टीम लीडर, स्काउट शिक्षक और बैंड टीम के सदस्य के सूची विभाग को उपलब्ध करवा पड़तन। उपकरण प्राप्त होने के बाद विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दिश से एकरा सत्यापन कराओल जायत। दरभंगा जिला के सबटा पंचायत में आई भोरे 10 से 12 धरि पंचायत विकास दिवस के आयोजन कयल जायत। प्रत्येक माह के अंतिम रवि के आयोजित होय वाला ई कार्यक्रम के सबटा तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि। कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण सबके सक्रिय भागीदारी से वर्ष 2030 धरि सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त केनाइ अछि। सहरसा स्टेशन के बहुत पैघ टर्मिनल स्टेशन बनाओल जायत। DRM ज्योति प्रकाश मिश्र यार्ड रिमॉडलिंग काज के निरीक्षण कैलत आ एहि के प्रगति के तेज करे के लेल कहलत। 2027 धरि सबटा काज पूरा कऽ लेबाक योजना अछि। सहरसा जिला में आइ 28 से 2 जुलाई धरि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलत। 4,32,901 बच्चा के पोलियो खुराक पियाबे के लक्ष्य राखल गेल अछि। सरायगढ़ के बिहारी गुरमेता उच्च माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह कैलत। बिस्पी में संचार टावर पर ठनका खसे से नेटवर्क सिस्टम ठप भ गेल। मधुबनी में 30 के एक दिनक नियोजन कैंप के आयोजन होयत। एहि में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट युवा भाग लऽ सकैत छथि।

0: सुरक्षा गार्ड के लेल साक्षात्कार लेल जायत। 50 पद अछि आ एक वेतन 17,000 से 25,000 रुपया प्रति महीना देल जेतन। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल। आब अगर किछु मौसम के बारे में हमसब सेहो जानकारी प्राप्त कऽ ली।
1: तो श्रोताओ, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 26 से 30 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर 29 जून तक के दरमियान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। इस दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की

0: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रताप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 26 से 30 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर 29 जून तक के दरमियान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। इस दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो 80 से 85% तथा दोपहर की सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में मुख्यतः पूर्वा हवा 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान और लोकल अपडेट्स के अंतर्गत हम अगर जानकारी प्राप्त करते हैं
1: तो 33 और 11 की भी विद्युत शक्ति उपकेंद्र जेल से निकले वाला 11 के भी सैदनगर फीडर में एलटी लाइन शिफ्टिंग का काज किया जा रहा है, क्योंकि ई काज आज 6 बजे भोर से शुरू भेल अछि और 9 बजे धरि चलत, जकर कारण इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से हनुमान मंदिर धरि के जे छै से खास कऽ के किसान नर्सरी और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से जुड़ल ट्रांसफार्मर के विद्युत आपूर्ति 3 घंटा धरि बाधित रहत।
0: और बिजली पानी नगर में सफाई पेयजल स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हम श्रोताओं से साझा कर दें। ये मोबाइल नंबर है 6202777740 पर शिकायत कर सकते हैं। नगर में सफाई पेयजल या स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायतों को लेकर बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर, शहर के मोबाइल नंबर की बात करें तो 7763818777, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9264456412, बेनीपुर के लिए 7633997831, इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अब रेल और विमान अपडेट की बात करें आशीष, तो सुबह 8:26 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन से। विमान अपडेट की बात करें तो सुबह 9:30 पर मुंबई जो रोज़ाना सेवा है मुंबई के लिए विमान है, सुबह 11:30 पर दिल्ली के लिए रोज़ाना, दोपहर 12:25 पर कोलकाता के लिए रोज़ाना सेवा, दोपहर 12:50 पर दिल्ली के लिए रोज़ाना सेवा, दोपहर 1:35 पर मुंबई के लिए रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को यह सेवा है, आज रविवार है, आज यह सेवा उपलब्ध है। दोपहर 3 बजे हैदराबाद के लिए रोज़ाना सेवा और शाम 4:35 पर दिल्ली के लिए रोज़ाना सेवा है। ये था विमान अपडेट। और
1: तो यकीन हम सब अहाँके किछु बहुत रास जानकारी सब आइ खास कऽ कऽ रहि बैस तऽ गतिविधियाँ गत सप्ताह की सेहो आइके दिन हम सब आनै छी, पूरा सप्ताह भरिके गतिविधिके चर्चा करै छी कि की सब होइ छै केना होइ छै आओर सङ्गे अहाँके
0: विषयों पर चर्चा भी करते हैं, कुछ प्रमुख विषयों पर, जैसे कि आज चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत विकास की कुंजी कैसे है, यानी आज हम लोग बात करेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके लाभ और आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास कैसे होता है इसके बारे में। जीवन में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आशीष, ये तो

0: हम सभी जानते हैं कि अर्थ के बगैर आप कितना भी हैं, योग्य हैं, तो सारा कुछ व्यर्थ रहता है, क्योंकि अर्थ पर ही सारी बातें निर्भर करती हैं।
1: मतलब कहाँ का कौन है कि बिना अर्थ सब व्यर्थ।
0: बिल्कुल, बिना अर्थ सब व्यर्थ। जब हम आर्थिक रूप से सशक्त रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, व्यक्तिगत स्तर से हो, या सामाजिक स्तर पर हो, या राष्ट्रीय स्तर पर हो, कोई भी देश आर्थिक रूप से जब मजबूत रहता है तभी विश्व स्तर पर उसकी पूंछ बनी रहती है और उसका मान सम्मान होता है और उसका एक वजूद बनता है। तो अपने देश में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के लिए, अर्थव्यवस्था जो दो प्रकार की होती है, एक है चक्रीय अर्थव्यवस्था और एक है रैखिक अर्थव्यवस्था। रैखिक अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था, इन दोनों के विषय में हम बात करेंगे। रैखिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक अर्थव्यवस्था भी कहलाती है, जो बनाए उपयोग करें और फेंके, बना उपयोग किए और फेंक दिए, यह है रैखिक अर्थव्यवस्था। और ये चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका सिद्धांत है बनाए उपयोग करें और पुनश्चक्रण करके फिर से उपयोग करें, तो ये है चक्रीय। यानी ये चक्र के तरह, एक बार उत्पादन हुआ फिर उसका जो है सो हम पुनश्चक्रण करके फिर उत्पादन उसको ले आए, तो यही है चक्रीय अर्थव्यवस्था।
1: सही कहलो कल्याण भाई। और आजुक नमस्कार मिथिला में हम सब जना पहले चर्चा कहिए रहल छी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत विकासक लक्ष्य के प्राप्त करबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषता गप करी तो ई अपशिष्टक उन्मूलन करैत अछि। ई अर्थव्यवस्था कचरा के कम कऽ के उत्पादक चक्र, जीवन चक्र के बढ़ा के प्राकृतिक संसाधनक क्षरण के रोकैत अछि। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा पर सेहो जोर दैत अछि और ई प्राकृतिक प्रणाली के एक समान पहुँचबाक बिना, आर्थिक कोनो नुकसान पहुँचबाक बिना आर्थिक गतिविधि के सीमित संसाधनक बेसी से बेसी केना उपभोग कयल जा सकैत अछि से सिखबैत अछि और व्यवसाय में नवाचारक माध्यम में पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत करैत ई स्थायी व्यापार मॉडल स्थापित करैत अछि जे जलवायु परिवर्तन से निपटे में मददगार होइत अछि।
0: चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास में आशीष गहरा संबंध है। यह पर्यावरणीय स्थिरता लाती है, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करके पृथ्वी के तापमान और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, संसाधन की दक्षता और पुनश्चक्रण से लागत में उल्लेखनीय बचत होती है जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिलती है, मरम्मत, रिसाइकिलिंग और हरित तकनीकों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक उत्थान में इससे काफ़ी मदद मिलती है। संसाधनों के सीमित होने और जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बीच चक्रीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां घटक उत्पाद और उप उत्पाद अपना मूल्य ज़्यादा नहीं खोते। इस प्रणाली का मूल सिद्धांत उत्पादन, उपयोग और निपटान नहीं बल्कि कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनश्चक्र करना है, जो स्थिरता के अर्थ 5R द्वारा शुरू किए गए कार्रवाई आधारित समाधानों का आधार है।
1: सही बात कल्याण भाई। और पारिस्थितिकी तंत्रक वर्तमान स्थिति अहाँ के अल्पकालीन उपभोक्ता के बढ़ावा दैत अछि जहिसँ पृथ्वी के लेल एकटा अस्थिर स्थिति उत्पन्न भऽ जाइत अछि और ई भऽ रहल अछि, हम सब देख रहल छी, लगातार भऽ रहल अछि। आजुक पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृतिक दीर्घकालीन कार्य प्रणाली सँ बिल्कुल भिन्न अछि, यानी विपरीत अछि। ई एकटा एहन प्रणाली अछि जाहिमे तत्वक न्यूनीकरण आओर पुनः उपयोग पर आ पुनश्चक्रण सर्वोपरि अछि। तैं हमरा लोकनिक अपन पूंजीक निवेश चक्रीय अर्थव्यवस्थाक अंतर्गत करी जैसे कि अहाँके पृथ्वी सेहो बचल रहे और एकटा व्यवस्था जे छै पारिस्थितिकी तंत्र के संगे संगे हमर सबके अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत भेल जाय, तै पर हम सब ध्यान दी और कार्यक्रम में ध्यान दी कि रवि अछि, रवि दिन हम सब अहाँके आने छी गतिविधियां गत सप्ताह की, तऽ गतिविधियां

0: सप्ताह की लोक उपस्थित छथि कल्याण जी।
1: श्रोताओं नमस्कार। गतिविधियां गत सप्ताह की के साथ मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओं, गत सप्ताह का आरंभ शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास को जोड़ने वाली प्राचीन भारतीय पद्धति योग के प्रति वैश्विक जागरूकता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हुआ। इस 12वें योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों सहित विश्व भर में कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिला। विभिन्न राज्यों में विभिन्न केंद्रों पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जन योग पहल योगांध्र 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। तमिलनाडु के पेरियापालयम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेडी और कांग्रेस की विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। दौरे से वापसी के बाद अगले दिन राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने nefex.in पोर्टल शुभारंभ किया। राम मंदिर चढ़ावा दान कथित अनियमितताओं में SIT ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की घटना घटी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET 2026 स्नातक के परिणाम घोषित किए। कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की। पत्र सूचना कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुवाहाटी में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ईरान में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मनाया गया संविधान हत्या दिवस। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क बढ़ाए जाने की घोषणा की, जो 1 जुलाई से लागू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को स्वीकृति दी। लेह के हेमिस मठ में उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा के बाद अरुणाचल सहित असम के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ से व्यापक नुकसान। कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से 17 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में मेडिकल सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया की जांच के लिए CID की टीम पहुंची। केरलम के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने अपने 1000वें वाणिज्यिक जहाज का स्वागत किया। मणिपुर में मूसलाधार वर्षा से कई जगहों पर भूस्खलन हुई। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने जालंधर में 2 ROB परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गुजरात के भूल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। पंजाब में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आरंभ हुआ। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से आरंभ करने हेतु 26 व्यापार पास जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता हादसे पर दुख जताया। मृतकों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। सत्य और न्याय के लिए हजरत इमाम हुसैन का बलिदान दिवस मुहर्रम का त्यौहार इस्लाम समुदाय द्वारा ताजिया निकालकर व तरह तरह के करतब का प्रदर्शन करते हुए मनाया गया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद। मिजोरम SIR अभियान के तहत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य

0: घोषित हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्म निर्देशक के भाग्यराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नई दिल्ली में त्रिदिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद महाराष्ट्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित की। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। इसी के साथ संपन्न होती है गतिविधियां गत सप्ताह की।
1: गतिविधियां गत सप्ताह की तो समाप्त भ गेल, मुदा कार्यक्रम एखन चल रहल अछि और चलित कार्यक्रम में अपने सबके सुनबै छी गीत।

0: तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वास्तव में जीने के लिए जिस तरह किसी व्यक्ति को एक परिवार की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक परिवार को समाज की आवश्यकता होती है, समाज को फिर राष्ट्र की आवश्यकता होती है, और राष्ट्र को राष्ट्रवाद की आवश्यकता होती है। किसी राष्ट्र का अस्तित्व असली तभी कायम रहता है जब उस राष्ट्र के सभी नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो संपूर्ण देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जबकि क्षेत्रवाद ठीक इसके विपरीत किसी विशिष्ट क्षेत्र, उसकी भाषा, संस्कृति या स्थानीय हितों के प्रति गहरा लगाव है। कहा जाए तो राष्ट्रवाद देश को जोड़ता है, तो दूसरी ओर क्षेत्रवाद राष्ट्रीय अखंडता के लिए कभी कभी खतरा बन जाता है। राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच मुख्य अंतर और गतिशीलता को समझने हेतु मुख्य बिंदुएं इस प्रकार हैं, जैसे मुख्य अवधारणा राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद।
1: कुल मिलाकर देखी तो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद दुनू में अगर हम सब एकरा मिला भी तो अपन क्षेत्र के प्रति प्रेम के प्रदर्शन के संगे संगे हमरा सबके राष्ट्र के प्रति जे हमर सबके कर्तव्य है तकरो किछ
0: बिल्कुल
1: निभेबाक चाहिए।
0: और लोकतांत्रिक व्यवस्था में और खासतौर से भारत की जो विविधतापूर्ण सभ्यता संस्कृति है, उसमें इन तीन दोनों चीज को लेकर के चलना है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, अति कभी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद के साथ साथ क्षेत्रवाद का भी पोषण होना चाहिए और क्षेत्रवाद के साथ साथ राष्ट्रवाद का पोषण, लेकिन जो समुचित चीज है उसका। हम अनैतिक चीजों के लिए राष्ट्रवाद को तहस नहस नहीं कर सकते हैं। और आप कुछ इशारा कर रहे हैं आशीष की समसामयिक
1: समय बहुत कम है, तो बिहार में अब कल कार गन्ना के खेती के लिए कुंडली तैयार है और बिहार पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के 993 पद के लिए आई परीक्षा भ रहा है और 3000 मछली पालक के भ्रमण करायल जाए। और एखन हम सब अहाँ के समसामयिक अंतर्गत सबको प्राप्त जानकारी प्राप्त करते रही और समय जे से अब हमरा सबके विदा ले के लेल कह रहा है, जल्दी से भाग रहा है, तो भागत समय के उपयोग करिए अपने।
0: लेकिन विदा लेने से पहले मनोरंजन की ओर चलते हैं और सुनते हैं एक फिल्म संगीत।

0: आब समय हमरा सबके आजू की कार्यक्रम से विदा लेके लेल कह रहल अछि, तो हमरा आशीष के
1: और मुझे यानी कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबवला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
7: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
6: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है

0: कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ रोड कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ संलिप्त हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला

0: नी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रही है। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Akashvani presents Morning News. Good morning.

0: हैं, अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैनुल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवियत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरक अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू ना करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: उमूर दाखला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 बरसों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नौवें एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नज़र की बीमारी

0: देखभाल से, तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जामे सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले छह जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मुनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अव्वलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़िदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन छह शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह की गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्ख करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की इशात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मौसलाती निजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जुमे के रोज एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेज ने कीकुनामी तेल बर्दार जहाज पर एकतरफा ड्रोन से हमला किया। ये जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकू ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इत्तला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के तीन दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुनविसिस ने इत्तला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरज गई और ढांचा जाती नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फुनविसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाती कानून मुतारिफ कराएगी ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजाम

0: को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राजस्व सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड की टेटिया पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत समेत सुशासन युक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल करना भी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण भी सुना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय

0: नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। श्रद्धालुओं को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो। इस बीच 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा के रास्ते चीन में प्रवेश कर गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे निर्देश में कहा है कि डिग्री की छपाई और उनके वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लंबित डिग्रियों को अभियान चलाकर वितरित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित डिग्रियों को छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाए। राज्य सरकार ने जमीन मापी की नई दर तय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा ₹1,000 तथा अधिकतम ₹4,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹2,000 और अधिकतम ₹8,000 शुल्क देना होगा। विभाग ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सामान्य मापी का शुल्क प्रति खेसरा ₹2,000 तथा अधिकतम ₹8,000 तय किया गया है। वहीं तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा ₹4,000 और अधिकतम ₹18,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही अमीन को आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर मापी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि MSMI क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। इस अवसर पर MSMI मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से MSMI क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
1: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSMI के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSMI को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSMI को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और पुस्तकों का भी विमोचन किया। बिहार पुलिस ने स्पेशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट अपलोड करने वाले 128 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सोशल मीडिया हैंडल, ID और चैनलों को हटाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम जनता की जागरूकता और सहभागिता से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में 544 केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 993 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा विशेष ट्रेन चला रहा है। गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
2: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
1: राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों पर अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाती है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति नियमित बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सिवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थान पर हल्की बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बेतिया SDPO रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 11,25,606 सोलर लाइट लगाई जा चुकी है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य का लगभग 96% है। पटना जंक्शन से रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ठगी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग नकली नोटों का बंडल दिखाकर यात्रियों को ठगते थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा के रहने वाले कृष्णा राय उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे शहजाद भट्टी को संवेदनशील जानकारी भेजता था। वो पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। कृष्णा राय के खिलाफ 24 जून को प्राथमिकी दर्ज करा

0: आई गई थी। आयरलैंड के वेलफास्ट में दो मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। गौरतलब है कि आज के मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना का मिलर स्कूल प्रेरणा का मॉडल बनेगा। दैनिक जागरण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर लिखा है कि अटकलों पर विराम, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र TIT के पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। प्रभात खबर ने बिजली से जुड़ी खबर पर लिखा है, 6 जिलों में बिना ग्रिड मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, PMCH प्रचार्य हटाए जाने के मामले की होगी हाई लेवल जांच, पूर्व प्रचार्य की प्रेस वार्ता से स्वास्थ्य विभाग नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का हो रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। और केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस की 993 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey guys!
2: Hey, congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब TV का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पल में हमारे पटना केंद्र से।

उसमें जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम नुसरत फतेह अली खान की आवाज में। दोस्तों, गुफ्तगु एक ऐसा जरिया है जिससे हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे सुलह आमेज गुफ्तगु के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुफ्तगु एक ऐसा जरिया है, चाहे वो किसी भी जबान, किसी भी लैंग्वेजेस में बोला जा रहा हो, मकसद एक ही होता है, अपने मैसेज को उन तक पहुंचाना, उनके मैसेज को खुद तक पहुंचाना और एक दूसरे को समझाना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गुफ्तगु के अपने कुछ आदाब होते हैं। हम गुफ्तगु के जरिए अपनी राय रखते हैं। बातचीत में हमें एहतराम रखने की ज़रूरत है। कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए, ऐसी गुफ्तगू से बचने और ठहर ठहर कर साफ साफ अल्फाज में बात करना बेहतर माना जाता है। आवाज़ें इतनी बुलंद ना हो कि सामने वाला इरिटेट हो जाए और इतना मध्यम भी ना हो कि सामने वाला उकता जाए। नर्म लहजे में बात करना, करीने से बात कर रखना, ये गुफ्तगू के बेहतर ज़राए हैं। दोस्तों, ये तो हुई गुफ्तगू के आदाब। लेकिन हम इंसान बशर हैं जिससे खताएं होना आम सी बात है। कभी कभी खताएं इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि दो लोगों की मामलात ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में दो लोगों के बीच जाकर सुलह करवा दी जाए तो ये एक नेक कदम है और एक इंसानियत का बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। इस्लाम में दो लोगों, खानदानों या गिरोहों के दरमियान सुलह करवाना एक बहुत बड़ी नेकी और सदकाए जारिया है। ये अमल अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुलह करवाने वाला शख्स जन्नत में भी सबसे पहले दाखिल होगा। गर्ज़ की सुलह आमेज गुफ्तगु इंसान को सुकूनियत की तरफ मायल करता है। जब इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करके फारिग होता है और सुकून महसूस होता है उसे, तो वो भी खुद में फैसले करे कि मैं भी जब किसी से बातचीत करूं तो मेरे सामने वाला भी इंसान सुकून महसूस करके हमारे पास से जाए। क्योंकि कड़वी बातें करना आदाब के खिलाफ है। किसी को रंजिश करना और कुछ ऐसी बात कह देना जिससे सुनकर इंसान दुखी हो, ऐसी बातचीत से बचने और हर फर्द को बहुत ज़्यादा बचने और एहतियात करनी चाहिए। और संत कबीर दास ने भी तो कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सेहतनामा। जिस्म की मुख्तलिफ इज़ा की देखभाल कैसे करें, डॉक्टर हसनैन कैसर से शगुफ्ता परवीन की बातचीत। अस्सलामु अलैकुम सामईन हजरात, आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की

0: जिससे बच्चों के दांत तेजी से खराब होते हैं। परमानेंट दांत जब बच्चों के निकल आते हैं तो उनकी हिफाजत बच्चों को या उनके पेरेंट्स को किस तरह से जरूरी तौर पर करनी है और उनके खान पान पर किस तरह का ध्यान रखना है ताकि दांतों में सड़न या खराबी ना हो, क्योंकि इसके बाद फिर अब नए दांत आने वाले नहीं हैं।
1: जी, पहले तो ये जब दूध के दांत उनके गिर रहे होते हैं तो आपको बहुत ये चीज चाहिए कि बच्चों को आप सिखाएं, एजुकेट करें कि उनकी एक स्टेज है कि वो बड़े हो रहे हैं।
0: जी,
1: ये बहुत अहम हिस्सा है, लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और एक हिस्सा ये है कि उनके दांत जो होते हैं प्राइमरी से परमानेंट, मतलब दूध के दांत से पक्के दांत आते हैं।
0: जी,
1: तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए। दूसरा, जब वो दांत आते हैं, अब देखें आजकल दौर चल रहा है चॉकलेट्स या प्रोसेस्ड फूड का, लोग ज्यादातर पैकेज्ड फूड ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, या इंस्टेंट फूड आप देख लें, इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट पोहा, हर चीज है, मेहनत करने से लोग कतराने लगे हैं। तो मेरा ये है कि आप मना नहीं कर सकती हैं बच्चों को, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा फैल गई है, अगर आप उन पे ये चीज बोलेंगे कि बिल्कुल ही ना खाओ तो उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उस चीज की तरफ और ज्यादा जाएंगे। तो आप उन्हें ये सिखाएं कि कम खाओ और आप उन्हें सब्जी, जो वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, ये सब हमारे मसूड़ों और दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें ये सब खाने के लिए आप उन्हें इनकरेज करें।
0: बिल्कुल, ग़िज़ाओं का हमारे जिस्म पर, जैसा कि मैम आपने अभी ग़िज़ाओं की बात की, तो ग़िज़ाओं का हमारे जिस्म पर गहरा असर होता है, चाहे बैरूनी तौर पर हो या अंदरूनी तौर पर। दांत मजबूत हो, दांतों में चमक हो और दांत ज़्यादा वक्त तक मौजूद रहे, इसके लिए आप किस तरह की ग़िज़ाएँ प्रेफर करेंगे?
1: मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो
0: पत्तेदार सब्जियां,
1: जी हाँ, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं या ऐसे फ्रूट्स खासकर जो खट्टे होते हैं, और एप्पल हो गया आपको, आप पाइनएप्पल ले लीजिए, अनानास जो आप बोल लें, फिर ग्रेप्स हो गए आपको, जितने फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी है खास करके, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सेब में अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो आपको दांत को साफ करने में भी बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड जब होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर, मतलब जो कंटेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी हम शुगर लेंगे तो बैक्टीरियाज को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है बढ़ने के लिए। हम कह लें एक बैक्टीरियाज नॉर्मली एसिडिक इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं, तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट हमारे मुँह में एसिडिक इन्वायरमेंट बना देते हैं। वहीं पे जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं या जो फल होते हैं वो उस एसिडिक इन्वायरमेंट को हटाकर एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट, जो बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, वो करते हैं। और ये ना समझे लोग कि अगर मैंने फ्रूट्स या फल कहा है तो जूस पीने लगें, क्योंकि जब हम जूस लेते हैं वो उसमें ज़्यादातर शुगर की क्वांटिटी होती है, भले ही वो नेचुरल शुगर हो, लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें उसके छिलके, हम उसके जो फाइबर्स होते हैं, हम हर चीज़ लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लोग इस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं आसानी होगी कि जूस ही पी लेते हैं, पैकेज जूस ले लेते हैं या फ्रूट से ही जूस ले लें, तो वो चीज़ ना करें। आप फ्रूट्स खाएं, अच्छे से चबाकर खाएं, आपके दांत, मसूड़े, सेहत, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
0: जी, कहा जाता है मैम कि हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसी चीज़ें लेना बेहतर होता है, इससे हड्डियों की भी लाइफ बढ़ती है और दांतों की भी। तो आप हमारी आवाम को कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसी मिलने वाली चीज़ें ख़ास तौर पर बताएं कि वो क्या क्या खाएं जो उनके इर्द गिर्द आसानी से अवेलेबल हो।
1: सबसे आसानी चीज़ तो ये है कि आप दूध ही लें, क्योंकि आजकल आप देखें जितने भी यूथ आप कह लें, जो अभी की जनरेशन्स हैं, वो दूध नहीं पीना चाहते हैं। और आप देखें पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे करते थे कि दूध पियो, दही खाओ, पनीर लो, लेकिन आज हम हर चीज़ में चीज़, मोज़रेला चीज़ या आप कह लें कोई भी प्रोसेस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। आप अगर बहुत पुराने ज़माने की चीज़ों को ये सब फॉलो करते रहेंगे आपको हर चीज़ मिलेगी, नेचुरल चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो।
0: तो दूध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कहा
1: हाँ।
0: भी जाता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही।
0: तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अहम मैसेज है कि वो दूध पे ज्यादा फोकस करें, बशर्ते कि चॉकलेट, च्युइंगम और जंक्स फूड्स के बनिस्बत। तो मैम, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग दांतों में होने वाले मसाइल से

0: परेशान रहते हैं, मसलन दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और कभी कभी दांतों से खून का निकलना वगैरह जैसी परेशानी होती रहती है, तो ऐसी तकलीफ से निजात के लिए किस तरह का इलाज और एहतियात करना चाहिए?
1: देखिए, जो आजकल का एक दौर चल रहा है खाने पीने में, जो चीज़ें लोग ले रहे हैं आजकल, तो ये बहुत आम चीज़ हो चुकी है कि लोगों के मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द होती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, तो उसके लिए आप अपने दांतों की हाइजीन, सफाई का बहुत खास ध्यान रखें
0: जी।
1: लोग बोलते तो हैं कि दो बार ब्रश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन करते नहीं हैं आलस की वजह से या कुछ भी आप समझ लें। तो दो बार ब्रश करें, आप कुल्ला ही कर लें। अगर आपको ब्रश करने का वक्त नहीं मिल रहा है, खाना खाकर आप अच्छे से कुल्ला करें कि खाने के कोई भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें फंसे ना रहें। दूसरा ये होता है कि माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं। फ्लॉसिंग जो होती है धागे से, वो नॉर्मली धागा नहीं होता है, एक डेंटल फ्लॉस आता है, उससे आप क्लीन रखें। उससे क्या होता है, जो दो दांत में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट होता है तो वो जाकर वहाँ पे क्लीन करता है, ब्रश नॉर्मली नहीं पहुँच पाता है। फिर भी अगर आपको हो जाते हैं ये चीज़ें कि दांतों मसूड़ों से खून आ रही है और दांतों में दर्द हो रहा है, तो आप बेझिझक डेंटिस्ट को विजिट कर लें। बहुत लोगों का ये मानना है कि जब हम स्केलिंग या दांतों की सफाई कराते हैं तो खून आने लगता है, हमारे दांत खराब हो गए। ऐसा नहीं है, जब सूजन होती है तो ब्लड वहाँ पे ऑलरेडी आपकी ब्लीडिंग हो रही है और हम डीप क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे, ताकि जब वो फ्रेश ब्लड आता है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा कर देती है। आप देखेंगे गांव में जब आप अभी भी जाएंगी तो कैलकुलस उस चीज़ को कहते हैं, जब आप खाना शुरू किया आपने, सफाई नहीं हो रही तो शुरू धीरे धीरे वो बनना शुरू होता है, एक टाइम पे बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है और वो कैलकुलस कहलाता है। वो और कुछ नहीं, बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है। तो गांव में अभी भी लोग बोलते हैं कि ये मेरे दांतों को सपोर्ट कर रहा है, और आपने अगर सफाई करके उसे हटा दिया तो वो बोलेंगे मेरे दांत हिल रहे हैं, तो वो उन्हें नहीं समझ आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2018 में ये रिसर्च किया था कि जो गम डिजीज या ओरल डिजीज जो होती है, वो बहुत सारी और भी डिजीज करती है, जैसे हार्ट के लिए। अब इसमें हार्ट का क्या होता है, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें, या कॉलोनीज जो प्लाक वगैरह होती है हमारे माउथ में जब हम सफाई नहीं करते हैं, उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया, तो ये क्या करती है, हमारी आर्टरीज में क्लॉग कर देती है उनको, फिर वो ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। दूसरी, अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अगर ओरल हेल्थ को अगर ध्यान से नहीं, वो अपनी मतलब ओरल हेल्थ को सही नहीं रखती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फीटस, आजकल नॉर्मली लोगों को पता होता है जब बच्चे पैदा होते हैं शुरुआती दौर में उसे फीटस कहते हैं, तो माँ के खून के जरिए ही बच्चों को खाना मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो माँ के खून में जाते हैं
0: जी।
1: और ये लोगों को ऐसा लगेगा कि बस बोलने की बातें हैं, लेकिन ये बहुत ये स्टडीज की गई हैं और ये प्रूवन है ये सारी चीजें, तो वो माँ के खून से जाके बच्चों तक जाते हैं। और जो आप देखेंगे कई बच्चे होते हैं जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, तो दांतों की बीमारी बहुत ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट करती है कि बच्चों के लो बर्थ रेट वेट की वजह से उसमें दांतों की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल। तो किसी भी तरह से दांतों की सफाई को लेकर के नजरअंदाज नहीं करना
1: है। हर 6 महीने पे आपको अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो आप डेंटिस्ट को विजिट कर लें, भले ही आप कोई ट्रीटमेंट ना लें, आप कुछ ना कराएं, आप विजिट कर लें, आप एक बार चेकअप करा लें, तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ आप सही हैं।
0: बिल्कुल।
1: आप खाने पीने में आप देखें, रोज के लिए पिज्जा बर्गर खाते 1,000-1,500 उड़ ही जाते हैं, 100-200 चेकअप की ही नॉर्मली आप देखें कि बहुत कम फीस होती है, या जितनी भी हो तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके लिए खर्च हो रही है, वो किसी और के लिए नहीं खर्च हो रही है
0: जी। मैडम, दर्द में फौरी तौर पर राहत मिले इसके लिए कई लोग लौंग या लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं या कोई और घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: जी, लौंग का तेल वाकई में बहुत फायदेमंद होता है, और घरेलू नुस्खे मैं बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कई हद तक वो आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घरेलू नुस्खे से ही आप उस ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको एक हद तक राहत देंगे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपके दांतों में सड़न है और आपको दर्द हो रहा है, आपने लौंग खाया, एक टाइम पीरियड के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा। तो आजकल आप देखेंगे होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खे पे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है कभी कभी एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप चले, लेकिन जो उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो लेना ज़रूरी है।

0: जी बिल्कुल सही मैडम। हमारे मुल्क के देही इलाकों में कुछ लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दौरे जदीद में दांतों को साफ सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। तो क्या दांतों के लिए दातुन का इस्तेमाल सही है, या फिर अभी के वक्त में जिस तरह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाना?
1: देखें, पहले के जो ज़माने में या अभी भी आप देखें, हमारे गांव में आप जाएंगी, किसी आपके गांव में ले लीजिए, मेरे खुद के गांव में जब मैं जाती हूँ दादी नानी के घर पे, तो बहुत लोग जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अभी तक दातुन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब रमज़ान का वक्त आता है तो बहुत सारे मुसलमान भाई बहन वो लोग भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं। तो दातुन मैं बोलूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। लोग अब भले ही ब्रश पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश पे आ चुके हैं, वो सब भी बहुत अच्छी चीज़ है, एक मॉडर्न हो रही है सोसाइटी। तो दातुन में मैं आपको बताऊं, उसमें ये सिर्फ नहीं है कि आप उसे चबाएं और ब्रश हो गया, उसका जब हम लोग जो जूस निकलता है वो जब हम लेते हैं उसके भी अलग फ़ायदे होते हैं। आप किसी भी पेड़ का एक डंडी तोड़ लें और ये करें, हर चीज़ के फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 5 या 6 ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे आप ले लें नीम, नीम को कहा जाता है कि दातुन का राजा, तो उसके उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत अच्छी। तो ये तो बहुत कॉमन है, नीम सब लोग उसे लेते हैं, लेकिन वहीं पे आप देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हम नीम बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी जो होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करेंगी, तो अगर आप दातुन नीम कर रही हैं तो एक बार किया, दो बार किया दिन में बहुत है, और इसके जूस को आप ले लें। दूसरा, आप साल, साल सुना होगा आप लोगों ने, तो साल बहुत फेमस है क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत मीठा होता है, तो वो दांतों को साफ रखने में और मसूड़ों के हेल्दी गम्स के लिए बहुत अच्छा है साल। फिर थर्ड है कोरंजो या करंज हम बोलते हैं उसे हिंदी में। तो अगर हम नीम को बोलते हैं कि दातुन का राजा, तो करंज को बोलते हैं दातुन की रानी।
0: जी,
1: तो ये होता है कि जब हम करण से अपने दांतों को साफ करते हैं और उसका जूस जब जाता है तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस होती है, लड़कियों के लिए खास बोल बता रही हूँ
0: जी,
1: तो वो आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा रखती है। फिर महुआ, बिहार में तो ये चीज लोगों को पता ही होगी कि एक नेचुरली ये अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए भी यूज किया जाता था, गवर्नमेंट ने इसलिए इसे बैन कर दिया है। लेकिन आप देखें महुआ में, हमारे गांव में ऐसा कहना है कि अगर किसी ने महुआ से अपने दांत चबा लिया तो वो इंसान पत्थर को भी चबा सकता है,
0: मतलब इतनी मजबूती आ जाती है,
1: मतलब ओल्ड एज में भी वो आपके दांत गिरने नहीं देगा, महुआ में इतनी अच्छी वो चीज है। लेकिन हाँ, वो फिर एक ज्यादा आप अगर लेंगी तो फिर वो नशा होने शुरू। फिर आता है गड्ढा हाथना, गड्ढा का मतलब होता है पानी, जहाँ पे आप देखेंगी रिवर्स या पानी वाली जगह होती है वो वहीं पे ज्यादातर निकलते हैं, उगते हैं। तो इसका ये है कि दांत की सफाई, मसूड़ों में हर चीज़ें कर रहा है, इसके साथ ही आपके ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है बहुत अच्छी। फिर है एक टोटका बिंदी, ये बहुत कम मिलते हैं, जैसे ऊपर के जो सारे मैंने बताया 4-5 वो कॉमन आपको मिल जाएंगे गांव वगैरह में, लेकिन ये उतने नहीं मिलते हैं। पुराने ज़माने में इंस्टेंट रिलीफ कि आपको पेन हो रहा है तो फटाफट आप चाहें ठीक हो जाए, या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये टोटका बिंदी बहुत हेल्पफुल था, लोग इसके घुमा लेते थे मुंह में और बहुत जल्दी असर करता था। और ये जो पेट में आप देखेंगे अल्सर्स आजकल बच्चों में बहुत हो गया है, तो टोटका बिंदी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था स्टमक अल्सर्स के लिए।
0: और मैम, कहा जाता है कि बबूल भी बहुत
1: जी
0: मुफीद है दांतों के लिए।
1: जी, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी पेड़ का तोड़ लें और आपको वो फायदा ही देगा।
0: तो सामईन, जैसा कि मैं हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया, जितने भी पेड़ पौधों का इन्होंने जिक्र किया, ये सारे पेड़ पौधे हमारे मुल्क के किसी न किसी हिस्से में जरूर मौजूद हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल करें अगर मौका लगे तो। कहते हैं कि दांत मजबूत तब रहेंगे जब मसूड़े सेहतमंद रहेंगे, तो दांत और मसूड़े दोनों ही सेहतमंद हो, इसके लिए आप अपनी क्या राय देंगी?
1: जी, हर चीज़ का बेसिक यही है कि आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, दांतों की सफाई मेंटेन करनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आप देखें बहुत लोग उंगली से मसाज करते हैं, जैसे आप देखें वुजू करते वक्त
0: जी,
1: तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप मसाज करते हैं अपने मसूड़ों को तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पे, और जहाँ पे भी आप देखेंगे हीलिंग करने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपने मसूड़ों को मसाज करें उंगली से 1 या 2 बार। आप ब्रश कर लें, ब्रश आप 2 मिनट करें, टाइम देखकर अगर आप नहीं हो रहा है तो आपको एक आइडिया तो होगा ही कि हाँ 2 से 3 मिनट कितना होता है
0: जी।
1: 2 बार कर लें, बहुत ज़ोर से नहीं करना है वरना वो भी कहीं ना कहीं फिर आपको नुकसान दे। बहुत हल्के हल्के हाथों से कुल्ला करें।

0: कुछ भी खाना खाएं, कुल्ला कर लें, कोई भी ऐसे खाने जो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी फूड जो होते हैं, वो आप अवॉइड करें। अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाएं, कभी कभी खाएं, लेकिन फिर अच्छे से दांतों को उसको अच्छे से क्लीन कर लें उसके बाद।
1: कुल मिलाकर यहाँ ये साबित होता है कि हमारे दांत प्रॉपर तरीके से साफ रखना है, क्योंकि हम जो ग़ज़ाएं लेते हैं तो इसी के थ्रू हमारे पेट में जाता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये साफ रहेगा तभी जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। मैडम, दांत हमारे जिस्म के ऐसे हिस्से में मौजूद होता है जो कि सामने से दिखाई देता है। अगर हम हंस रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमारे दांत यकीनी तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दांत टेढ़े मेढ़े या दांत पर दांत चढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी को भी इस तरह के दांत मंजूर नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी मायूसी का ज़रिया भी बनता है। तो दौरे जदीद में इसे ठीक करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। एक बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगी?
0: अगर मैं मेडिकल टर्म्स यूज़ करूँ तो ऑर्थो ट्रीटमेंट, आम लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग ब्रेसेस भी आजकल समझते हैं, या पिन बोलें या वायर बोलें आप, तो वो एक ट्रीटमेंट है। अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं या किसी के आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, तो वो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। हालांकि ये थोड़ा वक्त ज़्यादा लेती है, क्योंकि देखें आप, हम क्या करते हैं, आपके बोन में एक चेंज लाते हैं। तो आपकी जो चीज़ एक बोन है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस चीज़ है, तो उसमें अगर चेंज कर रहे हैं तो वक्त लगेगा ही। तो लोग परेशान होकर आते हैं कि नहीं, हमें जल्दी चाहिए, इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। तो एक ट्रीटमेंट होता है, आपको उस पर यकीन रखना होता है और टाइम देना होता है, क्योंकि हमें टाइम लेना हम नहीं चाह रहे हैं, आपकी वो ट्रीटमेंट को टाइम देना पड़ेगा। तो ब्रेसेस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको टाइम दें, एक साल या डेढ़ साल ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, आपके दांत सही हो जाएंगे। और आजकल के दौर में आप देखें, पर्सनालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आप देखें, तो ये चीज़ है। आपको अपने पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं दांतों का रोल बहुत बहुत ज़्यादा है।
1: मैम, आपने अभी दांतों को अंदर करने या दांतों को अच्छा लगने के लिए आपने पिन का सलाह दिया
0: जी,
1: तो इसमें बहुत सारी कुछ एहतियात भी होती हैं, वो भी आप हमारे आवाम को बताएं कि उसमें किस तरह के एहतियात की ज़रूरत है।
0: जब पिन वगैरह लगती हैं तो उसमें कुछ ब्रैकेट्स, मतलब आप मान लें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लगाते हैं। एहतियात आपको बस ये रखना होता है कि आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मतलब आपको एक बार पिन लग गया तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सफाई बहुत आ जानी चाहिए,
1: और उसको छेड़छाड़ भी नहीं करना।
0: नहीं,
1: जिस तरह से डॉक्टर ने लगा दिया है पेशेंट्स के साथ उसको उसी तरह से
0: जी, आपको सब्र रखना है और सफाई रखनी है, क्योंकि एक साल डेढ़ साल तक वो चीज़ आपके दांतों में लगी होती है। अगर आपने सफाई का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि दांत आपके वहाँ पर ख़राब हो जाए। यही अगर आप सफाई का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज से।
1: बिल्कुल, पिन लगा हुआ अगर दांत है तो उसमें सफाई भी वैसे ही जनरल करनी है जिस तरह से हम लोग आमतौर पर करते हैं, या फिर उसका कोई और दूसरा टर्म है?
0: सफाई करने के लिए एक तो आप जो हम नॉर्मल ब्रश यूज करते हैं वो करें, कुल्ला बहुत अच्छे से करें, कुछ भी खाएं। एक डेंटल ब्रश आती है, मतलब बहुत छोटी सी पतली सी ब्रश आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पिन लगा रखा है, तो वो ले लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उन वायर्स के अंदर से आपको क्लीन करने के लिए वो हो जाती है, फ्लॉसिंग करें आप, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप बस एक ध्यान रखते रहें कि साफ रहे, आप अपना देखते रहें कि खाना ना फंसा रहे। और एक डेंटल ब्रश जो आती है वो इन पेशेंट्स के लिए ही आती हैं जिन्होंने पिन लगा रखा है
1: जी। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है मैम कि मसूड़ों का ऊंचा होना या दांतों का बाहर होना जेनेटिक तौर पर भी होता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में पिन लगवाना सही है या फिर उसे जेनेटिक मानते हुए छेड़छाड़ ना करना बेहतर है?
0: देखिए, मैंने अभी कहा था कि पर्सनालिटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा हो गई है, तो जेनेटिकली अगर कोई चीज़ किसी इंसान में है और वो नुकसान नहीं दे रही है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आप उस चीज़ को लेकर चलें। लेकिन जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि आपकी एक पर्सनालिटी में वो आपके कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं इंसान वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। दूसरा, कोई भी चीज़ जैसे हमारे दो जबड़े हैं, तो जब दोनों सेट होते हैं तो एक प्रेशर, इक्वल प्रेशर होता है पूरे मुंह में, लेकिन जब दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो प्रेशर आधा आगे या पीछे, प्रॉपर प्रेशर नहीं लग पाता है। उसकी वजह से हड्डी जो होती है, जो हमारे दांतों को जो पकड़ कर रखती है, वो गलने लगती है। फिर उम्र होते ही ज़्यादा, जब उम्र होती है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी दांत ढीले हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये सारी परेशानियाँ होती हैं। तो

0: जेनेटिकली होना या ना होना ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी हेल्थ पे उसका असर ना हो। अगर हेल्थ पे असर नहीं हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
1: जी, एक उम्र के बाद जिस्मानी तौर पर इंसान के पार्ट पुर्जे कमजोर पड़ने लगते हैं, ये सब जानते हैं, और वो साथ छोड़ने लग जाते हैं। उनमें से दांत भी एक अहम पार्ट है जो कि उम्र के साथ साथ गिरने टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ताहयात इंसान को सब कुछ खाने पीने का मन होता है और वे चाहते हैं कि जिस तरह से उनके दांत थे और वे नॉर्मली हर चीज को बड़ी आसानी से चबा और खा सकते थे, तो उसी तरह से वे फिर से खाना चबाना शुरू कर दें। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं, तो क्या इसका लगाना सही है? इसके फायदे, नुकसान और एहतियात के बारे में तफसील से बताएं।
0: देखें, इसका लगाना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी के दांत नहीं हैं वो खाना ही नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो आप सोचें वो इंसान में हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ पे। आप खाने को चबा कर खाते हैं या जब खाने को आप निगल लेते हैं, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो उसमें आपकी जो थूक है वो बहुत अहम असर प्ले करती है, वो उसे मिलती है। आप खाना लेते हैं उसकी पूरी जो न्यूट्रिशन है वो आपको बॉडी को मिलती है, लेकिन जब आप खाना सीधा निकल लेते हैं आपकी डाइजेशन ख़राब होगी, आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो बॉडी का होता है वो सब ख़राब होगा। दूसरा, जब हम नकली या आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है। बहरहाल, बस ये नुकसान है कि अगर आप कहीं लगवा रहे हैं, लगाने वाले की नॉलेज है या नहीं, जब आप नकली जो दांत या आर्टिफिशियल टीथ जो लगाते हैं उसकी फिट प्रॉपर है या नहीं है। मान लीजिए वो ढीला है तो आप खाना खाएंगे, खाना उसमें फंस जाएगा, फिर वो क्लीन करने में बहुत मुश्किल होती है। हम पेशेंट को हमेशा ये सलाह देते हैं कि ये आपकी नेचुरल टीथ और आर्टिफिशियल टीथ में बहुत फ़र्क है। आप अब आर्टिफिशियल लगे, आपको सफाई का खास ध्यान देना है उस चीज़ पे। तो अगर वो फिट उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो खाना फंसेगा, फिर आपके आसपास के दांत के लिए भी वो नुकसानदायक होगा। तो लगवाना कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, ये है कि जो लगा रहे हैं उनके लिए वो चीज़ है कि आप प्रॉपर एक नॉलेज के साथ अगर लगा रहे हैं तो सब सही है।
1: मैडम, अगर दांत मुकम्मल तौर पर झड़ चुके हैं तो क्या तब भी आर्टिफिशियल दांत फिक्स कराया जाना मुमकिन है?
0: जी बिल्कुल मुमकिन है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि देखेंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो पूरा पूरा अपना दांत निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी मॉडर्न जब मॉडर्नाइजेशन हुई है तो उसमें ये हुआ है कि अब हम फिक्स उसे करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। फ़ायदा अगर आप देखें जो रिमूव करने वाला, निकालने लगाने वाला, उसमें ये है कि पहला तो वो आप देखें कॉस्ट एफिशिएंट है, वो बहुत मतलब आपको आपके पॉकेट को बहुत सही पड़ेगा, मतलब कॉस्टली नहीं होता है वो। दूसरा, आप उसको निकाल के आप क्लीन कर सकती हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें एक नुकसान ये होता है कि रोज़ रोज़ आपको रात में हम मना करते हैं उसे कि आप नहीं लगा कर सोएं, तो रात में आपको निकालना होता है, उसके सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है। जो फिक्स होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि निकालें लगाएं, तो उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन अगर आप क्लीन नहीं करते हैं सही से तो वही चीज़ है कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन के एक चांसेस होते हैं। और ये जो फिक्स वाला होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, उसके कंपैरिजन अगर हम करें कंपैरेटिवली जो रिमूव वाले होते हैं, तो इन दोनों में बस यही फ़र्क है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। दोनों ही इंसान को जो वो अफोर्ड कर पाए तो दोनों ही सही हैं।
1: मैम, इसमें एहतियात क्या बताएंगी आप?
0: एहतियात ये है कि आपको अपने हाइजीन का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा।
1: और कड़ी चीज़ें, बहुत सख्त चीज़ें?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दांत लग गए मतलब हमने आपको गारंटी दे दी, आप जो भी खाएं, आपने पैसा लगाया तो आप खा सकते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि पत्थर ही चबा लें
1: तो वैसे भी मुमकिन नहीं है ओरिजिनल दांतों के साथ। हाँ,
0: जी, तो आप नॉर्मल लाइफ अपनी जैसे खाना खाते हैं खाएं, बस यही है। आप देखें हर चीज़ का ये कि आपको सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस वही है।
1: दांतों के बीच का हिस्सा ख़राब हो जाने के बाद वो टूट जाता है, तो कई बार उसे डॉक्टर के ज़रिए उसको भरकर ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो क्या दांतों के लिए ऐसे अमल सेफ़ हैं? और अगर सेफ़ हैं तो इसमें किस तरह की एहतियात करने की ज़रूरत है?
0: जी देखें, दांतों के बीच का हिस्सा अगर ख़राब होता है, मतलब दो दांत के बीच, मतलब दो दांत को उसने ख़राब कर दिया है
1: जी।
0: जब भी एक होता है कि आगे की तरफ अगर ख़राब होता है वो एक ही दांत में रहेगा, लेकिन अगर बीच में होता है तो वो दो दांतों को ख़राब कर देगा। शुरुआती दौर में अगर आपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने ट्रीटमेंट करी, आपकी फिलिंग वगैरह कर दी, तो वो सही है। लेकिन अगर आप छोड़

0: देती हैं, आप ध्यान नहीं देती हैं, तो वो नसों तक जाएगा। फिर हम जो RCT रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है उसका प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। फिर उस पर कैपिंग वगैरह होती है। तो शुरुआती दौर में ही अगर आपको किसी ने बोला, डॉक्टर को आपने विजिट किया और उन्होंने बोला कि आपकी सड़न है, आपको फिलिंग करा लें, तो आप करवा लें ताकि वो चीज़ वहीं पर रुक जाए। एक चीज़ अभी बहुत क्वेश्चन करी जा रही है कि जो अमलगम होती है, एक फिलिंग मटेरियल यूज़ करी जाती है डेंटिस्ट्री में, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो बैन कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है, बैन नहीं करी गई है, बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह हुई हैं इस चीज़ पर। तो लोगों का ये कहना था कि जो अमलगम बेसिकली क्या होता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, टिन, कॉपर, सिल्वर और मरकरी उसमें ऐड किया जाता है।
1: जी
0: तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मरकरी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मरकरी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वो होती है मिथाइल मरकरी, जो फिश होती हैं उनमें होता है वो, और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन
1: जी
0: जो मरकरी हम अमलगम या डेंटल फिलिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं वो एक एलिमेंट होती है। तो उसका नुकसान ये होता है जब वो वेपर उसकी होती है वो
1: जी
0: नुकसान देती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना वेपर की जो हम फिलिंग कराएं वो इतना वेपर निकालेगी कि हमारे बॉडी को नुकसान करे। तो जो हम फिलिंग करते हैं उसमें उतना मरकरी होता ही नहीं है कि उसका वेपर रिलीज और आपको नुकसान करे। तो इस पे बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन लोगों ने भी बहुत रिसर्च करी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि एडवर्स हेल्थ ये प्रॉब्लम्स और अमलगम में कोई रिलेशन नहीं है।
1: तमाम लोग जो चाहे जिस भी उम्र के हों, सबकी चाहत होती है कि उनके दांत मजबूत, सेहतमंद और लॉन्ग लास्टिंग यानी तवील वक्त तक रहे। इस पर आप अपनी किस तरह की राय पेश करेंगे?
0: आपके दांत अच्छे रहें और प्रेजेंटेबल रहें, इसके लिए आपको ये है कि आपको सबसे पहले तो जो खाने पीने हैं उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चॉकलेट्स, कॉफ़ी, टी या पैकेज्ड फूड, इनको आप थोड़ा लिमिट कर लें। मुझे पता है कि रोकना, बिल्कुल रोकना अब इस दौर में मुमकिन नहीं है या इस हद तक लोग
1: बिल्कुल
0: पहुंच चुके हैं, तो एक लिमिट कर लें कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत किया, और आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों को बढ़ा लें अपने डाइट में। ना कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, बल्कि ओरल कैविटी, दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप हाइजीन का ध्यान रखें, ब्रश करें, माउथ वॉश करें, डेंटल विजिट कर लेंगे हर 6 मंथ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप ध्यान में रखें, आप बिल्कुल सही रहेंगे।
1: मैम, दांतों पर क्या अल्कोहल का भी असर होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं।
0: जी, दांतों पे अल्कोहल, इवन आप देखें स्मोक जो करते हैं, जो लोग सिगरेट्स वगैरह पीते हैं,
1: जी
0: इनका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो पहला तो ये कि जो हमारी कैविटी होती है, मतलब दांत होते हैं उनमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो एक तो इम्यूनिटी ये कम कर देता है। तो आप देखें
1: बिल्कुल
0: कहीं भी अगर इम्यूनिटी आपकी कम हुई तो कोई भी चीज़ हावी बहुत जल्दी हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है, और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है वो फिर आगे के अपने प्रोसेस को, कि दांत सड़न हो जाती है, सूजन हो जाती है, खून आने लगते हैं, तो ये सब के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: मैम, जाते जाते आप हमारे सामयीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी?
0: मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग पैसे खर्च करते हैं ये सोच कर कि, मान लीजिए आप देखें कि अगर पूरे बॉडी में, हाथ में, पैर में कुछ भी किसी को तकलीफ होती है तो वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और अगर दांतों की ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ हज़ार भी लगेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो मैं ये बोलूँगी दांत भी आप ही के बॉडी का एक अहम हिस्सा है, तो उन्हें इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर उसकी ट्रीटमेंट में कुछ खर्च हो रहा है तो वो आपके लिए ही हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: एक स्लोगन है, आप देखें कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ने कहा कि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार, ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार।
1: क्या बात है।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: यह आवाज़ थी किशोर कुमार की फिल्म अनोखी अदा में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

ये आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म फकीरा में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आँखें में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रवि ने।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म आंखें में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रवि। आइए आप सुनते हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में फिल्म निकाह का ये गीत, जिसे लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

ये आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और सलमा आगा की फिल्म निकाह में। गीत रचना हसन कमाल की थी और धुन रवि ने बनाई थी। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आया सावन झूम के फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत रचना अनंत बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी। सूत्रधार हैं रजनी कुमारी और प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रजनी दीदी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूं आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस गर्मी की छुट्टी में बहुत ही मजा किए होंगे, है ना? प्रकृति से जुड़कर पेड़ पौधे लगाए होंगे, उसकी देखभाल किए होंगे, नानी दादी के प्यार दुलार भी पा रहे होंगे तथा उनकी मीठी मीठी कहानियों का भी आनंद ले रहे होंगे, है ना बच्चों? इस आनंद और मस्ती के चक्कर में होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क बनाना भूल तो नहीं गए, है ना बच्चों? सबसे पहले अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क अवश्य पूरे करें। गर्मी की छुट्टियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में तो खत्म भी हो चुकी है, पढ़ाई पुनः चालू हो चुकी है ना? और प्रोजेक्ट वर्क बनाने का अपना ही मजा है ना बच्चों, जिसमें आपकी कल्पनाशीलता और कला दिखती है। आप चाहें तो इसे कंप्लीट करने के लिए मम्मी पापा या बड़े भाई बहन या रिलेटिव्स किसी का भी मदद ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और मिलकर बनाने में मजा भी आएगा, है ना? तो बच्चों, इस गर्मी की छुट्टी में मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का भी तालमेल अवश्य बिठा कर रखिए, ताकि आप हमेशा अपडेट्स रहें। इसके साथ ही साथ आप अपने हॉबी जैसे कि आपके पसंदीदा कार्य जैसे चित्रकारी, तैराकी, नृत्य, गायकी, लेखन आदि सीख सकते हैं, कर सकते हैं। योग शिक्षक का मदद भी ले सकते हैं, है ना?

फूलों की खुशबू, तितलियों की रंगत और बच्चों की प्यारी मुस्कान के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय कार्यक्रम फुलवारी में। ज्ञान, मनोरंजन और नई नई जानकारियों के साथ सजी इस रंग बिरंगी दुनिया में हम लेकर आए हैं आपके लिए कई रोचक बातें। तो आइए हंसी, गीत, कहानी और सामान्य ज्ञान के इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। और आपकी रजनी दीदी आपको फुलवारी की ये मनोरम दुनिया में सैर करवाने ले चलती है ना। बच्चों, आज हम सबसे पहले एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाता है। तो आज हम सबसे पहले जीवन में खेल कूद के महत्व के बारे में बातें करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको खेलना अच्छा लगता है? प्यारे बच्चों, क्या आपको खेलना अच्छा लगता है? निश्चित रूप से आप में से सभी को खेलना पसंद होगा, है ना? हमें भी अच्छा लगता है। बच्चों, खेलकूद केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। नियमित रूप से खेलकूद करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। दौड़ना, कूदना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसी बहुत सारे खेल हैं जो हमारे शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाते हैं, हमारे शरीर को गठीला बनाते हैं। खेलों से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है और कई बीमारियां शरीर से दूर होते हैं। प्यारे बच्चों, खेल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। खेलों से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न चित्त रहता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेने वाले बच्चे अधिक एकाग्र और आत्मविश्वासी होते हैं। खेल हमें अनुशासन, समय का महत्व, सहयोग और टीम की भावना भी सिखाते हैं। एक दूसरे की सहायता करना भी सिखाते हैं। मिलजुल कर काम करना भी सिखाते हैं। साथ ही हार और जीत दोनों में समान भाव भी स्वीकारना सिखाते हैं, जिसे हम खेल भावना कहते हैं। आज हमारे देश में अनेक खिलाड़ी विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, मेरी कॉम और छोटा सा हमारा वैभव सूर्यवंशी जो हमारे बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले से है। इन जैसे बहुतों खिलाड़ियों ने अपने मेहनत और लगन से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। प्यारे बच्चों, आजकल मोबाइल और टीवी के कारण बच्चे मैदानों से दूर होते जा रहे हैं। हमें यह याद रखना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ समय खेल कूद के लिए अवश्य निकालना चाहिए, है ना? तो बच्चों, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। याद रखिए, जो खेलता है वही खिलता है, वही आगे बढ़ता है। ये तो थी खेल कूद की बातें। तो बच्चों, हम मनोरंजन की ओर चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। बच्चे

0: में एक गरीब लकहरा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। अब लकहरा बहुत दुखी होकर रोने लगा। तभी जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है भगवान। फिर जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने फिर कहा, भगवान, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारा खुशी से बोला, हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल देवता ने उसे सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां भेंट स्वरूप दे दी और लकड़हारा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। तो बच्चों, इससे यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो हमें हमेशा ईमानदारी के पक्षधर रहना चाहिए, है ना? अच्छी लगी ना ये कहानी? तो आप सब भी ईमानदार बनोगे ना? बच्चों, ये तो थी छोटी सी कहानी। आइए छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में छोटे छोटे नन्हे मुन्हों की प्रस्तुति पर आधारित ये अंक बच्चे मन के सच्चे।
1: नमस्ते बच्चों।
2: नमस्ते दीदी।
1: कैसे हो आप लोग?
2: अच्छे हैं।
1: पढ़ाई लिखाई चल रही है?
2: हाँ।
1: गर्मी तो बहुत है, गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हो आप लोग?
2: पानी पीते हैं।
1: हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, खीरा, तरबूज,
2: खरबूज।
1: हाँ।
0: अब आप बारी बारी से अपना नाम और आप किस कक्षा में पढ़ते हैं हमें बताएं और फिर अपनी प्रस्तुति सुनाएं, है ना?
3: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम शिक्षा शर्मा है।
1: और कौन से कक्षा में पढ़ती हैं आप?
3: मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: आज कुछ सुनाना चाहेंगी?
3: हाँ, मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी।
1: तो सुनाइए, और कहानी का शीर्षक बताइए।
3: कहानी का शीर्षक है मगरमच्छ और बंदर की कहानी।
1: अरे वाह, सुनाइए।
3: बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे बहती नदी के पास एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चंचल और बुद्धिमान बंदर रहता था। पेड़ पर बहुत मीठे और स्वादिष्ट जामुन लगते थे। बंदर दिन भर जामुन खाता और खुशी से पेड़ पर उछल कूद करता था। उसी नदी के एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ भोजन की तलाश में नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे देखा और मित्र जामुन तोड़कर खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगा। वो रोज बंदर से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में अच्छे मित्रता हो गए। बंदर रोज उसे जामुन खिलाता और दोनों बातें करते थे। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन लेकर गया। जामुन खाकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसके मन में एक लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, उसका हृदय भी अवश्य ही बहुत मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, मैं उस बंदर का हृदय खाना चाहती हूँ, तुम उसे किसी तरह यहाँ लेकर आओ। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बंदर उसका सच्चा मित्र था। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पर बुला रही है, कृपया मेरे घर चलो। बंदर ने कहा, मैं तैरना नहीं जानता, इसलिए नदी कैसे पार करूंगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तब मगरमच्छ ने सच

0: बता दिया कि उसके पत्नी बंदर का हृदय खाना चाहती। यह सुनकर बंदर घबरा गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया और बोला, मित्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो अपना हृदय जामुन के पेड़ पर ही रख छोड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी को वो चाहिए तो हमें वापस चलना होगा।
1: चालाकी से काम लिया है ना।
0: हाँ, मगरमच्छ बंदर की बात पर विश्वास कर बैठा और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही वो किनारे पहुँचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर बैठकर उसने कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना हृदय शरीर से अलग रख सकता है? तुम्हें मित्र के साथ विश्वासघात किया है, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया।
1: उसे वैसा ही करना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया बंदर ने। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
0: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय घबराने के बजाय बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। साथ ही सच्ची मित्रता में विश्वास और ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो जैसा नाम है आपका शिक्षा, वैसे ही शिक्षा देने वाली कहानी आपने कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी।
2: आप कुछ सुनाना चाहते हैं गुड़िया?
3: नमस्ते दीदी, मेरा नाम कास्की कुमार।
2: हाँ हाँ,
3: चैक में पढ़ती हूँ।
2: अरे वाह,
3: मैं आज आप लोगों को
2: धीरे धीरे
3: पोयम सुनाने वाली हूँ।
2: सुनाइए
3: पोयम करना।

0: गुड नाइट, थैंक यू।
1: वाह, बहुत अच्छा पोयम आपने सुनाई।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कविता है।
3: कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप?
2: मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
3: और आप कुछ आज सुनाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं?
2: हाँ, आज मैं बरसात के जल संरक्षण के महत्व विषय पर अपने विचार बताने वाली
3: हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छी विषय है। आप बताइए, और बताइए कि कैसे जल संरक्षण किया जा सकता है वर्षा ऋतु में।
2: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक दोहन और वर्षा के जल की उचित उपयोग ना होने के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे समय में वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से कई अधिक बढ़ गई है।
3: बिल्कुल।
2: भारत में अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों के दौरान होता है, लेकिन इस जल का एक बड़ा भाग बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। यदि हम इस वर्षा के जल को तालाबों, कुओं, जलाशयों तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के माध्यम से संचित करें, तो आने वाले समय में पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल।
2: वर्षा जल संरक्षण से भूजल स्तर बढ़ता है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलती है। इसके अलावा यह पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहायक होता है।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल।
2: जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने घरों, विद्यालय और समाज में पानी की एक एक बूंद का महत्व समझना चाहिए। छतों से गिरने वाली वर्षा जल को टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है। गाँव में तालाबों और पोखरों का संरक्षण किया जा सकता है तथा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यदि आज हम जल संरक्षण की प्रति जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे और वर्षा जल संरक्षण के उपायों को अपनाएंगे।
3: हाँ बिल्कुल।
2: महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि जल है तो कल है। यह वाक्य हमें जल के महत्व का एहसास कराता है। आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाए और अपने देश तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए जल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: वाह वाह कविता, आपने तो बहुत अच्छी बात कही और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और हम सभी को मिलकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, जल संरक्षण के नियमों को समझाना चाहिए, और सभी जल संरक्षित करेंगे, जल के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे, तो हम कल के लिए जल बचा सकते हैं, है ना
2: जी।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बच्चों, अभी आपने बच्चे मन के सच्चे अंक में छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति सुना। आइए अब चलते हैं सामान्य ज्ञान अंक की ओर। और आज सामान्य ज्ञान अंक के अंतर्गत हम जानेंगे पानी से बारिश तक की यात्रा अर्थात जल चक्र के बारे में। और इसी अंक के अंतर्गत आज हम जानेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में जानें। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी इंद्रधनुष बनते देखा है? बच्चों, आसमान में सूरज निकलता है तब कभी कभी हमें आकाश में सात रंगों का एक सुंदर अधिवृत्त दिखाई देता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह धनुष के आकार का प्रतीत होता है, इसीलिए इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसके सात रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
1: बच्चों,
0: इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश और वर्षा जल की बूंदों के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश देखने में सफेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसमें सात रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य की किरणें वर्षा की छोटी छोटी बूंदों में प्रवेश करती है तो वे अपवर्तन और परावर्तन की प्रक्रिया से गुजरती है। इस प्रक्रिया के कारण सफेद प्रकाश अपने सात रंगों में विभाजित हो जाता है। यही रंग हमें आकाश में इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है,
1: बल्कि
0: यह विज्ञान का अद्भुत सिद्धांत को दर्शाता है। यह हमें विविधता में एकता का संदेश भी देता है।
1: जिस प्रकार
0: सात अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनते हैं, उसी प्रकार विभिन्न लोग मिलकर हमारे समाज को सुंदर और मजबूत बनाते हैं। तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम सुंदर और एकीकृत लगेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इंद्रधनुष प्रकृति का एक अद्भुत और मोहक उपहार है जो सभी को आकर्षित करता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। आप सभी बारिश जब हो रही हो और खत्म हो चुकी हो तब कभी कभी देखना छत पे जा करके बालकनी से, कभी कभी इंद्रधनुष प्रतीत होगा, है ना? आइए अब बात करते हैं पानी से बारिश तक के सफर के बारे में, यानी जल चक्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में वाटर साइकिल भी कहा जाता है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, नदियां, तालाब और झीलें सूर्य की गर्मी से गर्म होती है। इसका पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और ऊपर आसमान में तापमान कम होने के कारण यह भाप ठंडी होकर छोटे छोटे जल कणों में बदल जाते हैं। लाखों करोड़ों जल कण मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, है ना बच्चों? जब बादलों में बहुत अधिक जल कण जमा हो जाता है तब उनका भार बढ़ जाता है, तब वे पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं, इसे वर्षा कहते हैं। अब बारिश की पानी नदियों में, तालाबों में और समुद्रों में वापस पहुंच जाते हैं। फिर सूर्य की गर्मी से वही पानी दोबारा भाप बनकर ऊपर उठता है, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहा जाता है, है ना? और बच्चों, यदि वर्षा न हो तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी के लिए जीवन कठिन हो जाएगा, इसीलिए हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए और वर्षा जल का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सामान्य ज्ञान में जाना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और पानी किस प्रकार अपनी अद्भुत यात्रा पूरी करती है करके बारिश के रूप में धरती पर वापिस आती है। याद रखिए, जल है तो कल है और प्रकृति है तो जीवन है। और अब आइए विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर की कुछ बातें जाने। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है।
2: भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्यारे बच्चों, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? हाँ, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है ना? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक

0: ग्रह चंद्रमा है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो बच्चों, आज के समान ज्ञान अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर नई नई विषयों पर बातें करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के फुलवारी अंक में आपने खेलकूद के महत्व के बारे में जाना, प्यारी सी कहानी भी सुनी और नन्हे मुन्हों की सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया। सामान्य ज्ञान के साथ बादलों की यात्रा, पानी का सफर और कुछ करंट अफेयर की बातें भी सीखी। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह अंक आप सभी के लिए ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर रहा होगा। इसी के साथ आज के फुलवारी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी अपनी रजनी दीदी को प्रस्तुतिकर्ता असद दाऊद के साथ दीजिए विदा। फिर मिलेंगे एक नए मुस्कान और नए ज्ञान के साथ, और साथ ही नई कथा कहानियों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी मजा लीजिए। जय हिंद।
1: फुलवारी, अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे

जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का

सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे

ये महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ

तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक

और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम

बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें,

0: इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का मैथिली रूपांतर।
3: हमर प्रिय देशवासी लोकनि, नमस्कार। मोनक बात में एक बेर पुनः अहां सब से जुड़ कर हमरा अत्यंत आनंद भ रहल अछि। 2026 केर आधा बरख बीतबा लेल अछि। एहि 6 मास में हमरा लोकनि मोनक बात में देशवासी लोकनिक अनेक उपलब्धि पर चर्च केलहुँ अछि। जून में से हो देश किछु एहन उपलब्धि सब प्राप्त केलक अछि जे प्रत्येक देशवासी के गर्व सँ भरि दैत अछि। ई सफलता सब देशक सुरक्षा आ आत्मनिर्भरता सँ जुड़ल अछि। हाले में हमरा कोलकाता में नौसेना सँ जुड़ल एकटा कार्यक्रम में सम्मिलित हेबाक अवसर भेटल। ओतय INS

तुनागिरी, आईएनएस संशोधक आ आईएनएस अग्रह के भारतीय नौसेनाक बेरा में सम्मिलित कैल गेल। एहि सब शिप्स के डिजाइन आ मैन्युफैक्चरिंग धरि सब किछु स्वदेशी अछि। संगी लोकनि, जूने केर मास में एविएशन सेक्टर में सेहो देश एकटा पैघ सफलता पौलक। C-295 ई विमान मेड इन इंडिया अछि आ C-295 विमान अपन पहिल उड़ान पूरा केलक अछि आ एहन 40 विमान भारते में बनायल जा रहल अछि। एहिसँ MSME आ एरोस्पेस सेक्टर के नव शक्ति भेटि रहल अछि, रोजगारक अवसर बढ़ि रहल अछि आ आत्मनिर्भर भारतक संकल्प मजबूत भऽ रहल अछि। एहि मास DRDO स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल केर सेहो सफल परीक्षण केलक अछि। एकरा DRDO केर लेबोरेटरीज आ इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स मिलकर बनेलक अछि, अर्थात आई समुद्र सँ लऽ कऽ आकाश धरि अपन भारत बेसी सुरक्षित आ आत्मनिर्भर बनि रहल अछि। संगी लोकनि, जून में एकटा आरो आयोजन भेल जाहि में सौंसे संसार भारतक प्रयास सब सँ जुड़ल आ ई कार्यक्रम छल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एहि बेर संसारक 2500 सँ बेसी स्थान पर योगक अनेक विविध कार्यक्रम भेल। हमरा लोकनिक देश में करोड़ों लोक ठाम ठाम पर योग कार्यक्रम सब में भाग लेलनि। एहि मास अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप केर सेहो बड़ चर्चा भेल। एहि में भारत कुल 114 पदक जीतलक अछि। एहि में 102 गोल्ड मेडल सेहो सम्मिलित अछि। भारत एहि चैंपियनशिप केर पदक तालिका में पहिल स्थान पर रहल। हम सब विजेता खिलाड़ी लोकनि के बहुत बहुत बधाई दैत छी। संगी लोकनि, कोनहु राष्ट्रक आत्मा ओकर लोक होइ छथि आ जखन ओहि देशक लोक कोनो संकल्प लै छथि तँ कोनहु शक्ति हुनका अपना लक्ष्य सँ डोला नहि पबै छै। राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता केर ई शक्ति भारतक बड़ पैघ पूंजी अछि आ एहि जन सहभागिताक हमरा लोकनि बेर बेर अनुभव कऽ रहल छी। संगी लोकनि, पश्चिम एशिया में बनल युद्धक स्थिति सबकें देखैत हम देशवासी लोकनि सँ किछु आग्रह केने छलहुँ। हम कहने छलहुँ जे जतऽ धरि संभव होय किछु समय लेल गोल्ड सोना किनबासँ बची। लोक सबसँ कहने छलहुँ जे विदेश में छुट्टी सब मनेबासँ बचैथ। हम लोक सबसँ कारपुलिंग के सेहो प्रोत्साहन देबाक आग्रह केने छलहुँ। हम किसान लोकनिसँ केमिकल मुक्त खेती लेल, खेत बचेबा लेल आ प्राकृतिक खादक बेसी सँ बेसी उपयोगक निवेदन केने छलहुँ। संगी लोकनि, हम देशक प्रत्येक नागरिक केर आभारी छी जे हमर निवेदनक ओ सब ने मात्र समर्थन केलनि अपितु सब दिशसँ ओहिमे अपन सहयोग कऽ रहल छथि। हमरा कतेको परिवार संदेश पठा कऽ अपन अनुभव साझी केलनि अछि। कतेको परिवार तय केलनि अछि जे घरक विवाह में एहि बेर सोना नहि किनता, आवश्यकता भेल तँ पुरना सोना के रिसाइकिल करा कऽ नव गहना बना लेता। कतेको लोक सोशल मीडिया पर इहो लिखलनि अछि जे कोना ओ एहि बेर विदेश यात्रा के टारि देलनि अछि। संगी लोकनि, कार पुलिंग के लऽ कऽ सेहो लोक सब अनेक अनुभव साझी केलनि अछि। जे लोक प्रत्येक दिन एके दिशा में अपना अपना वाहन सँ जाय छथि ओ आब संग जाय लागल छथि। लोक जते संभव होय छ बस आ मेट्रोक उपयोग कऽ रहल छथि। एहिसँ पेट्रोल आ डीजलक बचत भऽ रहल अछि। एहि प्रकारे देशक फराक फराक भाग में प्राकृतिक खाद केर उपयोग बढ़वाक सेहो समाचार सब आबि रहल अछि। संगी लोकनि, हमरा एहि बातक प्रसन्नता अछि। एहि ग्लोबल क्राइसिस केर हमरा लोकनि भारतीय मिलकर मुकाबला कऽ रहल छी। हमरा विश्वास अछि जन सहभागिताक यह शक्ति हमरा लोकनि के मजबूती देत, हमरा सबके सफल बनायत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, अपना देश में जन्मदिन, ब्याह दान, पारिवारिक कार्यक्रम हेबाक संगहि सौंसे समाजक सेहो उत्सव होइत अछि। प्रत्येक परिवार चाहैत अछि जे ओकर प्रसन्नता सब दोसराक संग सेहो साझी होय। लोक पाहुन सबके उपहारो दै छथि। संगी लोकनि, महाराष्ट्र

नांदेड़ में एकटा परिवार अपन प्रसन्नता बटवा लेल एहन काज केलक अछि जे चर्चाक विषय बनि गेल अछि। एतौ नांदेड़ केर बहादुरपुरा गाम में पेठकर परिवार रहैत अछि। ई परिवार सोचलक जे जो प्रसन्नता बटवा के अछि त एहन वस्तु देल जाय जे कठिन समय में कोनो परिवारक भरसाहा बनय। अपना घर में विवाहक अवसर पर ई परिवार गामक लगभग 3,500 लोक लेल दुर्घटना बीमाक व्यवस्था केलक। प्रत्येक व्यक्ति के 1,00,000 टकाक बीमा कवर देल गेल। एहि पहल केर पाछू केर भावना बड़ स्पर्श करय वाला अछि। परिवार देखने छल जे दुर्घटनाक बाद परिवार सब के आर्थिक कठिनता सभक सोझा करय पड़ै छै। एहन समय में एकटा छोट सन सहयोगो बड़ पैघ संबल बनि जाय छै। संगी लोकनि, सरकार देशक करोड़ों परिवार धरि सुरक्षा कवच पहुंचा रहल अछि। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केर अंतर्गत मात्र 20% वार्षिक प्रीमियम अर्थात एक वर्षक मात्र 20% प्रीमियम, वही पर 2,00,000 धरिक दुर्घटना बीमा भेटै छै। अखन धरि एहि योजना सँ 58 करोड़ सँ बेसी लोक जुड़ि चुकल छथि। एहि मे लगभग 28 करोड़ हमरा लोकनिक माता बहिन बेटी सब छथि, स्त्रीगण छथि। एहि योजना सँ पीड़ित परिवार सबके एखन धरि जे हिसाब भेटल अछि 3,700 करोड़ टाका सँ बेसी केर सहयोग भेट चुकल छनि। संगी लोकनि, ओहि तरहें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सेहो ओतबे महत्वपूर्ण अछि। ई योजना व्यक्तिक दुखद मृत्यु भेला पर हुनका परिवार के 2,00,000 टकाक बीमा कवर दैत अछि। एकर वार्षिक प्रीमियम मात्र 436 टका अछि, माने एक दिनक कठिनता सँ 1.5 टका। एहि योजना सँ अखन धरि 27 करोड़ सँ बेसी लोक जुड़ल छथि। एकरा अंतर्गत देशक लगभग 11,00,000 परिवार के लगभग 22,000 करोड़ टाकाक सहयोग भेट चुकल छनि। ई आंकड़ा सब बड़ पैघ अछि। एहि आंकड़ा सभक पाछू लाखों परिवारक अपन अपन खिस्सा छै। कतौ कोनो माई के नेना भुटकाक पढ़ाई चलैत रखबा में सहयोग भेट गेलनि, कतौ कोनो पत्नी के घरक उत्तरदायित्व सब सम्हारबाक आश्रय भेट गेलनि। संगी लोकनि, कतेक बेर बड़ पैघ सुरक्षाक आरंभ बड़ छोट राशि आ एकटा छोट सन डेग सँ भऽ सकैत अछि। छोटो सन निर्णय बड़ पैघ परिवर्तन करैत अछि। हमर अहाँ सबसँ आग्रह अछि जे अपना परिवार में एहि योजना सभक जनतब अवश्य साझी करी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मनक बात में आब बात एकटा एहन विषयक जे हजारों बरख पुरान अछि। हजारों बरख सँ मानव समाज में गहीर कऽ बैस गेल छै। ई विषय छै अंधविश्वासक। अंधविश्वास कतेको बेर मात्र एकटा गड़बड़ धारणा नहि होइ छै, ओ भय उत्पन्न करै छै। आ जखन भय मन पर हावी भऽ जाइ छै त मनुख सत्यकेँ देखबे बन्न कऽ दैत अछि। अंधविश्वास में डूबल लोक फेर बिना तर्कक, बिनु सत्य जनने एहन निर्णय लेबऽ लगै छथि जकर पैघ नोकसान होइ छै। ओतहि समाज में एहनो लोक होइ छथि जे विज्ञान, अनुभव आ तर्कक आधार पर ओहि धारणा सबके चुनौती दै छथि। अंधविश्वास सँ विश्वास धरिक ई यात्रा सहज नहि होइ छै। आ आइ हम एकटा सफल यात्रा दऽ अहाँके अवश्य जनतब देबऽ चाहै छी। संगी लोकनि, असम में एकटा चिड़ै भेटै छै। ओहि चिड़ै केर नाम छै हरगिला। हरगिला एकटा दुर्लभ पक्षी अछि। ई प्रकृति के स्वच्छ रखबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइत अछि, मुदा असम केर किछु क्षेत्र में नम्मा समय धरि एकरा अशुभ मानल जाय छल। लोक एकरा अपना लग पास देखब पसिन नहि करै छला। कतेक बेर ओहि गाछो के काटि देल जाय छल जाहि पर हरगिलाक खोता बनल रहैत छल। सोचू, एकटा एहन चिड़ै जे पर्यावरणक सफाई में सहयोग करैत अछि, वह हरगिला लोक सभक डर केर शिकार बनि गेल छल। एही क्रम में जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ई सब देखलनि। ओ लोक सभक मन में बैसल गड़बड़ धारणा के बदलबाक संकल्प लेलनि। ओ महिला लोकनि सँ बात कयलनि। ओ लोक सबके विज्ञानक आधार पर बुझेलनि। नहु नहु स्त्रीगण एहि अभियान सँ जुड़ लगली।
फिर एकटा

पैघ परिवर्तन आरंभ भेल। जाहि चिड़ै के कहियो अशुभ मानि कऽ भगायल जाइत छल वह गामक परिचिति बना लागल। हजारों ग्रामीण स्त्रीगण हरगिला के बचेबा लेल आगू एली। आइ हुनका हरगिला आर्मीक नाम सँ जानल जाइ छनि। ई स्त्रीगण समाजक संग संघर्षो कयलनि, समाज के बुझेबा लेल दिन राति काज कयलनि आ अंधविश्वास के पाछू छोड़ि कऽ रहली। ओ देखेलनि अछि जखन सही जनतब पहुँचायल जाइ छै तऽ बरखो पुरान सोचो बदलि सकै छै। संगी लोकनि, हम अक्सरहा कहै छी जे खेलाइत अछि ओ खिलैत अछि। आइ देश मे एहन युवा लोकनिक संख्या बड़ तीव्रता सँ बढ़ि रहल अछि जे खेलियो रहल छथि आ खिलियो रहल छथि। पहिनेक तुलना मे अब कतेको बेसी युवा खेल सबके कैरियर के रूप में अपना रहल छथि। हमरा नागालैंडक दूटा एहन प्रयास द जनतब भेटल अछि जे बड़ रोचक अछि। पहिल प्रयास अछि नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनि कऽ अहाँकेँ अवश्य लागल हैत ई बड़ छोट नैना सभक कोनो साधारण लीग हैत, मुदा एहन नहि अछि। ई 5 सँ 10-12 वर्षक वयस केर छोट छोट नैना फूलसँ नैना सभक एकटा असाधारण लीग अछि आ एहि नैना भुटका लोकनिक फुटबॉल खिलाड़ी सभक एकटा एहन लीग अछि जे हुनका सभक गतिकेँ आ प्रतिभा लेल हुनका प्रेरित सेहो करैत अछि आ हुनकर परिचिति सेहो बनबैत अछि। एकर आरंभ नागालैंडक बेसीसँ बेसी नैना लोकनिकेँ फुटबॉलसँ जोड़बा लेल भेल छल। 5 सँ 12 बरख धरिक बालक आ बालिका लोकनि एहिमे भाग लऽ सकै छथि। ई लीग आब अपन 3 बरख पूरा कऽ चुकल अछि। एहि लीग केर नैना सभक मोन पर बड़ नीक प्रभाव पड़ल अछि। संगी लोकनि, नागालैंड मे एकटा आरो नीक प्रयास भऽ रहल अछि। एकर नाम अछि नागालैंड वुमेन फुटसल लीग। भऽ सकैत अछि अहाँ लेल फुटसल एकटा नव नाम हैत। हम अहाँकेँ कहै छी फुटसल के इंडोर फुटबॉलो कहल जाइ छै। एहिमे एकटा टीम मे मात्र 5 खिलाड़ी होइ छथि। खेलक मैदानो फुटबॉलक मैदान सँ बड़ छोट होइत अछि। एहि कारणे खिलाड़ी सबके तीव्रता सँ निर्णय लेबऽ पड़ै छनि। हुनका अपन टेक्निक आ स्किल केर उत्तम उपयोग करऽ पड़ै छनि। नागालैंडक वुमेन फुटसल लीग हमरा लोकनिक बेटी सबके अपन प्रतिभा देखेबाक नीक अवसर दऽ रहल अछि। हम एहन पहल सब लेल नागालैंडक लोक सभक प्रशंसा करै छी। एहन प्रयास देशक आन भाग सबकेँ सेहो प्रेरणा दैत अछि। संगी लोकनि, ई टेक्नोलॉजीक युग अछि। प्रत्येक दिन नव रिसर्च भऽ रहल अछि, नव नव AI इनोवेशन्स सोझा आबि रहल अछि। एहि दौरमे एकटा प्रश्न बड़ महत्वपूर्ण अछि, लोक सभक क्रिएटिविटीकेँ कोना बचेने राखल जाय। नव टेक्नोलॉजीक संग आगू बढ़ैत हमरा लोकनि अपना जड़िसँ कोना जुड़ल रही, एहि प्रश्न सभक समाधान तकलक अछि नालंदा विश्वविद्यालय। हजारों बरख पुरान हमरा लोकनिक नालंदा विश्वविद्यालय आब नव अवतारक रूप में भारतक भाग्य बढ़ा रहल अछि। 2 बरख पहिने हमरा नालंदा विश्वविद्यालयक नव परिसरक लोकार्पणक अवसर भेटल छल। नालंदा विश्वविद्यालय शास्त्रार्थक हमरा लोकनिक प्राचीन परम्परा के फेर सँ जीवंत कयलक अछि। शास्त्रार्थ मात्र अपन बात रखबाक माध्यम नहि अछि, ई वाद संवाद आ मंथनक एकटा अनुशासित प्रक्रिया अछि। एहिमे तर्कक संग तथ्यक संग अपन बात कहब बड़ आवश्यक होइत अछि आ ओहिमे अहाँकेँ प्रवीणता हेबाक चाही। दोसराक विचारकेँ धैर्यसँ सुनबाक आ बुझबाक पाठ सेहो एहि शास्त्रार्थक प्रक्रियासँ भेटैत अछि। हमरा प्रसन्नता अछि जे नालंदा विश्वविद्यालय एकरा अपन दीक्षांत समारोहक भाग बनेलक। एहिमे भाग लेनिहार लगभग आधा स्टूडेंट्स अन्य देशसँ आयल छलाह। एकटा प्राचीन परम्पराकेँ आजुक समयसँ जोड़बाक ई प्रयास बड़ प्रशंसनीय अछि। हम एहि लेल नालंदा विश्वविद्यालयकेँ बहुत बहुत बधाई दैत छी। हम देशक आन विश्वविद्यालयसँ सेहो आग्रह करब जे ओ एहन पहल पर विचार करय। संगी लोकनि, जड़िसँ जुड़ल रहि कऽ युवा लोकनिकेँ नव टेक्नोलॉजी लेल तैयार करबाक एकटा आरो नीक प्रयास भऽ रहल अछि।

में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ डाटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम आरंभ करो जा रहल है। ई आधुनिक टेक्नोलॉजी के भारतक पारंपरिक ज्ञान से जोड़बाक दिशा में एकटा महत्वपूर्ण डेग है। ऐसा भारतीय भाषा सब लेल नव एआई टूल्स तैयार करवा में सहयोग भेटत। हमरा लोकनिक प्राचीन ग्रंथ सब आ पांडुलिपि सब के डिजिटल रूप में संरक्षित करवा काज के सेहो नव गति भेटत। हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के एहि प्रयास लेल बहुत बहुत शुभकामना दै छी। संगी लोकन, आई भारतीय संस्कृति संसारक फराक फराक हिस्सा धरि पहुँच रहल अछि। हमरा लोकनिक गीत संगीत आ आध्यात्म के संसार भरिक लोक जानि रहल छथि आ अपना रहल छथि। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नामक एकटा देश है। ओत भारतीय केर संख्या लगभग 100 है, प्रायः एहू से कम हैत। एकर बादो भारतीय संस्कृति आ आध्यात्म से जुड़ल एकटा बड़ निक प्रयास ओत भऽ रहल अछि। ओत स्पेनिश बजनिहार किछु लोक एकटा टीम बनेलनि अछि। एहि टीम केर नाम अछि ब्रह्मकमल डोमिनिकाना। टीमक सदस्य मिलकर वैदिक साहित्यक अध्ययन करै छथि। ओ लोकन वैदिक मंत्र सभक उच्चारणो सीख रहल छथि। हुनका एकर कोनो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भेटलनि अछि, मुदा ओ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनकर वैदिक मंत्र सभक ठीक उच्चारण सीखलनि अछि। आई ओ सब कतेको मंत्रक बड़ नीक जका जाप कऽ लै छथि। एहिमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम आ देवी महात्म्य सम्मिलित अछि। भारत सँ एते दूर रहि कऽ हमरा लोकनिक परम्परा सबकेँ सिखबाक हुनका लोकनिक ई प्रयास बड़ प्रेरक अछि। हम ब्रह्मकमल डोमिनिकाना ओतऽ केर सब सदस्यकेँ हुनका लोकनिक प्रयास सब लेल शुभकामना दै छी। हम एहन सब लोकक हृदय सँ प्रशंसा करै छी जे भारतीय संस्कृतिकेँ संसार भरिमे लोकप्रिय बनेबा लेल निरन्तर प्रयास कऽ रहल छथि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मेघालय केर परिचिति मेघ सँ छै, सुन्दर परिदृश्य सब सँ छै। जे मेघालय जाइ छथि हुनका ओहिठामक लोक सभक अपनत्व नम्मा समय धरि मोन रहै छनि। मुदा मेघालय केर एकटा आरो विशेषता अछि जकर हम आइ मोनक बात मे अहाँ सँ चर्च करय चाहै छी। ई अछि मेघालय केर रूट ब्रिज, बाट वाला रूट नहि, जड़ी वाला रूट। एहि रूट ब्रिज सभक खिस्सा बड़ रोचक अछि। ई ब्रिज किछु दिन वा किछु बरख मे नहि बनै छै, एकरा तैयार हेबा मे कतेको दशक लगै छै। रबर केर गाछ सभक जड़ि के नहु नहु दिशा देल जाइ छै। एहि जड़ि सबकेँ जलधारा सभक पार लऽ जायल जाइ छै। समयक संग वह जड़ि सब एकटा मजगूत ब्रिज केर रूप लऽ लै छै। एहि ब्रिज सभक एकटा आरो विशेषता छै, ई जीवित ब्रिज अछि। समय बितबाक संग ई आरो मजगूत भऽ जाइत अछि। एहि सबमे मेघालय केर लोक सभक सृजनशीलता देखाई दैत अछि। एकरा पाछू बरखोक धैर्य आ प्रकृतिक प्रति गहन सम्मान अछि। ई ब्रिज जनतब दै छै जे मनुख प्रकृतिक संग मिलकर कतेक अद्भुत वस्तु सब बना सकैत अछि। ई हमरा लोकनिक देशक, एहि धरतीक धरोहरि अछि। आब भारत मेघालय के रूट ब्रिज सबकेँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में सम्मिलित करेबा लेल आवेदन केलक अछि। संगी लोकनि, क्लाइमेट चेंज केर कारण एहि रूट ब्रिज सभक सोझा कतेको चुनौती सेहो अबैत अछि। एहन समय में मेघालय केर लोक सब एहि प्राकृतिक धरोहरिक संरक्षणक दायित्व नीक जकाँ निमाहलनि अछि। पहिने ई पता लगाबो सहज नहि छल जे एहन ब्रिज सभक संख्या कतेक अछि। स्थानीय लोक सब स्वयं एकर गिनती आरंभ कयलनि। एकर बाद समुदाय सब एहि ब्रिज सभक देखरेख केर दायित्व सेहो सम्हारलक। आई स्थानीय लोक 120 सँ बेसी रूट ब्रिज केर देखरेख कऽ रहल छथि। किछु टीम प्रत्येक बरख एहि पुल सभक स्थिति केर जाँच करैत अछि। किछु लोक लग पासक क्षेत्रकेँ मजगूत बनेबा लेल नर्सरी सेहो तैयार कयलनि अछि। एहि प्रकारक एकरा सभक संरक्षण लेल एकटा पूरा इकोसिस्टम तैयार भऽ गेल अछि। अहाँ देखने हैब एहि बरख हेली वारजीकेँ पद्म अवार्डसँ सम्मानित कयल गेलनि अछि।

ओ अपना जीवनक 50 सँ बेसी बरख एहि रूट ब्रिज सभक देखरेखमे लगेलनि अछि। हुनकर समर्पण हमरा सभ लेल प्रेरणादायक अछि। संगी लोकनि, अहाँ कहियो एहि रूट ब्रिज सभक यात्रा केने होय तऽ ओकर चित्र सभ सोशल मीडिया पर अवश्य साझी करू। अहाँक चित्र सभ आन लोककेँ सेहो मेघालय केर एहि अनुपम धरोहर दऽ जनबा लेल प्रेरित करत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा लोकनि सभ गोटे चाहै छी जे हमरा सभक गाम चिक्कन चुनमुन होय, हमरा सभक नगर सुन्नर देखाय, मुदा प्रायः कखनो रुकि कऽ ई सोचल जाइत अछि जे हमरा लोकनिक लग पास जे कुरकुट जमा होइत अछि ओकरा के साफ करैत अछि। अधिकांश लोक तऽ इएह मानि कऽ चलै छथि जे ई किनको आरोक दायित्व छनि आ वएह सफाई करता, मुदा हमरा सभक बीच किछु एहनो लोक होइ छथि जे अपना सोच सँ हमरा सभकेँ बहुत प्रेरित करै छथि। हमरा मध्य प्रदेश केर राजगढ़ जिलाक व्यावरा केर किछु बहिन लोकनि दऽ जनबाक अवसर भेटल। ओ लोकनि अपना लग पास पसरल प्लास्टिक कुरकुटकेँ हटेबाक संकल्प लेलनि। ई नहि सोचलनि जे क्यो आबि कऽ परिवर्तन आनत, ओ स्वयं नगर भरि सँ प्लास्टिक कुरकुट आ खाली बोतल सभ एकत्र करब आरम्भ कयलनि। नहु नहु ई प्रयास आगू बढ़ैत गेल आ फेर ओहि प्लास्टिककेँ इको वृक्षमे परिवर्तित कयल जाय लागल। आइ एहि इको वृक्ष केर उपयोग सार्वजनिक स्थान सभकेँ सुन्दर बनेबामे कयल जा रहल अछि। राजगढ़मे पछिला किछु मासमे सैकड़ो किलो प्लास्टिककेँ रिसाइकिल कऽ कऽ ओकर नीक उपयोग कयल गेल अछि। अर्थात जे प्लास्टिक पहिने नगरमे प्रदूषण पसारै छल, आइ वएह एहि बहिन लोकनिक प्रयाससँ नगरक सुन्दरता बढ़ेबामे योगदान दऽ रहल अछि। हम व्यावरा केर सभ बहिन लोकनि आ एहि अभियानसँ जुड़ल सङ्गी लोकनिकेँ बधाई दैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा कतेको लोक पत्र लिखि कऽ एकटा विशेष विषय पर बात करबाक सुझाव पठेलनि अछि। ई विषय गणेश उत्सवसँ जुड़ल अछि। ओना तऽ गणेश उत्सवमे अखन बड़ समय शेष अछि, मुदा लोकसभ ई आग्रह कयलनि अछि जे एहि विषय पर अखने बात हेबाक चाही। असलमे गणेश जीक मूर्त सभ बनेबाक काज बहुत पहिने आरम्भ भऽ जाइत अछि। मूर्त बनेनिहार मूर्तिक व्यापारसँ जुड़ल लोक अखनेसँ सक्रिय भऽ जाइ छथि। तैँ हमर अहाँ सभसँ एकटा आग्रह अछि, अहाँ प्रयास करी जे अहाँक घर, सोसाइटी वा लग पासक स्थान सभ पर गणपति बप्पा केर जे मूर्त स्थापित होय ओ हमरा लोकनिक देशक माटिसँ बनल होय। ओ हमरा लोकनिक अपन कुम्हार सभ आ स्थानीय कलाकार लोकनिक हाथें तैयार भेल होय। जे लोक गणेश जीक मूर्त बनबै छथि हुनकासँ सेहो हमर आग्रह होयत जे ओ माटिक मूर्तकेँ प्राथमिकता दैथि, आ जे लोक मूर्त कीनै छथि ओहो ई अवश्य देखथि जे गणपति बप्पा केर मूर्त कथीसँ बनल अछि आ कोन देशमे तैयार भेल अछि। प्लास्टर ऑफ पेरिससँ बनल मूर्त एकदम नहि कीनथि। सङ्गी लोकनि, माटिक मूर्त पूजाक बाद सहज रूपसँ पानिमे विलीन भऽ जाइत अछि। एहिसँ हमरा लोकनिक नदी सभ, पोखरि सभ आ पर्यावरणक रक्षा होइत अछि। हमरा लोकनिक आस्थो बनल रहैत अछि आ प्रकृतिक प्रति हमरा सभक दायित्व पूरा होइत अछि। जखन हमरा लोकनि स्थानीय कारीगर सभसँ मूर्त कीनै छी, हमसभ वोकल फॉर लोकल केर संकल्पकेँ मजगूत करै छी। हमरा विश्वास अछि जे एहि बेर गणेश उत्सवमे आ एहन प्रत्येक उत्सवमे हमरा लोकनि एहन सभटा बात पर अवश्य गंभीरतासँ सोचब आ देश हितमे डेग सेहो उठायब। सङ्गी लोकनि, हमरा लोकनिक देशक सभसँ पैघ शक्ति अपना देशक लोक छथि। देशक फराक फराक भागमे भऽ रहल छोट छोट प्रयास हमरा सभकेँ बहुत किछु सिखबैत अछि। ई प्रयास सभ कहैत अछि जे जखन मोनमे संकल्प होय आ समाजक सङ्ग भेटय तऽ कोनो पैघ परिवर्तन आनल जा सकैत अछि। अहाँ अपन लग पास भऽ रहल एहन प्रयास सभ दऽ हमरा अवश्य लिखैत रही, अपन विचार आ अपन सुझाव पठबैत रही। भऽ सकैत अछि अहाँक लग पासक कोनो छोट सन पहल सौंसे देश लेल प्रेरणा बनि जाय। अगिला मास हमरा लोकनि फेर भेटब, देशवासी लोकनिक किछु नव प्रयासक चर्च करब।
तखन धरि अहाँ अपन आ अपना परिवार

0: अलग ध्यान राखू। आ हाँ, जल संचय तो करबाके अछि। बरखाक पानी के एक एक टा बुन्न के हमरा लोकन के बचेबाक अछि। कैच द रेन ई अभियान कनेको ढील नहीं होब देबाक अछि। तो हमर विशेष आग्रह अछि, बरखाक बुन्न बुन्न पानि हम सब मिल के बचाबी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से आज रात 8 बजे।

नमस्कार, कार्यक्रम सखी बहिनक संग हम छी माला झा। अपने समस्त गोटे के खूब स्वागत है एक कार्यक्रम में, जो तो आधा घंटा में मोटा मोटी सब तरहक गप हमरा लोकन कह ले छी। ई संभव अपने लोकनटा कह सके छी। मन में कोनो गप नहीं रहते, सब तरहक गप एक दूसराक संग साझा करे छी। ऐसो किछ लाभ सेहो भ जाते सखी बहिन। टोल पड़ोसक हालचाल, किनको सुख दुख, धियापुताक कोनो गप हुए वा आपसी तालमेलक कोनो गप हुए, घर गृहस्थीक कतेको गप, ठीक कहिना एहि कार्यक्रम में समसामयिक चर्चाक संग मनोरंजन किछ जनतब, सुनने लगबाक किछ टिप्स आ भानस भात। एहि सभक मध्य आजुक एकटा कनिया के गप, जाहिमे ओ अपन मनतब दै छथि, तें जुड़ल रही हमर संग। गप जखन जनतब के आयल, आजुक युग डिजिटल युग भ गेल अछि। डिजिटल भेला सँ आधुनिक जीवन और सरल बनि गेल अछि। इंटरनेट आ स्मार्टफोन पर हमरा लोग निर्भर भेल जा रहल छी। धियापुता से हो घर में वा बाहर किछुए काल में कोनो सवालक जवाब पाबि लै छथि। बहुतो बच्चा त किताब से बेसी मोबाइल से पढ़े छथि। अपन सभक काज सरल, तेज आ सुविधाजनक भ गेल अछि, ते समय के बचत सेहो भ जाइत अछि। एहन परिवर्तन जीवनक संगे संग समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आ सरकारी व्यवस्था के खूब प्रभावित केलक अछि। सखी बहिन, सभक घर में धियापुता छथि, देखैत सुनैत अवश्य हैब। कोनो होमवर्क भेटलन, प्रोजेक्ट भेटलन, तुरंत ताइक नकल क के बना लेता वा प्रिंट निकाल के आन लेता। एकटा गप कही, पहिने बच्चा को होमवर्क लेल माँ वा भाय बहिन लागल रहे छलत, आ आब ओकर कोनो चिंता नहीं, बच्चा त अपने कॉलेज। मुदा कोनो लाथे

बच्चा सने बैसे की अवसर भेटैत छल ना। आब तो ओहो कठिन, बच्चा मोबाइले पर लागल रहत, अपन संगी सने गप व होमवर्क में व्यस्त रहे छै। विद्यालय में से हो स्मार्ट क्लास, ई पुस्तक आ डिजिटल रूपे कोनो परीक्षा आ मूल्यांकनक प्रक्रिया बच्चा सबके सीखनाय सेहो आब आवश्यक भ गेल अछि। एकटा क्रांति जकाँ आबि गेल अछि। जँ कोनो तकनीक के उपयोग उचित रीति सँ करी तँ व्यक्तित्वक विकासक संग ज्ञानक विकास होइत अछि आ आत्मनिर्भर सेहो होयब, आत्मविश्वास सेहो बढ़त, मोन प्रसन्न होयत। मोन प्रसन्न होयत तखने कोनो विवाह दान में जखन अपना लोकन कतु जाय छी तँ मोन लागत आ गीत सुनय में सेहो नीक लागत। तँ अपनो लोकन सुनै छी एक गीत।

0: सखी बहिन विवाह दान में अपन मिथिलाक गीत समस्त विधि सँ परिचय करबैत अछि। कहबी सेहो अछिना मिथिला में विवाह सँ विध भारी, मुदा सबटा विधक पाछा किछु न किछु कारण सेहो होइत अछि। विवाहक चर्चा जखन शुरू भेल तऽ आब पहिने सँ कनि सुविधा बढ़ि गेल अछि। डिजिटल क्रांति अयला सँ वर कन्या के तकै से लऽ विवाहक सबटा विध विधानक सामग्री एकै ठाम ऑनलाइन भेट जाइत अछि। मात्र अपन राज्य आ देश भरि धरि नहि अपितु परदेश में सेहो मिथिलांचलक सबटा पाबनि तिहार, धार्मिक अनुष्ठान वा कोनो और सुअवसर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री बड सुलभता सँ भेट जाइत अछि। एतबे नहि, आजुक धिया सब के जिनका विध विधानक जानकारी नहि छनि तऽ ओ कोनो पूजा पाठ कोना करती, विशेष कऽ विवाहक बाद। मुदा एकर चिंता आब नहि, ऑनलाइन विध विधानक जानकारी आ सामग्री सबटा भेट जाइत अछि।
1: कतौ रही अपन संस्कृति सँ जुड़ल सबटा चीज बुझत भेट जायत, एहिसँ बेसी और की चाही। कतेक सखी तऽ कोनो विध व्यवहारक गप रिकॉर्ड कऽ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दै छथि। एहने सन किछु गप जे आजुक कन्या कहती, सुनी हुनके सँ।
2: नमस्कार, हम सीमा कुमारी, सासुर भागरतपुर, नैहर वासुकी बिहारी। आजुक चर्चाक विशेष मिथिला क्षेत्र मे विवाह, विवाहक विध विधान। मिथिला क्षेत्र मे विवाह शास्त्र, वेद पुराण, तंत्र मंत्र, लोकाचार द्वारा संपन्न कयल जाइत अछि। वर कन्याक चयन के बाद सिद्धांतक प्रक्रिया के द्वारा वैवाहिक संस्कार के प्रारंभ कयल जाय शुभारंभ कयल जाइत अछि। विवाहक राति बरियाती अयलाक पश्चात विध विधान प्रारंभ भऽ जाइत अछि, जाहिमे किछु जे छै से महत्वपूर्ण विध विधान अछि, जेना बरेलाके बाद बरक परिछन, मड़वा घुमेबाक विधि, नैना जोगिन विधि, कन्या निरीक्षण, उठंगर कुटबाक विध, तत्पश्चात कन्यादानक विध, फेर सिंदूरदानक विध, लावा छिटबाक, सिंदूरदानक इत्यादि बहुत तरहक विध विधान होइत अछि अपना सभक मिथिला क्षेत्रमे विवाहक समय, जाहिमे बरेलाके बाद सबसँ पहिले परिछनक विध शुरू होइए। अपना सभके द्वारि पर बर आबै छथि, बरात अयलाके बाद बर आबै छथि द्वारि पर, तऽ कन्याक माय सखी सभक संग परिछन करऽ के लेल जाइ छथिन। हुनका परिछनक डालामे नाना तरहक वस्तु राखल जाइत अछि, जाहिमे चानन, काजर, सिंदूर, कछुआ खपरोइयामे दीप जरैत रहैए, रही, आमक पात पर पाँच गोट आमक पात पर गोबरके बनाके राखल रहैए, पिठारके बनाके राखल रहैए, तखन जे छै से ओहिमे रही रहैए गाल सिखबाक हेतु, केराके बीर, ठोक बौक, ईसब तरहक लऽ कऽ कन्याक माय बरक परिछन करै छथि। चानन काजर केलाक बाद हुनका ठोक बौक चिन्हायल जाइए, रहीसँ गाल सिकल जाइए, केरा के बीर चिन्हाओल जाइए जे ई बताओ ई की अछि। एहि तरह सखी सब ठिठोली करैत बरक साथ हुनका परिछ कऽ घर आनै छथि। तकर बाद मड़वा घुमेबाक विध होइत अछि। कन्याक भाई बर के साथ लऽ कऽ जे छै घुमै छथि, हुनकर डोपटा पकड़ि कऽ, आओर हजाम कोहा के लऽ कऽ मड़वाक चारू कोन पर घुमै छथि, आ हुनका जे छै से चारू कोन मे ओकरा घुमाबै

0: छथिन आ ओ गोहा के जे छे छुआबे छथिन ठेहुन से कि ताकि बड़ के देखे जे बड़ चल सके छथिन नीक से कि नहीं। अपना सबके विधि विधान में खुशी के संग ठिठोली भी रहे है और अपन सबके तो बाते निराला है। जखन हम सब मिथिला क्षेत्रक बात करे छी तो सुनते ही आनंद लागत रहे है। तत्पश्चात मरबा घुमेला के बाद जे छे कोबर घर आवे छे बड़ तो उत्तर नैना जोगिन होई है। तत्पश्चात जे छे से फिर कन्या चिन्हेबाक विध होइत अछि। एकर बाद जे छे से बर निकले छे तो ढंगर कुटबाक विध होइ है जाहि में 8 गोट पुरुषक संग जे छे से ओठंगर कुटल जाइए 8 चोट मारल जाइए जाहि से कुछ चावल के चौरक दाना जे निकलै है ताहि से जे छे से कंगन बने छेन ओ द कऽ जे नाइर पर छल रहैए ओहि डोरा से जे छे से हुनका सबके बान्हल जाइ छेन तखन सब गोटे बड़क साथ मिलकर 8 चोट धान कुटै छथि आ ताहि से जे चौर निकलै है आ ओ धागा से जे छे से आमक पात में कंगन बनाल जाइत अछि आ बड़ कन्या के बान्हल जाइत अछि। विधि तो बहुत तरहक अछि लेकिन और विधक चर्चा फिर दोसर बेर करब। नमस्कार।
1: आजुक कन्या से सुनि रहल छलहुँ मिथिलाक वैवाहिक विधि पर किछु चर्चा। एकटा तऽ भेल सखी बहिन जे डिजिटल क्रांति भेलासँ अपनो लोकनि अपडेट भऽ रहल छी। जिनका में जे किछु अभिरुचि अछि ओहि लेल ओ बाजार सुलभतासँ ताकि लैत छथि। जेना आकाशवाणी दरभंगा अपने लोकनि लेल अवसर प्रदान केने अछि जाहि माध्यमसँ हमरा लोकनि अपनेक कला वा कोनो व्यवसायक संघर्षक गाथा खिस्सा वा कोनो अभिरुचिके आदान प्रदान साझा करब। मुदा एहि लेल पत्र वा मेल के बाट हमरा लोकनि जोड़ि रहल छी। तैं पता लिख लेल जाउ कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिन कोड अछि 8460004 वा मेल करी akashwanidarbhanga@gmail.com पर। सखी बहिन डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन बैंकिंग सँ रुपयाक लेन देन आब बड़ तेज सुरक्षित आ पारदर्शी बनि गेल अछि। स्वास्थ्यक क्षेत्र में सेहो खूब उन्नति भेल अछि। मुदा कहबी अछि ना राजा बुद्धि सँ चोर बुद्धि भारी। तैं सतर्क रहनाइ अपने सभक काज अछि। बट श्रम से अर्जित कयल पाई रुपया के कोनो सरकारी बैंक वा डाकघर में जमा करी। बेसी ब्याज के लोभ में पड़ धोखाधड़ी के जाल में नहीं फंस जाए। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, व्यक्तिगत जानकारी के चोरी, बैंक फ्रॉड कॉल, हैकिंग जेहन समस्या बढ़ले जा रहल अछि। तैं कोनो अनचिन्हार नंबर के फोन तुरंत में नहीं उठा ली तो दोसर दिस की होइत अछि जे मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, ऑनलाइन खेल के कोनो ऐप पर बेसी समय बितेला सो वयस्कक संग धियापुता विशेष को किशोर वर्ग उचित दिशा निर्देशक अभाव में दिशाहीन भेल जा रहल छथि। जे सखी बहिन अपडेट छथि ई सब बुझि रहल छथि ओ तो अपन बच्चा के संभार लेती संभारितो छथि। मुदा जे सामान्य साक्षर बहिन लोकनि छथि समस्या हुनका लेल बेसी छनि। तैं डिजिटल साक्षर भेनाई आवश्यक अछि तखने किशोर वर्ग के उचित डेग देखा सकबनि। डिजिटल साक्षरता हुए वित्तीय साक्षरता आब सब सखी बहिन लेल आवश्यक अछि। आ ई अपने लोकनि जे वयस्क धियापुता छथि जे आब काज कऽ रहल छथि वा जिनकर शिक्षा पूरा भऽ गेल छनि ओ अपने के नीक जकाँ सिखा सकैत छथि। जखन समय के संग अपने लोकनि चलब तऽ प्रसन्न सेहो रहब आ जखन प्रसन्न रहब तऽ कोनो गीत संगीत सुनै में सेहो नीक लागत। तऽ सुनै छी फिल्म संगीत।

सखी बहिन, आइ डिजिटल क्रांति के गप कऽ रहल छी तऽ बुझल अछि आकाशवाणी बहुतो दिनसँ न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यमे मोबाइल ऐप पर सेहो सबटा प्रोग्रामक आनंद दऽ रहल अछि। तऽ अपनो लोकनि ऐप डाउनलोड करी, सबटा कार्यक्रम जतऽ रहब ओतहिसँ सुनि ली। आब एहि कार्यक्रममे आगा स्वास्थ्य आ सौन्दर्य रक्षाक गप करब। जखन अपने लोकनि डाब वा नारिकेरक पानि पीबै छी तऽ कनि मुँह आओर त्वचा पर जँ लगा लेब तऽ दाग धब्बा सब ठीक भऽ सकैत अछि। जखन कोनो फल खाइ छी जेना अनार नेबा, पाकल केरा, संतोला वा किछु आओर तऽ कनि पेस्ट जकाँ बनाके मुँह पर लगा ली। फेस पैक जकाँ कारगर होयत, मुखक कांति बनल रहत। पानि खूब पीबी, जरूरत बेसी रह तऽ छत्ता लऽ के निकली। अहाँ धियापुता पर खूब ध्यान राखी। शरीर के मजबूत आ रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि आनक लेल कहियो के माछक मूरा के मुरघंट बना ली, जे सब लेल पौष्टिक होयत। एहि लेल सामग्री के गप करी तऽ तरल माछक मूरा, बदामक दालि,

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है मैथिली नाटक घसल अठन्नी। इसके लेखक हैं काशीकांत मिश्र मधुप।

0: अरे निमिया, अरे अरे निमिया, नहीं हो, नहीं नहीं कानू सुगा हमर, नहीं कानू बुआ, अरे निमिया, अरे
1: बुझनी बुझनी छागे
2: के काकी आबत घरे में छी
1: आगे की भले ये बुआ के भर रात कहते छो मन तो ठीक छै ना
2: और की हेते काकी नेना के की कोनो शौक से हंता हुई छे भूख लागल तो कानल पेट भर गेल तो सुईत रहल
1: मार भूख लागल छे तो दूध पिया दही ऐ में कान बात कौन बात
2: कत्तों से दूध पियब यो काकी आप तो शोनी तो नहीं ऐछ देह में दूध कत्तों से अतेक काकी आई तेसर सांझ उपास ले छी परसु या जे अलवा देलन सह खेने छी
1: से तो ठीक है बिन खेने दूध कत्तों से हेतो मुदा तू तो बकरी दूध दैत रही ना
2: हाँ गरीबक जिंदगी में दुखक कोनो और छोड़ छै काकी ओहो बकरी भुटकुन बाबू खोलवा लेलन
1: कखन तू नहीं देखल ही
2: कल सांझ में मखना तमसाइत आयल आ बकरी खोल कर ड्योढ़ी पर लग गेल
1: आ तू रोकल ही ना
2: हम की रखती है काकी ओ उनटे गाय शराब दै छल जे तोहर घर वाला ततेक ने उधारी खा के मरिए छौ जे पूरा घर घराड़ी बेचियो का सुई तक नहीं दे सकब हुन
1: मुदा बकरी से उनका कौन बेगरता भलन
2: और तो कोनो नहीं हाँ हुनको नैनाक पेट खराब रहे छन कोनो ठाम सुनलखिन जे बकरीक दूध पियौला सँ पेट ठीक रहै छे बस बस खोला लेलन हमर बकरी
1: ओह हे भगवान ई की भ रहल छैक

0: पाई वाला सब गरीब वहां के कांचे चिबाव चाहे छे। सत्य अब भगवान तगवान धर्म पाप सब झूठ भ गेले।
1: काकी आब हम की करियो, पिछला 4 मास में तो घरक वस्तु जात उखैर ढेकी बर्तन बासन जे जहां छले बेच कर जीव ले लिए। मुदा मुदा काकी आब की करियो, आब की करियो काकी
0: बताए। एना कानला से की हेतो? अरे हमरा लोकनी जीवन तो बस पोखर खत्ता उपज का माछ कांकुर पकड़वा अलावा ककरो खेत पथार में बोइन कर बस।
1: मुदा मुदा हमरा तने कियो जौन में राखत चाहे थे आने अंगने कमनिहार में। काकी कहत जे ई नैना ला कर तो की मजूरी करवे आ राड़ मसो मात के अंगन काज द के भोरे भोर दर्शन करत।
0: की अंत संत ढाले जका बाजे छा
2: जो
0: भूत कुने बाबू ड्योढ़ी पर कोनो ने कोनो काज देवे करथो।
1: काकी आई बच्चा
0: हमरे लग रह दही, हम बकरी चराबा जाब तब नेने जेबे।
1: जे हिनकर विचार यह टा तो हमरो समाजक हिस्सा बुझे छथि, नहीं तो सभक लेल बोझे छे। काकी बोझे छे। मलकाइन मलकाइन
3: के छी? सामने क्या अपने आवे छे?
1: हम छी बुचनी।
3: से त बुझलियो, मुदा ई भोरे भोर पूजा पाठक पहर में कोन बेगरता भ गेल हुए?
1: मलकाइन आई 2 दिन से उपास ले छी।
3: त हम की करियो?
1: हमर माय बाप त यह लोकन छथि ने जौं कोनो काज धंधा नहीं देथिन त अन्न बिनु मर जा। मलकाइन
3: चल चल बात बनाब तो क्यों तोरा से सीखे। भरि गाम गर्द मचौने छथि जे हमरा घर वाला के मालिक के मरवा देले।
1: जे सपत खुआ लेथ मलकाइन जानत कबले सर बाबा जो हम किछुओ बाजल होई। हे लोग फुसिए हिनकर कान भरे छन, हम किछु नहीं बजलों हैं।
3: बेस बुझलियो, चल हट बाट पर से, बाड़ी जाए फूल तोड़ ले, पूजा के बेर बीतल जाए दे।
1: नहीं मलकाइन नहीं, कोनो जो गाड़ कहिए देथुन, हे हम एकदम असहाय भ गेल छी।
3: मर त हम की करियो, घर आंगन कुटिया पिसिया तोरा से त करीबे नहीं करबू, के भर दिन राण के आंगन में राखे। आ अखन कोनो कटनी रोपनी के त समय छै नै, त कोन काज दियो।
4: मलकाइन आब जौं एते खखनिया करे है त बोलू बरम बाबा के पाछू में जे कोला मरुआ है से हे कमौनी करा दियो ने।
3: की गए बुचनी, हे तो मरुआ कमाल की ने?
1: मलकाइन रोपब कमायब आ काटब अहि सब लेल त हमर सभक जन्म भेल अछि, फिर हम त एखन बेगरताक मारल छी। मलकाइन ओहुना रौदो में ठाड़ हुआ पड़ा तरहबैक। मलकाइन
3: बस बस बस गई, तोरा सबसे गप जतेक ली पैग फैग भेंट जात, मुदा काजक बेर में टग हानो लगबे। अहे सुन
1: की
3: जाय छे कमाबा तो जो, मुदा हमरा एखन लोक नहीं अछि जे जल खोई देतो, अपन कोनो जगाड़ कर लिए हम सीधा पठा दे।
1: मलकाइन हे मुदा मुदा हमरा त आई 3 साँझ भ गेले ये।
3: हे आ बेसी मात नहीं भूका, काज करवा के छौ त कर गो, आने त चल हट हमर जान छोड़ बुझले।
1: जाई छी मलकाइन।

0: के कहा कि आबत है एतै छी उत्तर बढ़िया आड़िक पाछू में आबत
1: गई तोरा एको रति सुरता नहीं रहे छो कहता कोना के नैना के आयर पर सुता देने छही
0: की करियो काकी एखने त एता छाहे रहे त सुता का कमौनी कर लगलिए मुदा ई एना अइ पहर में एतो की करे छे
1: की कहियो छोटका छागर पड़ा गेल रहे पलटू बाबू बाड़ी दिस तै बेंगवा के कहलिए जे जो बहुआ के बुचनी लग दो हम छागर हेरने अबै छी
0: भेटलन छागर
1: हाँ भेटल तो मुदा दसटा गार फजेत सुना
0: ओ आइ तो बुझाई छै जे सूरज भगवान पूरा धरती के जरा क खक्सियाह क देथिन
1: गई हमरा तोरा सन जीवक नाम मनुख नहीं छे मनुख तो बड़का धनी भुटकुन बाबू सन लोग छे
0: हाँ काकी किएक नहीं एखनो अई झरको में बर्फ आ मिश्रिक शरबत पीबैत हेता बिजुरीक पंखा तौर में बैस क ताश फेटैत हेता काकी वह सब मनुख छे हम सब तक कीड़ी मकोड़ी छी काकी कीड़ी मकोड़ी
1: छोरे समय मन उजरवाला से दुखेटा होइ छे चल उठ कने भाल सरीतर जिरा ले मुँह काली झामर भ गेल छो
0: नहीं काकी ई जात बउवा एखन सूतल छे अहिना नेने जातु हमरा त एखन आधो खेत नहीं भेलैय
1: मर त साँझ नहीं पूरा हेतौ तो एतै पड़ल रह ना
0: की करबै काकी कहुना क त पूरा करै के छे ओहो बिन पनपियाई गाज गछलिए नहीं त एक गरीब अभागल मुसमात के जौन में के रहते काकी
1: बेस त हम जाइत छी आहे सवेरे अभी आइ हाट छे हेते तो हम हूँ जे
0: हाँ हाँ ई जात हम हूँ साँझ में बोइन लका सोझे हिनके आंगन एवन हे रौद बड़ तेज छे आचर से छाइप लेथुन बउवा के

0: मलकान मलकान
1: के छी? अरे के छी? क्या एना गर्द मचौने छे?
0: हम छी मलकान बुचनी।
1: हाँ हाँ, त आर दोसर के भ सकैत अछि? गई तोहर त टाहिए तेहन छौ जे दूरे से लोक के बुझ पड़े छे।
0: मलकान, मरुआ कमाल भ गेले।
1: त कोन बड़का उपकार क देले हैं? अरे बोइन त लेबे करबे कि नहीं लेबे? कोनो मंगनी त नहीं केने छे?
0: हाँ, ताही लेल त आयल रही मलकान। असल में असगरुआ छिए ने, कूटब पीसब रानब सबटा सबटा अपने करे पड़े छे मलकान।
1: तो तोहर की विचार, हम ही पीस पका दियो कि?
0: नहीं नहीं, से हम कहाँ कहे छे मलकान। हे, असल में बेर बहुत भेल जाए छे, से
1: बेस तक कह लो जइए। हट बाट पर से धात्री गास्तर सांझ देखेबा के छे। साँझ बीत गेला पर फूल तोरा मुश्किल भ जाए।
0: नहीं नहीं मलकान, हे एखने किछ बोइन दो दे थू। तीन सांस से भूखल छी, कहुना कर ठाड़ भेल होइत अछि मलकान। गाम पर

0: बच्चा से भूखे आक्रोश करे थे।
1: मर्दूर हो गए हम तोरा बेगरते आन्हर भ जाओ। काल भोरे मालिक देखथु जे केहन काज भेल छे। भोर में मखना रहते तो भंडार खोल कर बोन तोल देतो।
0: नहीं नहीं मलकैन, नहीं एना नहीं करत मलकैन। हे कोनो ब्योत को देत, हम पैर पकड़े छे, हमरा पर दया करत मलकैन।
1: ओह बड मुश्किल लगी है गए एना भरल सांच ई महाजनी चुकवाएले हैं। कहे छे से नहीं बुझे छे ही।
0: हम की नहीं बुझे छे मलकैन।
1: आर की गए अखन आप बोन के तोल तो। साझक पार में लोग घरक लक्ष्मी के धूप दीप देखवे देच आ हम हिनका लेल तराजू डंडी पकड़ी। नहीं ए बड बुद्धि आयल छे थी।
0: मुदा मुदा हम त एही बोइनक आस में भर दिन रौद में खटल छी मलकैन। जो आबो अन्ने भेटत तो हम कोना रात के पै आ कोना फिर प्रात में कोनो काज करबै मलकैन।
1: ओ तो दूधुर मरुआ कमेले हैं आप रात को ना खेबे भोर कत रहबे आ दिन में की करबे। सबक ठेकेदारी हम लेने छियो गए
0: मलकैन। हे हमरा पर कृपा करत मलकैन। जे कहबाक हम कहत मुदा मुदा कोनो व्यवस्था करत कॉल जोड़े छेन मलकैन।
1: हे संजोग से हमरा खुट में ई अठन्नी एच लोले जो किछु बेसाही का खाली है आहे फिर भोरे भोर जुम जाइए।
0: आठे आना मलकैन, ई आठ आना में की हेते?
1: लेबे ता ले, आ नहीं तो हमरा बकतूत करवाक पलखेत नहीं अछि बुझले।
0: लाबथु

0: भाव दे छ हक?
1: चार रुपये से कतेक लेबे? एक मोन, दू मोन कि पूरा पट्टा?
0: नहीं नहीं, ओते कत से लेबे? आधा से लेतो, मुदा संग में आठे आना एच हे भोरे सबटा चुकता क देब।
1: हे हम साँझुक पहर उधारी नहीं दैत छिए, आ फिर तोरा लोग काज भरोसे उधारी देतौ तो के सध तू तोहर उधारी?
0: हे भगवान, केहन छै ई दुनिया? भरि दिन हम खटलौ तो सुपथक बोनि नहीं भेटल, किएक तऽ साँझ भ गेल रहैक, आ अब तू उधार नहीं देब?
1: जो हट हट, साँझुक पहर मास नहीं भूको। आइ काल्हि तोहर सभक मास चढ़ल रहै छो, सबटा कानून हिनके बुझल छैन।
0: जे तोहर इच्छा, जुइन दे उधारी। हे ई अलुआ की भाव छै? वह दो दे।
1: आठ आना में कतेक हेतौ? हाँ, आधा सेर। पाई निकाल।
0: दै छियै हो, कने बान्ह देब कि नहीं? हाँ ले।
1: अरे रे रे, ई की थम थम गए? तेहन लात न मारबौ जे मरिए जाबे, कि हमरे से छठू पनी?
0: हाँ हाँ हाँ, एना क्या करे छ? आँचर क्या पकड़े छ तू? हो
1: गे तोरासन खिलाड़ी मौगी के आँचर के कहे, सौंसे गत्र उघार क दाग दितियो। राख सबटा अलुआ।
0: आही रे बा, हो एना क्या करे छ? हो आखिर हम कहो न जे की के लिया, आ की भेल हो?
1: कोना ओरिया क पूछिए जे की भेल? गे होशियारी करिहे कतौ अंत, जगदीश साहू लग न चलहा आ घसल अठन्नी द क धोखा देव चल रहे हैं। राखे छ अलुआ कि नहीं? चल उठा अपन अठन्नी।
0: हे मुदा ई अठन्नी तो हमरा भुटकुन बाबूक आंगन में बोइन भेटल है।
1: हम कहे छियौ ने, उठेबे अपन अठन्नी कि नहीं, कि बजबियौ चौकीदार के?
0: हो देव देव, हो देव।

0: Malka Ayn, yay Malka Ayn, Malka Ayn.
1: Kethi, Kethi, jori kat lakthar, emhara.
0: Amchi, buchni, Malka Ayn sa kaj aichi.
1: Malka Ayn sa kun kaj cho? O puja karhal chayt. Ko hamra ki chahiyo?
2: Arre kaam kun hotay? I 10 khep aayl hoyt bolu. प्रेत जका धेने छन मलकाइन पूजा पाठ के बेर कुबेर कुछो बुझवे नहीं करे है
0: हम की करियो मालिक ओ अठन्नी कत्तो चलते नहीं छे बनिया कहे छे जे घोसल छे टलहा उनते हमरा गाइर फज्जत के लग एछ
1: कोन अठन्नी
0: एकने कने काल पहिने मलकाइन बोइन में देने रहे थे कते को लोग के देखा दिलिए एक मालिक सब कहे छे जे टलहा छे
1: ये सुने छी कने हमारा उत दलान पर
3: की कहे छी
1: ई की कहत छे जे अहा एकरा खसलहा अठन्नी देलिए गछ
3: गए बुचनी हमरा ने बुझल छल जे तो एहन खेलावल मौगी छे गए कहू तो भला हम कथी लेल टलहा अठन्नी देबे से ई तो बड़ सपरती भेल जायत अछि
0: सत्य कहे छन मलकाइन ई विश्वास करत मलकाइन ई अठन्नी हिनके दलहा छियनि हे भूख प्यास सब बाजल नहीं होइत अछि दोसर अठन्नी देत मलकाइन हम गाम पर जाएब
1: हे भगवान कतौ से एहन एहन छुछुनेर पहुँच जायत अछि से नहीं जाए रौ मखना मुंह की तक है निकाल एकरा ठोड़ धक बाहर ई अलच्छी कतौ से घसलहा अठन्नी लो लगैछ आ हमरे से चलकपनी करैत अछि
0: नहीं मालिक नहीं हम सब पद खा कर कहे छे ई अठन्नी हिनके दलहा छे
2: गए तो केहन सतबरता छे से तो सबके मालूम है सासुर आबिते साय के खा गेल आप इस सपत खाकर किकरा खाई
0: हो हम भर दिन रौद में चार कट्ठा मड़ुआ कमौने छी तक्कर बोइन मांगे छी कोनो उधारी नहीं पसेना के मोल मांगे छी भीख नहीं हो अब हमरा बते बाजल पर्यंत नहीं होया मालिक हमरा पर कृपा करियो मालिक
1: चुप रह लो छी ई दू पैग बोनिहारिन के जो हम निकती पर तोइल के बोइन दवा लागी तखन त भ गेल हमर कल्याण चल भाग त से जल्दी न त एक्के लात मारबो टन द रहि जमे जुग जुग जीवत दरोगा जी कीरो मखना
2: हां त आर की एकरा संसन केते के खून क के पचा देलिए आ ढेकारो ने लेलिए ई चलल है कानून पढ़ावे
0: मुदा हमर अपराध की है हमर अपराध की
2: गए तो भगवे एठाम स कि दियो दूला
0: किया कि नहीं देबो दूला सत्य अनुचितो पैघे के शोभा दे छक ने
2: हे त ले

0: আমার বাবা, বাবাকে কি বলে কাকি?
1: আহিরে ভাই, কি ভাগলে বেহোশ ভাগলে ও।

0: लाथा मरबे इत्रिया चरित्र तू की बुझबे सबटा भगल के ने हम एकने निकाल दे छी ला ला हमरे से चलक पड़ हमरे से चलक पड़ हमरे से
1: चंड मुंह की तक है उठा दुनू के अन्हारे में जल्दी फेंका पोखरी के बाहर पर आहे ऐ बुढ़िया के सेहो कंठ मचोड़ दे
2: जी हमरो कंठ मोख दे मखना मखना हमरो कंठ मोख दे मुदा

काशीकांत मिश्र मधुब का लिखा अभी आप मैथिली नाटक सुन रहे थे घसल अठन्नी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे सीताराम शर्मा। तकनीकी सहायक के रूप में थे सपन दास। प्रतिभागी कलाकार बोचनी रेणु कुमारी, काकी लक्ष्मी देवी, नंदलाल मखना, ताराचरण झा भुटकुन बाबू और मलकायन के रूप में थी मीरा झा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती

0: समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

श्रोताओं, आप जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर अब से थोड़ी ही देर बाद में आप सुनेंगे समवेत स्वर में देशभक्ति गीत। आज 1:15 से आप सुनिएगा पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर दिन के 2 बजे तक।

दिन के 2 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से, और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। दो बजकर 10 मिनट पर आकाशवाणी दरभंगा से रोजगार सूचना। दो बजकर 15 मिनट पर हम आप तक पहुंचाएंगे दोपहर समाचार। दिन के 2:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। अपराह्न 3 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ विद्यापति गीत। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत 5 बजे शाम को चंद गजलों के साथ।

शाम 6:25 पर मैथिली संवाद। शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर और 7 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। रात 8 श्रोताओं आपको याद दिला दें, मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आप सुन सकेंगे। रात 10 सुनिएगा रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूप रेखा। ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगली प्रस्तुति थोड़ी ही देर में पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को रंजू का सस्नेह नमस्कार। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? हम तो यही उम्मीद करते हैं, चाहते हैं जो आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक मानसिक स्वस्थ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वस्थ। और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन, वस्त्र, शुद्ध हवा और स्वस्थ मनोरंजन, जो हमारी कोशिशें होती है आप तक पहुंचाने की। जी हाँ, तो अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आप सुनते हैं अपने फरमाइश किए गए गीतों को। तो मैं पत्रों की गठरी को खोल रही हूँ और पेश करती हूँ आप सबों तक बगैर देर करते हुए। ये रहा कार्यक्रम का पहला अनुरोध, जो कि आया है गोकुल चौक गंगजला जिला सहरसा बिहार से। हमारे श्रोता हैं सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की बाली, फलना झा, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला जी। अनुपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केबट, कृष्णा केबट, रुद्रानी केबट और अंजलि केबट जी। और ये जो खत आया है ये है टावर चौक आशापुर जिला दरभंगा बिहार से। हमारे श्रोता हैं अमरलाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर और प्रेमलाल मनोहर जी। आप हैं लाल पोखर जिला दरभंगा बिहार से मोहम्मद कलीम दीवाना, दानिश बाबू, अमन बाबू, सरफराज बाबू, सोनी बेगम, खुशबू प्रवीण, साहिस्ता प्रवीण, शमा प्रवीण और डॉली प्रवीण जी। और आप हैं इनामा टोला भगवतीपुर पंचायत जिला दरभंगा बिहार से नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता, कोमल, नव्या, विभा, सुधा, ज्योति, पार्वती, राशु देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी

आपके सारे दोस्त। सुंदरखंड राजमाता नगर बुलडाना, महाराष्ट्र से आप हैं नरेंद्र नरबारे, ज्योति नरबारे, आकांक्षा नरबारे, आकाश कुमार और प्रदीप अंचल नरवारे जी। फल जी का पंजाब से आप हैं विशु खेरा, ट्विंसी खेरा, आरवी खेरा, जीवन सिंह खेरा और पूरा खेरा परिवार के सभी लोग। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं इस गीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज़ में हजरत अमीर खुसरो का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है, फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे, पसंद आप सबकी थी। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध का। और आप तो जानते ही हैं यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सबों द्वारा भेजे गए खतों पर ही आधारित होता है। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत और आनंद उठाइए आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम का, जिसका नाम है आपके अनुरोध पर। और हमारे साथ बने रहिए अभी से दिन के 2 बजे तक। और इस कार्यक्रम को अभी अभी अपने स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो मैं देख रही हूँ ये जो चिट्ठी आई है, अगला ग्राम खरारी जिला दरभंगा बिहार से हमारे श्रोता हैं गोपाल बाबू मुखिया, राजीव उर्फ छोटका बुआ और उनके परिवार के सभी लोग। झंझारपुर लंगरा चौक जिला दरभंगा बिहार से आप हैं हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी और आपके सारे दोस्त। लाल माता सुदामा नगर रटलाय जिला झालावार राजस्थान से आप हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। जिला किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण और अनुराग मोहन जी। जिला मधुबनी बिहार से आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत, चुलबुल रानी और सागर बाबू। और ये अनुरोध जो आया है बहुत दूर से है, हमें बहुत खुशी होती है जो हमारे श्रोता इतने दूर रहते हुए भी इस डिजिटल दौर में जो विद इन ए सेकेंड में मैसेजेज फ़ोन कहीं से कहीं जा सकता है, आ सकता है, और ऐसे में आकाशवाणी दरभंगा को पसंद करते हैं और बहुत सारे खत भेजते रहते हैं और अपने फरमाइश किए गए गीतों को सुनते हैं, आनंद उठाते रहते हैं, दूर बैठे सुदूर में बैठे हुए हों या बड़े शहर में हों। तो मुझे बहुत खुशी होती है और लगता है जो उन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बड़े चाव से वो सुनते हैं। तो इसी तरह सुनते रहें और अपना प्रेम बनाए रहें, यही गुजारिश है। तो ये खत है महाराष्ट्र बीड शहर से, प्रकाश पागरिया हैं, पराग पागरिया, प्रदीप पागरिया, केशव पटेल और राम निवास जी। तो लीजिए, आप सबों के फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में है। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर।

डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो करती है ना।

0: एक डाल पर तोता बोले,
1: एक डाल पर मैना
0: दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय कार्यक्रम चल रहा है पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था SH बिहारी ने, आवाजें दी थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई थी आप थे ग्राम महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से, शत्रुघ्न धारे, वाल्मीकि धारे, नीनादी धारे, स्वप्निल धारे और अजय सिरोडकर। उत्तर प्रदेश रामपुर से आप थे मोहम्मद आदिल उर्फ मुन्ना और आपके परिवार के सभी लोग। बेडी से आप थे राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबसेरे जी। ये खत आया था नरकटिया गंज राजनगर जिला मधुबनी बिहार से, आप थे कुणाल कुमार यादव, कन्हैया कुमार महतो, अजय कुमार राय और आपके सारे दोस्त। और आप थे महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे जी। खुर्दी रोड मानपुर से आप थे विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य जी। और ये खत आया था बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश उन्होंने भी की थी। संतोष कुमार मुखिया थे आप, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद जी। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उठाइए कलम और कागज, लिखिए हमारा पता कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। और आप इस कार्यक्रम को प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुना करते हैं दिन में 1:15 से दिन के 2 तक। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो ये अगला खत है नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से, हमारे श्रोता हैं उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, नूतन भाभी जी और ललन मिश्रा जी। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू जी। कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से आप हैं बत्ता परिवार के सभी लोग, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता जी। वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, अश्वाति प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और नारायण भाव खर्चे जी। और ये अगला जो अनुरोध है ये है महादेव घाट अमलेश्वर से, आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर,

तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, सुजला और रियांक्स ठाकुर जी। तो लीजिए, आप सबों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आरती। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत दिया था जयदेव ने। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की और फिल्म का नाम था हम दोनों। और इस गीत की फरमाइश आई थी आप थे नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम अशरत समीम अकरम ममता रानी शर्मा बच्चू शेख रुबीना वसीम नदीम अकरम अमन अकरम।

राम कुमारी शर्मा और चीना सैक जी, क्वाथ बिहार से आप थे नूर सैख जफर हसन और नरगिस जफर। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा जिला समस्तीपुर। बिहार से आप थे भयकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी और आपके सारे दोस्त। नाहर मंटोला जिला दरभंगा। बिहार से आप थे भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान जी। जतिका किशनपुर जिला दरभंगा। बिहार से आप थे आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज जी। श्रोताओं, अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और हमारे हाथ में बहुत सारे पत्र बचे हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ और जहाँ तक हो रहा है मैं पत्रों को ले रही हूँ। आप हैं ब्रह्मपुरा मणिगाछी जिला दरभंगा। बिहार से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानु देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार राय, प्रिंस कुमार राय, राधे कुमार विद्यार्थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाबेंद्र कुमार वर्मा जी। गांधी चौक रोपर पंजाब से हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जितेन बिरक और मिका बिरक जी। आप हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां और वसीम नूरजहां। राजनंदन गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा जी। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया जी। तो लीजिए, आप सबों के अनुरोध पर पेश है असली नकली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, घड़ी अब इशारा कर रही है कार्यक्रम से विदा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग तो समय के बीच बंधे होते हैं। तो अगले अंक तक के लिए श्रोताओं से चाहती हूँ इजाज़त। आप खुश रहेंगे, अपनों के बीच खुशियाँ बरकरार रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ विदा। एक बार फिर से कह के नमस्कार।

श्रोताओं इस समय आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार यह आयोजन दुनिया भर में 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी की शक्ति से देश मजबूत होगा और सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महज 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि नए अवतार के रूप में यह भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का आज आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इनमें से कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई परीक्षा विशेष ट्रेनें चला रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: पंचायत से पंचायत विकास दिवस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि हर महीने पंचायत की सतह पर इस दिन की नकाज से पंचायतों की हमारे तरक्की का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने कहा कि दही तरक्की के कामों को इससे रफ्तार मिलेगी। महकमा पंचायती राज की जानिब से हर महीने के आखिरी एतवार को सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि मुख्तलिफ पंचायतों में पंचायत विकास शिविर का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में गाँव वालों ने अपने मसाइल से अफसरान को वाकिफ कराया और उनके मसाइल हल हुए। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान आज रियासत के मुख्तलिफ इम्तहान मराकज़ पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त दूसरी नशस्त का इम्तहान चल रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बदउनवानी से पाक इम्तहान का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रियासत के बेशतर हिस्सों में जुनूब मगरब मानसून की सरगर्मी से हल्की से दरमियाना बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशन गोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल मशरक के हिस्सों में कई मकाम पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर
2: होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अब सुनिए रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 के लिए कुल पदों की संख्या है 1829। आवेदन शुरू होने की तिथि है 14 जुलाई 2026 से और अंतिम तिथि 3/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा इसके लिए है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए लेखा परीक्षा एवं सहायक के ऑफिशियल वेबसाइट upssssc.gov.in पर देखा जा सकता है। JKSSB 2026 के लिए कुल पदों की संख्या है 130। आवेदन 22/6/2026 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 पदों की संख्या 607। आवेदन 4 जून से ही आरंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि है 3/7 यानी कि 3 जुलाई 2026। न्यूनतम उम्र सीमा इसके लिए 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना

0: खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के ₹20 का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹436 है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के

0: बंद में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है।

बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में, और आनंद उठाइए अभी से 3 बजे तक फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी दरभंगा से समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था विवाह फिल्म से। लीजिए अगला गीत फिल्म आशिकी से है।

यहीं समाप्त हुआ। फिल्म थी मैंने दिल तुमको दिया, विवाह, आशिकी, यलगार और बाजीगर। आवाजें सोनू निगम, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सपना मुखर्जी, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और विनोद राठौर की। प्रसारण इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। अभी जो गीत आप सुन रहे थे, सूर्यनारायण पोद्दार, गौतम मिश्र और शारदा सिन्हा के स्वरों में, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। मनचाही गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्ट। तो आइए सुनते हैं नाटक।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
3: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
4: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
5: हेलो।
2: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
5: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
2: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
4: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
2: सुनाओ।
4: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
4: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
5: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
4: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानती हो उसे?
4: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर

0: रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
1: तब
0: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
1: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। ओह, शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
1: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
1: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
1: चलो, उस बेचारे दुखियारे की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
1: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
1: मदद? तुम
0: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
1: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
1: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
1: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
1: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
1: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
1: अच्छा, बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती दे के गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
6: जी, अभी आया।
5: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है। अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।

0: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
1: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
0: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
2: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
0: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
1: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
0: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
2: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
1: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
2: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
0: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
1: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
0: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
2: शाबाश, ये हुई काम की बात।
1: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
3: डॉक्टर साहब, क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
3: एक्सीडेंट हो गया। क्या कंपाउंडर, जल्दी आओ।
4: या खुदा, ये किस शैतान का काम है? शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
1: दवाएं क्या हुई?
4: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
1: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
3: ऐसा करो, हाँ? पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
1: अच्छा,
3: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
4: ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
3: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
5: डॉक्टर साहब, एक बात है।
3: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
5: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
3: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
5: वो उमा जी के घर
1: में, मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
5: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
3: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
4: डॉक्टर साहब,
3: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
6: डॉक्टर साहब,
3: कौन है?
6: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
3: आप कौन है? अरे जहनम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
5: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
3: क्या,
5: कुमार स्वामी के घर?
6: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
3: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
6: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
5: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी,
3: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
5: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
3: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
0: डॉक्टर साहब,
3: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
6: उस कमरे में।
3: चलिए आइए, उसी कमरे में।

0: आइए डॉक्टर साहब इधर से।
1: राजा बेटा बोलते क्यों नहीं, आंखें खोलो बेटा।
2: कंपाउंडर
3: जी ये लीजिए दवा का बक्सा।
2: लो
0: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
2: कोई भी दवा बेकार है।
0: डॉक्टर साहब,
3: डॉक्टर साहब
0: नहीं नहीं नहीं।
2: कंपाउंडर
0: जी
2: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
0: जी,
2: चाय निकले काफी देर हो चुकी है। ऐसा करो इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब धीरे से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
0: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फिकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
3: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
2: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
3: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
2: कुमार स्वामी जी जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
3: चलो
2: चलो राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। हाँ, आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आओ? अरे दिव्य भारती तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए।
4: थोड़ी सब्जी मुझे दीजिए ना जी।

0: भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
2: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
2: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है? राजू को

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है,
2: हमें डराती है, हजा पीछे हजा।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
2: ए लखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
2: आइए आइए आइए।
3: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
2: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
3: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
2: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की। आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
2: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है। बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
3: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
3: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
2: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
2: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
2: गुड बाय डॉक्टर।

0: जासूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने

0: पहले क्यों नहीं बताई?
1: क्या लाभ होता इसे?
0: माँ,
1: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
0: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
1: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
0: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूं।
1: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
0: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
1: किस जगह?
0: वो प्रेम की दुनिया में।
1: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम। क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे

0: कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है, ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे।
1: बिल्कुल।
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्धसत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स है जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या

0: हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे।
0: हाँ, तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। नहीं, बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा। पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है। और कोने कोने में खबर फैल जाती है और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है

0: एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है।
0: एक्चुअली तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इरेटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट। सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था

0: जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो.
1: ओके, सोलो था.
0: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर.
1: क्या बात है, क्या बात.
0: ये 2003-04 की बात कह रही.
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले. और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले. सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है. ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है.
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था.
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था. तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड. उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने के प्रोसेस में थे. और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया.
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत. मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया.
1: वो बड़ी थी और
0: वो बड़ी थी, समझदार थी. क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे. तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है.
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है. और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया. तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा. ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था. और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था? बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी.
1: अच्छा, तो उससे अंदर
0: था शायद पापा आजकल में आने वाले.
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था. मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ. पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग. हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे. पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था. तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख, जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना. उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा, ये फिल्में देखनी है.
1: वा,
0: और
1: वा,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी.
1: ओके.
0: और हमेशा ढूंढती

0: थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा,
0: में
1: वा।
0: जहां भर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है.
1: वाह!
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स. तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना. तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो या तो उन्हें फोटो

0: अयोध्या में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं,
1: क्या
0: उसमें
1: बात है।
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: बाबा
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह। हाँ,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी, इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है। इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लगनाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरो फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा

0: किया हुआ था,
1: नाटक करके, जो नाटक जिसका करके जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
0: एग्जैक्टली और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
1: क्या बात। एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
0: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब।
1: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
0: हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निलू फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
0: ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
1: वाओ,
0: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
1: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
0: बहुत ही
1: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
0: तो,
1: के हिसाब से।
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूं, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था, और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा, और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे, तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।

0: क्या बात है।
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
0: क्या बात है।
1: तो इस तरह से वो करते रहे हैं, और हमेशा मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
0: वाह वाह।
1: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
0: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: वो बताएं।
1: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं। मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है ऐसे, क्या मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी का अभी नहीं मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
0: लो,
1: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी, तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बंबई में, बिकॉज हम बंबई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था, तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया।

पापा को कि आपका क्या कहना है सुखी होली। तो पापा, कैसी सुखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। प्रिय श्रोताओं, संगीत और साहित्य की मनमोहक दुनिया में आज हम लेकर आए हैं गजलों की एक ऐसी महफिल जहां शब्दों की नजाकत, भावनाओं की गहराई और सुरों की मिठास एक साथ आपका मन मोह लेंगी। गजल केवल गीत नहीं बल्कि दिल की आवाज है जो कभी प्रेम का संदेश देती है तो कभी जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोती है और कभी मन की अनकही भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालिए, दिल और दिमाग को सुकून दीजिए और डूब जाइए गजलों के इस खूबसूरत सफर में।

रूप कुमार राठौर एवं सोनाली के गाए इस गजल के बाद अब आपको सुनवाते हैं पंकज उदास के स्वर में ये खूबसूरत सा गजल।

ये थे मुरली कृष्णा और अलका याज्ञिक। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल।

ये थी मिताली और सुना रही थी आपको गजल। दोस्तों, गजलों के इस सुरीली महफिल में आज बस इतना ही। आशा है आज प्रस्तुत की गई गजलों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको कुछ सुखद एवं यादगार पल दिए होंगे। संगीत और शायरी की यह मधुर संगत आपके जीवन में प्रेम, संवेदना और सकारात्मकता के नए रंग भरती रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले रविवार फिर आपसे होगी मुलाकात गजलों के एक नए अंक के साथ।

भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडेकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मासूम में। गुलजार की रचना थी और राहुल देव वर्मन का संगीत। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म रजिया सुल्तान से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी के बोल हैं और खयाम का संगीत।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही फिल्मी गजलों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to

0: Join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारियां प्राप्त करते हैं।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद, अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर प्रसारित होंगे। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर, एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7:00 से।

फिल्म संगीत का समय होगा शाम 7:52 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मैथिली अनुवाद का प्रसारण रात्रि के 8 बजे से हमारे श्रोता सुन सकते हैं। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। समाचार संध्या रात्रि के 8:45 से न्यूज एट 9 9 बजे एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से प्रसारित होंगे। रात्रि के 9:30 से हमारे श्रोता एक बार पुनः फिल्म संगीत का आनंद उठा सकते हैं।

और रात्रि के 10 बजे से रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। और अब कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 पर। कल हमारे किसान श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा प्रातः 6:05 से। कल का विषय होगा टॉन्सिलाइटिस कारण और निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय कुमार झा। हमारे केंद्र की भक्तिमय प्रस्तुति वंदना प्रातः 6:10 से। रामचरितमानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 से। और नमस्कार मिथिला प्रातः 7:05 से प्रसारित किए जाएंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के शेष एवं कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। स्थानीय सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे राम कुमार मलिक और गौतम मिश्र। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से।
1: कार आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे जून महीना मे स्वदेशी C-295 विमानक पहिल उड़ानक संग भारत विमानक क्षेत्र मे एकटा पैघ सफलता हासिल कयलक अछि। आकाशवाणी सँ आई मन की बात कार्यक्रम मे श्री मोदी कहलनि जे एहि समय देश मे एहन 40 और विमान बनाओल जा रहल अछि। ओ कहलनि जे एहि सँ सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम क्षेत्र आ एयरो स्पेस क्षेत्र के गति भेट रहल अछि, रोजगारक नव अवसर सृजित भऽ रहल अछि आ आत्मनिर्भर भारतक संकल्प मजबूत भऽ रहल अछि। श्री मोदी कहलनि जे एहि महीना कोलकाता मे 3 युद्धपोत, दुनागिरी, संशोधक आ अग्रयक जलावतरण कयल गेल। ओ कहलनि जे भारत समुद्र सँ लऽ कऽ आकाश धरि लगातार बेसी सुरक्षित आ आत्मनिर्भर भऽ रहल अछि। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक चर्चा करैत कहलनि जे एहि अवसर पर ई आयोजन दुनिया भरि मे 2,500 सँ बेसी स्थान पर भेल। भारत मे योग दिवस पर करोड़ों लोकक भागीदारी रहल। मन की बात कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालयक चर्चा करैत कहलनि जे एकटा नव अवतारक रूप मे ई भारतक भाग्य गढ़ि रहल अछि। श्री मोदी 2 पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसरक लोकार्पण कयने छलाह। ओ कहलनि जे नालंदा विश्वविद्यालय मे शास्त्रार्थक प्राचीन परंपरा के फेर सँ जीवित कयल गेल अछि। ओ एहि उद्यमक लेल नालंदा विश्वविद्यालय के बधाई देलनि आ दोसर विश्वविद्यालय सब सँ सेहो एहन पहल पर विचार करबाक आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे जलवायु परिवर्तनक समस्या आइ एकटा पैघ चुनौती बनि गेल अछि। ओ देशवासी सँ पर्यावरण संरक्षणक दिशा मे लगातार प्रयास करबाक अपील कयलनि अछि। अंत मे प्रधानमंत्री जल संरक्षणक संबंध मे कहलनि जे वर्षा जलक एक एक बूंद के बचाओल जेबाक चाही। ओ कहलनि जे कैच द रेन अभियान मे कनियो ढिलाई नहि होयबाक चाही। भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहलनि जे मन की बात कार्यक्रम जन जनक भावनाक आधार बनि गेल अछि। नई दिल्ली मे मन की बात कार्यक्रम सुनबाक बाद पत्रकार सब सँ गपशप करैत श्री नवीन कहलनि जे ई देश भरि मे अलग अलग स्थान पर भऽ रहल सकारात्मक प्रयास के सामने रखबाक एकटा प्लेटफॉर्म अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ मुंगेर जिलाक टेटिया बम्बर प्रखंडक टेटिया पंचायत सँ पंचायत विकास दिवस कार्यक्रमक शुरुआत कयलनि। एहि अवसर पर सभा के संबोधित करैत श्री चौधरी कहलनि जे सब महीना पंचायत स्तर पर एहि दिवसक आयोजन सँ पंचायतक समग्र विकासक मार्ग प्रशस्त होयत। ओ कहलनि जे ग्रामीण विकास कार्य के एहि सँ गति भेटत। पंचायती राज विभागक दिस सँ सब महीनाक अंतिम रवि दिन के सब ग्राम पंचायत मे पंचायत विकास दिवसक आयोजन कयल जायत। प्रदेशक कतेको भाग मे पंचायत विकास दिवसक आयोजन कयल गेल। विभिन्न पंचायत मे विकास शिविर लगा कऽ ग्रामीण समस्या सभक समाधान कयल गेल। महिला हितैषी ग्राम पंचायत विकास के विषय के लऽ कऽ आइ प्रदेशक कतेको भाग मे पंचायत विकास दिवसक आयोजन कयल गेल। ई आयोजन प्रत्येक मासक अंतिम रवि दिन के कयल जायत। मधुबनी जिलाक महिनाथपुर पंचायत मे आयोजित कार्यक्रम मे जिलाक प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ग्रामीण समस्या के सुनलनि। ओ अपन संबोधन मे कहलनि जे पंचायत सब हमर लोकतंत्रक आधारशिला अछि। दरभंगाक हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंद

0: पूर्व सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविरक उद्घाटन पथ निर्माण सह जिलाक प्रभारी मंत्री कुमार शैलेन्द्र आ वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद संयुक्त रूप सँ कयलनि। कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक बीच आई राज्यक कतेको केंद्र सब पर केंद्रीय चयन परीक्षा परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा सम्पन्न भेल। पिछला राति बहेरी प्रखंडक बिठोली गामक राम जानकी मंदिर परिसर में 126वां सगराय दीप जराय कथा गोष्ठीक आयोजन भेल। एकर मुख्य संयोजक प्रेमकांत चौधरी आ समस्त ग्रामीण छलाह। जनतब दी जे इस गोष्ठी सांझ 6 बजे सँ भोर 6 बजे धरि चलैत अछि। आई 37 वर्ष सँ ई त्रैमासिक कथा गोष्ठी निरंतर अपन बाट पर निर्वाध आगू बढ़ि रहल अछि। एहि आयोजन में जतय 32 प्रतिभागी उपस्थित भेलाह ओतहि 19 छोट पैघ कथाक पाठ भेल। अगिला 127वां आयोजन श्री राजकुमार मिश्र द्वारा हुनकर अपन पैतृक गाम बेहट झंझारपुर में सितंबर मासक दोसर शनि दिन आयोजित होयबाक निर्णय लेल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत गुनगुनैत मन सुने वाला सब श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार स्वागत संग अनिल भाई अहूँ के नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई रवि दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छी मनपसंद लोक गीत पर आधारित कार्यक्रम गुनगुनाइत मन। तो सबसे पहिने अ कार्यक्रम

0: के संकलन केने छी से कहल जाय।
1: अनिल भाई, हम आइ श्रोता लोकन के लेल कबीर दासक रचित दोहा अनलौं हैं। ई दोहा अछि, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। देखियो अनिल भाई, कबीरदास कहब छनि जे काल जे चीज करबाक अछि ओ आइए कै लिय, अखने कै लिय कलका चीज, आ जे छै पुनः जे कहै छथिन जे काज आइ करबाक अछि ओ काज के अखने करू, किएक तऽ जीवन के कोनो ठीक नहि छै, कखन ई जीवन समाप्त भऽ जायत एकर पता किनको नहि अछि। जीवन समाप्त से पहिने सब काज के शीघ्रतापूर्ण निष्पादन कऽ के स्वतंत्र रहबाक चाही।
0: देखियो, ओहि संदर्भ में रोचक गप जँ करी ने ते लोग एहि महत्वपूर्ण तथ्य के बिसरि जाय छै। हमर अहाँक जन्म कोन परिवार में, कोन परिवेश में, कतौ भेल, ई हमर अहाँ के हाथ में नहीं है। कहिया विदा हैब, कोन दिन विदा हैब, इहो अहाँ के हाथ में नहीं है। मुदा जन्म आ मृत्यु के बीच के जे समय है ओ अहाँ के हाथ में है, एकर नव निर्माण करू, किए क्षण में क्षणाक होइए कहबे के लिए, जे हमरा अहाँ के नहीं बुझल है जे कखन किनकर जीवन लीला समाप्त है। तैं समय नहीं है, समय बड्ड थोर है, जीवन बड्ड बेसी अनमोल है, ऐ जीवन के बचा कर राखू आ जे बेसी से बेसी काज में लगा सके छी लगाबो,
1: लगा ले, सकारात्मक काज जे हुआ से निश्चित रूप से कह लेबाक चाही। देखियो अनिल भाई, कहल गेल छे जे पर्यावरण संरक्षण आ स्वच्छता एक दोसर के पूरक अछि। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होइत अछि प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता आ पारिस्थितिक तंत्र के बचायब।
0: परिजोर आवरण, चारू कात जे आवरण अछि वह अछि पर्यावरण। तो गप करब कनी कालक छोट सन विराम।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
5: कर्ज किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
4: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
6: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: मेरे भाई, आई रवि दिन कहबे कलूँ जे आई जुग दिन हम श्रोता लोकन जे पसिन का चिट्ठी पठबै छथि ओहि आधार पर लोकगीत सुनै छी, तो कतौ सँ कोन श्रोता की फरमाइश केने छनि से कहियो।
1: हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि अनिल भाई, बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से लिखनाहर छथि संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, गरिमा राज, अवशेष कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र वंश प्रसाद। एकटा और चिट्ठी आयल यऽ मणिगाछी ब्रह्मपुरा से।

0: भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रिंस एवं प्रेम, अहाँ लग कोन चिट्ठी है?
1: इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से लिख रहल छथि नूतन सहनी, रासो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नाव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रुचि कुमारी, रिंकू देवी और रासो देवी। एकर अतिरिक्त गोकुल चौक गंगजला सहरसा से लिख रहल छथि सविता, राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी फलना झा, अन्यानगर सुपौल सा श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार। इस सब गोटे सुनना चाहे ये गीत
0: सुनल जाओ।

0: हमरा अंगना में उगे गए चांद तखन परवा है कि एखन जे गीत सुनल छलों गीतक कलाकार राधा मोहन मिश्र। अब अगला चिट्ठी कतौ से आयल?
1: हमरा लग जे चिट्ठी आयल ये फुटानी चौक नरहन स्टेट से आयल भाई फटफटिया झा उदयकांत ठाकुर अमन परासर बीबी आराध्या ललन मिश्रा ये सब लिखने अहाँ लग कौन चिट्ठी?
0: राजनगर मधुबनी से लिख रहा है राजकुमार गुप्ता विनीता गुप्ता गौरव कुमार कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र गुप्ता एम के गुप्ता हुनक संगी लोकन छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता संजीत कुमार गुप्ता सर्वजीत कुमार गुप्ता सुधांशु कुमार सीतामढ़ी महावीर स्थान से अपने सब छी प्रभात कुमार गुप्ता अरविंद कुमार गुप्ता मंटू कुमार गुप्ता निक्की कुमारी फुलवारी सरी पटना से अविनाश चंद्र ज्योति गुप्ता जहानवी अपी हो अपने सब गोटे सुन चाहे छी ई सुंदर संगीत
1: सुनल जाए।

0: समयक सीमा में बांधल छी। हम सब गोटे दोसर दिन फेर सँ पूर्ण गीत सुनब। हम सब आब बेर भऽ चलल अछि, सुनी हम सब प्रायोजित कार्यक्रम
1: ममता का आँचल,
0: सुनल जाय।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर आ गया। आप सारे लोग अब तक जान चुके हैं और जिन्होंने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है उनको बता दें कि ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है, उनके लिए है जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है और वो समझ रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी है या बहुत बड़ी कुछ बीमारी हो गई है या उनके किस्मत में यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो एक कोई बीमारी छोटी सी हो सकती है।

0: विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए और निश्चित रूप से आपको बच्चा होगा। और आईवीएफ पद्धति आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल पद्धति है वैसे कपल के लिए जिनको शादी के 2-3-4 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं है। और आईवीएफ भी अगर सही समय पर करवाया जाए ना तो सक्सेस रेट बहुत है, 10 में से 6-7 कपल को सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। इस कार्यक्रम ममता का आंचल में हम डॉक्टर श्रद्धा चखियार से बातचीत करते हैं, आईवीएफ विशेषज्ञ हैं और बहुत ही उम्दा आईवीएफ सेंटर है श्रद्धा आईवीएफ एंड मेटर्निटी, भिकना पहाड़ी मोर पटना में, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार के अंतिम व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे और वो इसका लाभ उठाए। आपसे भी आग्रह है कि अगर आपकी नजर में अगर कहीं भी कोई कपल है ऐसा तो उन तक आप बातें पहुंचाइए। बड़े बुजुर्गों आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में इस तरीके की समस्या है, बच्चा नहीं है आपके बेटा बेटी या पतो किसी को भी बच्चा नहीं है, तो आप उन्हें ये नंबर जो हम दे रहे हैं दे दें या आप खुद बात कर लें। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266, 9162562266। इस नंबर पर बात करें और समस्या का समाधान निकलवाएं। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, इलाज होता है, इलाज कराएं और बच्चा पाएं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चखियार हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर, आज हम इनको बुलाते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपसे पहले बता देते हैं करेंगे कि निसंतानता क्या होती है, एक बार फिर से वैसे कपल के लिए जो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं या जो नए जुड़े हैं हमसे उनके लिए। डॉक्टर श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा जैसा कि आपने सुना पहला सवाल, बिना लाग लपेट के निसंतानता क्या होती है, हमें बताएं एकदम घर के मेंबर की तरह।
1: बिल्कुल, ये जानना जरूरी है हर उस दंपति के लिए जो बच्चा की इच्छा कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप सही समय पे इलाज कराएंगे तभी आपको आपको जल्दी बच्चा ठहर जाएगा। तो निसंतानता उस दंपति को कहते हैं, वैसे दंपति को जिनके शादी के 1 साल हो गए और पिछले 1 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहते हैं।
0: अच्छा,
1: और अगर 1 साल हो गया तो अब जरूरी है जांच कराना, जांच ये जानने के लिए कि कहाँ दिक्कत है, पुरुष में दिक्कत है, औरत में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है या बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है।
0: कारण बता रही
1: हैं। बिल्कुल, अगर जो भी कारण हो अब आप जांच कराएं और इलाज कराना शुरू करें। लेकिन अगर 2 साल हो गया है और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिलें और उन्हीं से इलाज कराएं। क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर समझेंगे, आपका सही इलाज करेंगे और सही समय पे इलाज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा
0: जी,
1: उस दंपति को बच्चा ठहरने की जो क्षमता है वो घटते जाएगी। क्योंकि बच्चा ठहरने के लिए एक सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो उम्र होता है
0: जी, जी।
1: तो जैसे जैसे उम्र निकलता जाएगा बच्चा ठहरने का जो क्षमता होता है उस दंपति का वो घटता जाएगा,
0: कम होता जाएगा।
1: तो सही समय पे आप अगर निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं और सही इलाज करते तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बच्चा ठहर जाएगा।
0: आपको बच्चा ठहर जाएगा मतलब डॉक्टर श्रद्धा ने साफ साफ कह दिया कि एक छोटी सी बीमारी है निसंतानता, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए जरूर इसका समाधान निकलेगा। बहरहाल ममता का आंचल ये कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम बता रहे हैं आगे से अपनी तरफ से, और संकोच नहीं करना है, अगर थोड़ा सा भी कोई हिच है, कोई समस्या है तो आप बात कीजिए 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। हम आगे से नंबर दे रहे हैं इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि डॉक्टर साहिबा खाली होंगी नहीं होंगी या हम पूछे नहीं पूछे, देखिए बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और रास्ता जरूर निकलेगा। एक बात बताते हैं, श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी, हम जानते हैं आपका राजेश जानता है कि बहुत ही उम्दा संस्थान है, डॉक्टर श्रद्धा सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट के बीच में एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। जहां तक पैसे की बात है, अगर पैसे से कोई संकोच है

0: अमूमन पैसा मांगने में या पैसा नहीं होने पर संकोच होता है, तो अब संकोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, ध्यान से सुनिएगा, 24 महीने के अंदर आपसे पैसा लेगा, धीरे धीरे टुकड़ों में EMI पर। आप इलाज करवाइए ना, संतान सुख प्राप्त कीजिए ना, पैसा तो होता रहेगा, पैसा जाता रहेगा और आपके गोद में आपके घर में किलकारी गूंजती रहेगी। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने तो ये सारी चीजें बता दी, निसंतानता कारण, इलाज क्या है इसका, वो भी छोटे में बता दीजिए थोड़ा, अगर घर में भी अगर महिलाएं या पुरुष अगर।
1: बिल्कुल, निसंतानता का इलाज जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है लाइफस्टाइल से, यानी कि अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। जिनका वजन, अगर औरत का वजन ज्यादा है तो वजन कम कीजिए, अगर वो दंपति में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब लेता है तो उन चीजों को बंद करना होगा। घर की बनी हुई साग सब्जी खाइए, बाजार के जंक फूड्स जो होते हैं वो सब खाना बंद कीजिए, ताकि ये भी छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे बच्चा, जो निसंतान दंपति अपनाए तो उनको बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर ये सब भी आप कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो अब जरूरत है कि अब आप गोलियां खाएं। बहुत लोग को सिर्फ गोली सुई और इंजेक्शन,
0: निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद।
1: बिल्कुल, निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के बाद, क्योंकि वो जानते हैं क्या सही गोली है, क्या इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन का टाइमिंग क्या होना चाहिए, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चा ठहरने के लिए। तो अगर बहुत, इनफैक्ट 70% लोग तो सुई दवाई से ही उनको बच्चा ठहर जाता है, 80% लोग को।
0: जी जी।
1: लेकिन वो 20% जिसको बच्चा नहीं ठहरा, मतलब अब उनका बीमारी गहरा है, तो अब उनको इलाज की जरूरत है। इलाज अब उनको हो सकता है कुछ छोटे दूरबीन के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, हो सकता है वो करना पड़े, हो सकता है उनको IUI करना पड़े। लेकिन जिनको इन चीजों से भी नहीं बच्चा ठहर रहा है तो अब जरूरत है IVF कराने का। IVF एक बहुत ही सटीक तरीका है निसंतान दंपतियों के लिए बच्चा ठहरने का, और इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। जितने भी इलाज है आप गोली सुई और भी कुछ करा लीजिए, लेकिन IVF से बच्चा ठहरने का जो चांस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई दंपति अगर अपना IVF कराता है तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है।
0: इसीलिए तो कहते हैं संकोच नहीं करना है, इलाज कराना है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: आवाज उठानी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है। रास्ता आसान हो जाएगा और आसान होगा इस नंबर से जब आप डॉक्टर श्रद्धा से बातचीत करेंगी या करेंगे। 9162562266 9162562266। डॉक्टर श्रद्धा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोन किया है और पूछना लाजमी भी है। बहुत जगह कहा जाता है कि सस्ते में IVF हो रहा है और बहुत जगह कहा जाता है महंगे में IVF हो रहा है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि हमने सुना है कि IVF पद्धति में थोड़ा खर्च होता है, तो क्या जो सस्ते में कर रहे हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या क्या, क्यों कैसे सस्ते में हो रहा है?
1: देखिए ये तो जानना पड़ेगा, सस्ता अगर कुछ हो रहा है तो वो मतलब जो IVF का सस्ता और महंगा क्या आप बोल रहे हैं वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जो इलाज करा रहे हैं उस चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं। सस्ता में ऐसा ना हो कि जो इंजेक्शंस जो कि IVF के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, कहीं उस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कहीं लैब क्वालिटी जो लैब मेंटेन हो रहा है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि IVF लैब को माँ का गर्भ बोला जाता
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो माँ का गर्भ जितना स्वच्छ होता है उसी तरह से IVF लैब को मेंटेन करना होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, या फिर कहीं जेनेटिक जो होता है सेफ्टी प्रोटोकॉल जो कि सबसे जरूरी और हर दंपति हर माँ बाप का हक है, कहीं वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है
0: जी।
1: अगर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, इन चीजों का स्टैंडर्ड मेंटेन है, मतलब वो IVF जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन्ड है, वहाँ सही काम हो रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप इन सभी चीजों के जहाँ आप इलाज करा रहे हैं वहाँ इन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं।
0: श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी एक वाजिब सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, इसको अन्यथा ना लेंगी, क्या ये सारे मापदंडों पर खड़ा उतरता है?
1: बिल्कुल, हमने जो अपना हॉस्पिटल हमारा जो श्रद्धा IVF है इसमें गवर्नमेंट का जो

0: लेटेस्ट ART रूल है
1: जी।
0: हमारा हॉस्पिटल उसी तरह से बना है, PCPNDT का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमने वो कराया है। और हम समझते हैं हर दंपति का दुख जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, इसलिए हम हर दंपति को जो उच्चतम जो स्तर होता है, जो ना हम इंजेक्शंस के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं
1: जी।
0: ना IVF लैब का जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और हम जो भी करते हैं हर चीज पेशेंट को समझाते हैं ताकि पेशेंट समझ सके कि क्या इलाज हो रहा है, ताकि हम उनको सही इलाज कर पाए जिससे उनको अच्छा रिजल्ट मिले और जो पेशेंट भी सैटिस्फाइड रहे।
1: एक सवाल और, अगर पेशेंट जाता है क्लिनिक में तो उसको तो ये पूछने का हक है, पूछ सकता है ये सारी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर पेशेंट का हक है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपका खर्चा कितना होगा, उसमें कोई हिडन कॉस्ट छुपा हुआ खर्चा
1: exactly,
0: तो नहीं है।
1: हाँ, हाँ।
0: और अगर ये जो खर्चा है उसमें उसका ब्रेकडाउन पता होना चाहिए
1: हाँ।
0: कि इस खर्चे में आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी
1: जी।
0: और कुछ अलग से अगर खर्चा होगा तो वो पहले दिन ही पता होना चाहिए
1: हाँ।
0: ताकि पेशेंट हर तरह से प्रिपेयर्ड हो और निसंतानता का इलाज उनके लिए बोझ ना हो, बल्कि ये रास्ता उनके लिए मधुर हो ताकि जब बच्चा मिले वो और अच्छा खुशी का पल मिले,
1: खुशी का पल मिले। बिल्कुल सही है। देखिए सारी बातें हम खोल के रख देना चाहते हैं ममता का आंचल इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी से डॉक्टर श्रद्धा हर सप्ताह नियम से आ रही है, वर्षों से आपको जानकारियां देने, आपको सचेत करने। एक बात बता दें, पैसे की चिंता अगर है तो उसकी चिंता कीजिए नहीं, है ना। सस्ता या महंगा नहीं, क्वालिटी देखिए, का सुविधा मिल रहा है इसको समझने की जरूरत है। श्रद्धा IVF में 24 महीने में आप EMI पर पैसा दे सकते हैं और वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आपको मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों आपके लिए नंबर हम बता रहे हैं, पहले नोट कीजिए एकदम आराम से, 9162562266। और नंबर एक बार रिपीट कर रहे हैं, 9162562266। चलते चलते कुछ कहना है डॉक्टर श्रद्धा तो बोल सकती हैं, बताइए।
0: मैं ये कहना चाहती हूँ हर दंपति को जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, ये सफर डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपका ये सफर सुखद हो। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम चार कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थामेंगे और इस सफर में हम आपका साथ देंगे ताकि आपको भी जल्दी संतान सुख प्राप्त हो।
1: और चलते चलते हम भी एक बात कहना चाहते हैं, चुप्पी किसी चीज का समाधान नहीं है, चुप्पी तोड़िए, विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से बात कीजिए और अपने लिए एक खुशनुमा जिंदगी तलाश लीजिए। और इसके लिए चलते चलते एक बार फिर से हम श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी का नंबर बताना चाहेंगे, नंबर है 9162562266, 9162562266। राजेश और डॉक्टर श्रद्धा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिखना पहाड़ी पटना 4।
3: श्रोता लोकन एखन हम सब सुन रहल छलों प्रायोजित कार्यक्रम
4: ममता का आंचल।
3: एहि संग आव आजुक जे गुनगुनाइत मन कार्यक्रम छल ओकर समय सम्पन्न हेबा पई। खेती गृहस्थी में सब किसान भाई लोकन के स्वागत आ संगे सब गोटे के नमस्कार। आई खेती गृहस्थी में हम सब बड्ड बेसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्च करब, ओ जे खाद आ उर्वरक के समुचित प्रयोग। देखियो ओना बेसी किसान भाई लोकन के मन में ई भ्रम रहे छन जे बेसी खाद पानी देला से बेसी उपजा हुई है भ सकैए, अपने के तत्काल लाभ भेट जाए, मुदा एकर दूरगामी प्रभाव बड्ड बेसी खराब हुई है। अहाँ एकरा एहि रूपे सोच सकै छी जे जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ल जा रहल है, जत अकाय बन छल जंगल झाड़ छल ओहिठाम आब खेत बनि रहल है, जत खेत छल ओहिठाम घर बनि रहल है, जतः घर छल ओहिठाम घर पर घर बनि रहल अछि। कहबाक तात्पर्य

0: जे खेत के रकबा छोट भ रहल अइ, जनसंख्याक भार बढ़ि रहल अइ, एहन सन विषम परिस्थितिमे खाद उर्वरक के व्यवहार, संतुलित व्यवहार सकांक्ष भऽ कऽ करब आवश्यक, किया ई माटि अनमोल धरोहर अछि।
1: ठीके कहलिए अनिल भाई, माटि जे छै कहल जाइ छै चंदन है इस देश की माटि, तऽ माटिके जतेक सुरक्षित रखबै ओतेक बढ़िआँ रहत, ओतेक ओ नीक उपजा देत। देखियौ अनिल भाई, किसान भाई लोकनि खेती पथारीमे खूब मेहनत आ लगनसँ खेती पथारी करै छथि, जाहिमे खेतके नीक जकाँ ओ जोति कोड़िकऽ खरपतवार निकोड़नी कमौनी कऽ कऽ खेतके साफ करै छथि, सङ्गहि ओहिमे नीक बीया खेतमे फसल उगबाक लेल दै छथिन जे नीक उपजा हैत। आ नीक उपजाके लेल किसान भाइ लोकनि खेतमे खाद आओर उर्वरकके प्रयोग सेहो करै छथि, जाहिसँ फसलके गाछमे वृद्धि होइ आ फसलमे उत्पादन बढ़ै। देखियौ अनिल भाइ, खाद आ उर्वरक खेतमे जे किसान भाइ दै छथि ताहिमे माटिक उपजाउ क्षमता तऽ बढ़ैत अछि आ उपजा नीक होइतो अछि, परञ्च जे जैविक स्रोतसँ जे बनैत अछि खाद, ओकर ओ जे छै से माटिक स्वास्थ्यके बढ़ोतरी करै छै आ नीक उपजा दैत अछि।
0: देखियौ, प्रयास ई रहै जे अपन खेतमे बेसीसँ बेसी जैविक खादक व्यवहार करी, खेतके माटिक जाँचके उपरान्त माटिमे प्राप्त पोषक तत्वके मात्रा, माटिक श्रेणी आ ओकर प्रतिक्रियाक सम्बन्धमे जानकारी प्राप्त करी, एहिसँ अपनेके उर्वरकके प्रकार आ ओकर मात्राके निर्धारित करबामे मदद भेटत। अम्लीय वा क्षारीय माटिके सुधारके लेल खेतक माटिक जाँच निश्चित रूपसँ करेबाक चाही। जँ अपने नेत्रजनीय उर्वरकके व्यवहार करै छी तऽ एकर सम्पूर्ण मात्रा एक बेर नहि दऽ कऽ एकरा दू वा तीन खेपमे जँ अपने दै छियै तऽ बेसी लाभ होइए। बेसी बालुवला माटिमे पोटास सेहो दू खेपमे देब उचित अछि, मुदा ध्यान राखी जे हरेक तरहक माटिमे फसिलके लगेबा कालमे फास्फोरसके सम्पूर्ण मात्रा देबाक चाही।
1: देखियौ अनिल भाई, खाद प्राकृतिक आ जैविक पदार्थसँ तैयार होइत अछि, जे गाछ वृक्षके आ मालजालके गोबर आ निहेससँ बनैत अछि, ओतहि जे एहिसँ बनैया ओतहि जे उर्वरक जे छै रासायनिक रूपमे कारखानामे तैयार होइत अछि, जे फसलके तत्काल तऽ पोषण दैत अछि। ई रासायनिक खाद जेना यूरिया, ओहिमे 46% नाइट्रोजन रहैत अछि, एहिसँ गाछ खूब फोदाइत अछि, गाछक पात आ डाढ़ि जे छै सेहो वृद्धि होइत छै। जेना सिंगल फास्फोरसके गप करब तऽ ई रासायनिक उर्वरकसँ गाछके फास्फोरस प्रदान करैत अछि, एहिसँ गाछके जड़िके विकास सङ्ग गाछके फसलक फूल आ फलमे वृद्धि होइत छै। लेकिन वृद्धि तऽ होइत छै आ माटिके पोषक तत्व जे छै से धीरे धीरे ओकर नुकसानो करै छै रासायनिक खाद।
0: देखियौ, उर्वरकके व्यवहार अपने करै छी ने तऽ ध्यान राखी जे एकर व्यवहार बीयाके पाँतिसँ 1.5 इंच फराक पट्टीक रूपमे करक चाही। जँ अपनेके स्फूर उर्वरक दानावला भेट जाय तऽ बेसी लाभप्रद होइए। अम्लीय चूनाजुक्त लवणीय आ क्षारीय माटिमे स्फूरके व्यवहार सेहो पट्टीक रूपमे करक चाही। जतय धरि सम्भव हुए उर्वरकके सम्पर्क बीयाक सङ्ग नहि हेबाक चाही, नहि तऽ लाभक बदलामे हानि भऽ सकै। अमोनियम सल्फेट वा यूरिया खादक लगातार व्यवहार अम्लीय आ उदासीन माटिमे केलाके स्थितिमे 5-6 वर्षक अंतराल पर निश्चित रूपसँ चूनके व्यवहार करक चाही। एकर अतिरिक्त किसान भाई ध्यान राखी जे बरानी खेतके सतह पर यूरिया खाद नहि दऽ कऽ कमसँ कम 1.5 इंच गहीर नीचा देबाक चाही। अपने नीम खल्ली मिश्रित वा लौह आवृत यूरियाक व्यवहार जँ करै छी तऽ एहिसँ बेसी लाभ भेट सकैए। सङ्गे किसान भाई लोकनि फसिल पर यूरिया खादक जलीय घोल बनाकऽ सेहो व्यवहार करक चाही, मुदा ध्यान राखी जे घोलके सान्द्रता 2-3% बेसी नहि हेबाक चाही। फसिलमे रासायनिक उर्वरकके उपलब्धि बढ़ेबाक लेल ओकर बहावके कम करबाक दृष्टिसँ रासायनिक उर्वरकके घोलके तैयार कऽ ली। ओहिमे गंधकीय प्रेषमटमे यूरियाक दाना आ जैविक पदार्थ 1:2 मिलाकऽ ओकरा सुखाकऽ गोली बनाकऽ जँ व्यवहार करै छी तऽ एहिसँ बेसी लाभ भेट सकैए।

0: देखियौ अनिल भाई, रासायनिक खाद जे छै से तत्काल फसलके विशिष्ट पोषण दैत अछि, जेना नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, एहि सब तत्वके जे छै ओ माटिमे प्रदान करैत अछि आ फसलक गाछके पोषण करैत अछि आ उपजाके बढ़ोतरी करैत अछि।
1: तऽ आब गप करब हमसब एहि सन्दर्भमे आरो बेसी गप करब, मुदा छोट सन विराम।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत, गाँव के तो बढ़ा रहे हैं की गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव के फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
4: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जो है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जो है, कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
1: विरामक उपरांत अब बेर भो चलल साँझक बेर, साँझक समय भगवतीक पूजा अर्चना सब ठाम भ रहल अछि, मंदिर में तो भइए रहल अछि, संगे संग आंगने आंगन सेहो साँझ पड़ैत होयत।
0: सब अंगना में भगवती के घर रहै छै आ साँझ में अपना सब ठाम दीप जरबे के प्रथा अदो काल से चलि आबि रहल।
1: तऽ सुनी हम सब सुंदरसन एकटा भगवती गीत।
0: कुंजी बिहारी मिश्र से सुनल जाय गीत।

0: खूब सुंदर करियो मैया के ध्यान, साझक बेरे भगवती के ध्यान लगबियो, सबटा मनोकामना पूर्ण है। तमीर भाई, आब समय भो चलल है मौसम संबंधी सूचना के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से जे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त भेल है ओ किए किसान भाई लोकन के से कहियो।
1: हाँ ठीक है कहला अनिल भाई, किसान लोकन के मौसम के जो पूर्वानुमान बुझल रहे छन तो हिसाब से अपन खेती पथारी के काज निष्पादन करे छै। त आजुक पूर्वानुमान अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहे के संभावना है, हालांकि किछ स्थान पर 27 से 29 जून के दौरान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवा चले के सेहो संभावना है। एकर प्रभाव से कतौ कतौ हल्लुक से मध्यम वर्षा होय के सेहो अनुमान छै। आ एहि दौरान औसतन आ अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के संभावना है, जखन कि सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिला में तापमान 39 से 40 डिग्री पहुँचे के सेहो संभावना है। ओतय न्यूनतम तापमान के गप करब तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के संभावना है।
0: संगे 26 से 23 जून धरि 30 जून धरि अपने भिनसर में सापेक्ष आर्द्रता 80-85%, बेरुपहर 30-35% धरि रहबाक संभावना है। आई पूर्व अनुमानित अवधि में हवा जे छे से पूर्वा हवा जे छे 14-20 किलोमीटर प्रति घंटाक दर से चलबाक संभावना है। किसान भाई लोकन के लेल समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि, ओ की कहल गेल अछि मेहर भाई?
1: देखियो, किसान भाई लोकन के सामयिक सुझाव में कहल गेल छन जे उचरस जमीन में खरीफ मक्का के बुआई कऽ लेबाक चाही। अंतिम जुताई के समय 100-150 क्विंटल सरल गोबर का खाद तथा 30 किलोग्राम नेत्रजन, ओत 60 किलोग्राम स्फुर आ 50 किलोग्राम पोटासक प्रयोग सेहो कऽ लेबाक चाही। आ शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6 एवं राजेंद्र शंकर मक्का 3 किस्म के बुआई में जे पर्याप्त नमी वाला खेत है ओहिमे कऽ लेबाक चाही।
0: संगे किसान भाई लोकनि जे ऊँचास वाला जमीन अछि, ऊँच वाला जमीन अछि,

0: खेत अइ ओहिमे राहरिके रोपनीक लेल अपने खेतके तैयारी कऽ सकै छी। राहरिके लेल जे अनुशंसित प्रभेद सब कहल गेल अछि ओ अछि बहार पूसा 9, राजेंद्र राहरि 1, राजेंद्र राहरि 2 किस्मके अनुशंसा कयल गेल अछि। संगे ध्यान राखी जे एक पाँतिसँ दोसर पाँतिक दूरी 60 सेंटीमीटर, एक गाछसँ दोसर गाछक दूरी 20 सेंटीमीटर राखक चाही। अंतिम जोतकाल में प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम अस्फुर आ 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक के व्यवहार अपने कऽ सकै छी। राहरि के लेल अनुशंसित बियाक दर छै 1820 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोपसँ पहिने बियाके कार्बेंडाजिम वा क्लोरोपाइरिफॉस राइजोमियम कल्चरसँ उपचारित केनाई कखनो नहि बिसरक चाही।
1: देखियो अनिल भाई, किसान लोकनिके मोटा अनाज जकरा श्री अनाज सेहो कहल जाइ छै, ओकर जे उचास भूमि छै ओकर चयन कऽ कऽ मरुआ जे राजेंद्र मरुआ RU8, RU3 तथा कोनो राजेंद्र कौनी 1 किस्मके बुआई आप कऽ लेबाक चाही। तऽ ई छल समसामयिक सुझाव, की विचार आप?
0: आब जे छै चलैत चलैत गीतनादक आनन्द ली, सुनी एकटा सुन्दर सन फसिल गीत
1: सुनल जाउ।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुनल छलहुँ, गीतक कलाकार
1: पार्वती मिश्रा छलथि,
0: खूब सुंदर संगीत छल।
1: देखियौ अनिल भाई, अखन अपना सब किसान भाई लोकनि खेती गृहस्थीके संग संग मालजाल सेहो पोसै छै, ई गर्मी महिनामे मालजालके कनि विशेष ध्यान हुनका राखबाक चाही।
0: निश्चित रूपसँ राखक चाही, जे खास कऽ जे विदेशी नस्लवला गाय ओकरा गर्मी बर्दाश्त करऽके क्षमता बड्ड बेसी कम होइए। जँ सम्भव हुए तऽ ओकरा टाटवला घरसँ ओकरा झाँपि देबाक चाही, पंखाक व्यवस्था करक चाही, पानिक फुहारा देबाक चाही। देखियौ मीर भाइ, एहि सङ्ग आब आजुक जे गाम घर खेती गृहस्थी कार्यक्रम अइ ओकर समय लगचा रहल अइ, तऽ किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लेल जाय। नमस्कार मीर भाई।
1: नमस्कार अनिल भाई।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाम घर एवं खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बेटा और दो बेटी के बाप अरुण बाबू।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आज कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को तेजी मिल रही है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर

0: क्षेत्र को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से हम विकट स्थितियों में भी हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को

0: हमेशा विजयी रहेंगे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय लोग इस वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में ये भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
1: जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन की भावनाओं का आधार बन चुका है। नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
2: पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं न कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी और प्रेरणादायी कार्यक्रम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। और आपने देखा होगा, इसमें राजनीति की एक बात नहीं कर प्रेरणा की बात कर देश के विभिन्न भागों में जो स्वस्फूर्त प्रेरणादायी काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं।
0: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। विभिन्न जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हमारे बांका संवाददाता ने बताया कि जिले में 1123 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अररिया जिले के 19 केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो गई। शेष समा

0: चार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
3: आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था खड़ा किया है कि साल में 12 बार बैठक होगी। साथियों, अभी तक टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी 2 अक्टूबर कभी 26 जनवरी, ये सब हम लोग समय तय करते थे। लेकिन अब पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक जो अंतिम इतवार होगा उस दिन पंचायत विकास दिवस मनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
3: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई है उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपराध को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा।
3: बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। अब हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया। एक रिपोर्ट।
4: महिला हितैषी ग्राम पंचायत विषय को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले के महिनातपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
5: पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ताकि हमारा जो पंचायत है सबसे नीचे की इकाई और सबसे मजबूत इकाई सशक्त हो, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित हो और हमारा पंचायत इकाई मजबूत हो।
4: दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन पथ निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। मधेपुरा के मानिकपुर पंचायत में जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले की सभी 49 पंचायतों में पंचायत विकास शिविर आयोजित किया गया। शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया समेत विभिन्न जिलों के पंचायतों में विकास दिवस पर शिविर लगाकर पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई और पंचायतों के समग्र विकास का संकल्प लिया गया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
1: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बक्सर, भोजपुर, भभुआ, पटना, जहानाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर भोजपुर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन 30 जून तक स्थगित कर दिया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। सभी स्कूलों में 4 जुलाई तक वर्ग 8 तक पठन पाठन का कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही होगा। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआ कटहरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। संबंध में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण तथा सामग्री बरामद की है। 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत आज विभिन्न जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बांका, सुपौल, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में पोलियो मुक्त अभियान के तहत बच्चों को जीवन रक्षक दवा की 2 बूंद पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज दिघल बैंक प्रखंड के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने डोडरा पुल का अप्रोच जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। बांका जिला कार्यान्वयन समिति की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कहा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भाग्य गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर में पंचायत विकास दिवस का शुभारंभ किया, कहा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हो रहा है पंचायतों का विकास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा सम्पन्न। और मौसम विभाग ने भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना और भोजपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जून तक बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
4: जिले में मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी, जबकि जुलूस मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। राज्य में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुंगेर के जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और भागलपुर के 41 प्रतिभागी शामिल हुए। बिपार्ट पटना के मास्टर ट्रेनरों के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और ऑनलाइन मॉड्यूल की जानकारी दी। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने कहा कि प्रशिक्षण किसी भी नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन की आधारशिला है और यह अधिनियम ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विश्वस्तरीय श्रावणी मेला और कांवर यात्रा की तैयारियां जिले में तेज हो गई है। मुंगेर से गुजरने वाले 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पेयजल, स्वच्छता और स्नान संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 295 चापाकलों की मरम्मत शुरू कर दी है।

0: इसके अलावा 30 नए चापाकल लगाए जाएंगे। 150 अस्थायी तथा 20 अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार ने गैर मजरुआ जमीनों की अवैध खरीद बिक्री रोकने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिले के 18,741 प्लॉटों को रोक की सूची में शामिल किया गया है। जिला अवर निबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सूची में शामिल किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और निबंधन से पहले सभी भूखंडों का विभागीय रिकॉर्ड मिलान किया जाएगा। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब भी बड़ी संख्या में लाभुकों की KYC और आधार सीडिंग लंबित है। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1,49,301 पेंशनधारियों में से 27,167 ने KYC नहीं कराया है, जबकि 1,707 लाभुकों का आधार बैंक के खाते में से लिंक नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक राजीव रंजन ने सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन इस बार जमालपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। IRCTC के अनुसार 14 जुलाई से शुरू होने वाली 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी, रामेश्वर कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मीनाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल पर जिले में LPG आधारित आधुनिक शवदाहगृह स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नगर निगम को इसके लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने 45 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। परियोजना पूरी होने पर लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक अंतिम संस्कार व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 3 जुलाई को किला परिसर स्थित परीक्षा गृह में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल सैयद अता हसनैन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान द्वारा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बिलिया गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद के उपयोग तथा नियमित मिट्टी जाँच के महत्व की जानकारी दी। बख्तियारपुर में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तारापुर के सिनितिक केसरी ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। DAV बोकारो के छात्र सिनितिक की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से ADR भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम है क्रिमिनल, गायक कलाकार हैं कुमार शानू एवं अलका याज्ञिक, इंदिवर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

कुमार शानू एवं अलका याग्निक के गाए फिल्म क्रिमिनल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मैथिली अनुवाद।
1: हमर प्रिय देशवासी लोकनि नमस्कार। मनक बात में एक बेर पुनः अहां सब से जुड़ कर हमरा अत्यंत आनंद भ रहल अछि। 2026 के आधा बरख बीतबा लेल अछि। एहि छ मास में हमरा लोकनि मनक बात में देशवासी लोकनिक अनेक उपलब्धि पर चर्च केलहुँ अछि। जून में सेहो देश किछु एहन उपलब्धि सब प्राप्त केलक अछि जे प्रत्येक देशवासी के गर्व से भर दैत अछि। ई सफलता सब देशक सुरक्षा आ आत्मनिर्भरता से जुड़ल अछि। हाले में हमरा कोलकाता में नौसेना से जुड़ल एकटा कार्यक्रम में सम्मिलित हेबाक अवसर भेटल। ओत INS टूनागिरी, INS संशोधक आ INS अग्रह के भारतीय नौसेना के बेड़ा में सम्मिलित कयल गेल। एहि सब शिप्स के डिजाइन आ मैन्युफैक्चरिंग धरि सब किछु स्वदेशी अछि। संगी लोकनि, जूने केर मास में एविएशन सेक्टर में सेहो देश एकटा पैघ सफलता पौलक। C-295 ई विमान मेड इन इंडिया अछि आ C-295 विमान अपन पहिल उड़ान पूरा केलक अछि आ एहन 40 विमान भारते में बनायल जा रहल अछि। एहि सँ MSME आ एरोस्पेस सेक्टर के नव शक्ति भेटि रहल अछि, रोजगारक अवसर बढ़ि रहल अछि आ आत्मनिर्भर भारतक संकल्प मजबूत भ रहल अछि। एहि मास DRDO स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल केर सेहो सफल परीक्षण केलक अछि। एकरा DRDO केर लेबोरेटरीज आ इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स मिलकर बनेलक अछि। अर्थात आइ समुद्र सँ लऽ कऽ आकाश धरि अपन भारत बेसी सुरक्षित आ आत्मनिर्भर बनि रहल अछि। संगी लोकनि, जून में एकटा आरो आयोजन भेल जाहि में सौंसे संसार भारतक प्रयास सब सँ जुड़ल आ ई कार्यक्रम छल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एहि बेर संसारक 2500 सँ बेसी स्थान पर योगक अनेक विविध कार्यक्रम भेल। हमरा लोकनिक देश में

करोड़ों लोक ठाम ठाम पर योग कार्यक्रम सब में भाग लेलनि। एहि मास अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के सेहो बड़ चर्चा भेल। एहि में भारत कुल 114 पदक जीतलक अछि। एहि में 102 गोल्ड मेडल सेहो सम्मिलित अछि। भारत एहि चैंपियनशिप के पदक तालिका में पहिल स्थान पर रहल। हम सब विजेता खिलाड़ी लोकनि के बहुत बहुत बधाई दैत छी। संगी लोकनि, कोनहु राष्ट्रक आत्मा ओकर लोक होइ छथि आ जखन ओहि देशक लोक कोनो संकल्प लै छथि तऽ कोनहु शक्ति हुनका अपना लक्ष्य सँ डोला नहि पबै छै। राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता केर ई शक्ति भारतक बड़ पैघ पूंजी अछि आ एहि जन सहभागिताक हमरा लोकनि बेर बेर अनुभव कऽ रहल छी। संगी लोकनि, पश्चिम एशिया में बनल युद्धक स्थिति सबकेँ देखैत हम देशवासी लोकनि सँ किछु आग्रह केने छलहुँ। हम कहने छलहुँ जे जतऽ धरि संभव होय किछु समय लेल गोल्ड सोना किनबासँ बची। लोक सबसँ कहने छलहुँ जे विदेश में छुट्टी सब मनेबासँ बचैथ। हम लोक सबसँ कारपूलिंग के सेहो प्रोत्साहन देबाक आग्रह केने छलहुँ। हम किसान लोकनिसँ केमिकल मुक्त खेती लेल, खेत बचेबा लेल आ प्राकृतिक खादक बेसी सँ बेसी उपयोगक निवेदन केने छलहुँ। संगी लोकनि, हम देशक प्रत्येक नागरिक केर आभारी छी जे हमर निवेदनक ओ सब ने मात्र समर्थन केलनि अपितु सब दिशसँ ओहिमे अपन सहयोग कऽ रहल छथि। हमरा कतेको परिवार संदेश पठा कऽ अपन अनुभव साझी केलनि अछि। कतेको परिवार तय केलनि अछि जे घरक विवाह मे एहि बेर सोना नहि किनता, आवश्यकता भेल तऽ पुरना सोना के रिसाइकिल करा कऽ नव गहना बना लेता। कतेको लोक सोशल मीडिया पर इहो लिखलनि अछि जे कोना ओ एहि बेर विदेश यात्रा के टारि देलनि अछि। संगी लोकनि, कार पुलिंग के लऽ कऽ सेहो लोक सब अनेक अनुभव साझी केलनि अछि। जे लोक प्रत्येक दिन एके दिशा में अपना अपना वाहन सँ जाय छथि ओ आब संग जाय लागल छथि। लोक जते संभव होइ छ बस आ मेट्रोक उपयोग कऽ रहल छथि। एहि सँ पेट्रोल आ डीजलक बचत भऽ रहल अछि। एहि प्रकारे देशक फराक फराक भाग में प्राकृतिक खाद केर उपयोग बढ़वाक सेहो समाचार सब आबि रहल अछि। संगी लोकनि, हमरा एहि बातक प्रसन्नता अछि। एहि ग्लोबल क्राइसिस के हमरा लोकनि भारतीय मिलकऽ मुकाबला कऽ रहल छी। हमरा विश्वास अछि जन सहभागिताक यह शक्ति हमरा लोकनिके मजबूती देत, हमरा सबके सफल बनायत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, अपना देश में जन्मदिन, ब्याह दान, पारिवारिक कार्यक्रम हेबाक संगहि सौंसे समाजक सेहो उत्सव होइत अछि। प्रत्येक परिवार चाहैत अछि जे ओकर प्रसन्नता सब दोसराक संग सेहो साझी होय। लोक पाहुन सबके उपहारो दै छथि। संगी लोकनि, महाराष्ट्रक नांदेड़ में एकटा परिवार अपन प्रसन्नता बटवा लेल एहन काज केलक अछि जे चर्चाक विषय बनि गेल अछि। एतऽ नांदेड़ केर बहादुरपुरा गाम में पेठकर परिवार रहैत अछि। ई परिवार सोचलक जे जँ प्रसन्नता बटबाके अछि तऽ एहन वस्तु देल जाय जे कठिन समय में कोनो परिवारक भरसाहा बनाए। अपना घर में विवाहक अवसर पर ई परिवार गामक लगभग 3,500 लोक लेल दुर्घटना बीमाक व्यवस्था केलक। प्रत्येक व्यक्ति के 1,00,000 टकाक बीमा कवर देल गेल। एहि पहल केर पाछू केर भावना बड़ स्पर्श करय वाला अछि। परिवार देखने छल जे दुर्घटनाक बाद परिवार सबके आर्थिक कठिनता सभक सोझा करय पड़ै छै। एहन समय में एकटा छोट सन सहयोगो बड़ पैघ संबल बनि जाय छै। संगी लोकनि, सरकार देशक करोड़ों परिवार धरि सुरक्षा कवच पहुँचा रहल अछि। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 20% वार्षिक प्रीमियम अर्थात 1 वर्षक मात्र 20% प्रीमियम, वही पर 2,00,000 धरिक दुर्घटना बीमा भेटै छै। अखन धरि एहि योजना सँ 58 करोड़ सँ बेसी लोक जुड़ि चुकल छथि। एहि मे लगभग 28 करोड़ हमरा लोकनिक माता, बहिन, बेटी सब छथि, स्त्रीगण छथि। एहि योजना सँ पीड़ित परिवार सबके एखन धरि

0: हिसाब भेटल अछि 3,700 करोड़ टाका सँ बेसी केर सहयोग भेट चुकल छनि।
1: संगी लोकनि, ओहि तरहें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सेहो ओतबे महत्वपूर्ण अछि। ई योजना व्यक्तिक दुखद मृत्यु भेला पर हुनका परिवार के 2,00,000 टाकाक बीमा कवर दैत अछि। एकर वार्षिक प्रीमियम मात्र 436 टाका अछि, माने एक दिनक कठिनता सँ 1.5 टाका। एहि योजना सँ अखन धरि 27 करोड़ सँ बेसी लोक जुड़ल छथि। एकरा अंतर्गत देशक लगभग 11,00,000 परिवार के लगभग 22,000 करोड़ टाकाक सहयोग भेट चुकल छनि। ई आंकड़ा सब बड़ पैघ अछि। एहि आंकड़ा सभक पाछू लाखों परिवारक अपन अपन खिस्सा छै। कतौ कोनो माई के नैना भुटकाक पढ़ाई चलैत रखबा में सहयोग भेट गेलनि, कतौ कोनो पत्नी के घरक उत्तरदायित्व सब सम्हारबाक आश्रय भेट गेलनि। संगी लोकनि, कतेक बेर बड़ पैघ सुरक्षाक आरंभ बड़ छोट राशि आ एकटा छोट सन डेग सँ भऽ सकैत अछि। छोटो सन निर्णय बड़ पैघ परिवर्तन करैत अछि। हमर अहाँ सबसँ आग्रह अछि जे अपना परिवार में एहि योजना सभक जनतब अवश्य साझी करी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मनक बात में आब बात एकटा एहन विषयक जे हजारों बरख पुरान अछि। हजारों बरख सँ मानव समाज में गहीर क बैस गेल छै। ई विषय छै अंधविश्वासक। अंधविश्वास कतेको बेर मात्र एकटा गड़बड़ धारणा नहि होइ छै, ओ भय उत्पन्न करै छै आ जखन भय मन पर हावी भऽ जाइ छै तऽ मनुख सत्यकेँ देखबे बन्द कऽ दैत अछि। अंधविश्वास में डूबल लोक फेर बिना तर्कक, बिनु सत्य जनने एहन निर्णय लेबऽ लगै छथि जकर पैघ नोकसान होइ छै। ओतहि समाज में एहनो लोक होइ छथि जे विज्ञान, अनुभव आ तर्कक आधार पर ओहि धारणा सबकेँ चुनौती दै छथि। अंधविश्वास सँ विश्वास धरिक ई यात्रा सहज नहि होइ छै आ आइ हम एकटा सफल यात्रा दऽ अहाँकेँ अवश्य जनतब देबऽ चाहै छी। संगी लोकनि, असम में एकटा चिड़ै भेटै छै। ओहि चिड़ै केर नाम छै हरगिला। हरगिला एकटा दुर्लभ पक्षी अछि। ई प्रकृति के स्वच्छ रखबा में महत्वपूर्ण भूमिका निमाहित अछि, मुदा असम केर किछु क्षेत्र में नम्मा समय धरि एकरा अशुभ मानल जाय छल। लोक एकरा अपना लग पास देखब पसिन नहि करै छला। कतेक बेर ओहि गाछो के काटि देल जाय छल जाहि पर हरगिलाक खोता बनल रहैत छल। सोचू, एकटा एहन चिड़ै जे पर्यावरणक सफाई में सहयोग करैत अछि, वह हरगिला लोक सभक डर केर शिकार बनि गेल छल। एहि क्रम में जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ई सब देखलनि। ओ लोक सभक मन में बैसल गड़बड़ धारणा के बदलबाक संकल्प लेलनि। ओ महिला लोकनि सँ बात कयलनि। ओ लोक सबके विज्ञानक आधार पर बुझेलनि। नहु नहु स्त्रीगण एहि अभियान सँ जुड़ लगली। फेर एकटा पैघ परिवर्तन आरंभ भेल। जाहि चिड़ै के कहियो अशुभ मानि कऽ भगायल जाइत छल, वह गामक परिचिति बना लागल। हजारों ग्रामीण स्त्रीगण हरगिला के बचेबा लेल आगू अयली। आइ हुनका हरगिला आर्मीक नाम सँ जानल जाइ छनि। ई स्त्रीगण समाजक संग संघर्षो कयलनि, समाज के बुझेबा लेल दिन राति काज कयलनि आ अंधविश्वास के पाछू छोड़ि कऽ रहली। ओ देखेलनि अछि जखन सही जनतब पहुँचायल जाइ छै तऽ बरखो पुरान सोचो बदलि सकै छै। संगी लोकनि, हम अक्सरहा कहै छी जे खेलाइत अछि ओ खिलैत अछि। आइ देश में एहन युवा लोकनिक संख्या बड़ तीव्रता सँ बढ़ि रहल अछि जे खेलियो रहल छथि आ खिलियो रहल छथि। पहिनेक तुलना में अब कतेको बेसी युवा खेल सबके कैरियर के रूप में अपना रहल छथि। हमरा नागालैंडक 2 टा एहन प्रयास द जनतब भेटल अछि जे बड़ रोचक अछि। पहिल प्रयास अछि नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनि कऽ अहाँकेँ अवश्य लागल हैत ई बड़ छोट नैना सभक कोनो साधारण लीग हैत, मुदा एहन नहि अछि। ई 5 सँ 10-12 वर्षक वयस केर छोट छोट नैना, फूल सँ नैना सभक एकटा असाधारण लीग अछि आ एहि नैना भुटका लोकनिक फुटबॉल खिलाड़ी सभक एकटा एहन

ली गई छि जे हुनका सभक गति के आ प्रतिभा लेल हुनका प्रेरित सेहो करैत अछि आ हुनकर परिचिति सेहो बनबैत अछि। एकर आरंभ नागालैंडक बेसी सँ बेसी नैना लोकनि के फुटबॉल सँ जोड़बा लेल भेल छल। 5 सँ 12 बरख धरिक बालक आ बालिका लोकनि एहिमे भाग लऽ सकै छथि। ई लीग आब अपन 3 बरख पूरा कऽ चुकल अछि। एहि लीग केर नैना सभक मोन पर बड़ नीक प्रभाव पड़ल अछि। संगी लोकनि, नागालैंड में एकटा आरो नीक प्रयास भऽ रहल अछि। एकर नाम अछि नागालैंड वुमेन फुटसल लीग। भऽ सकैत अछि अहाँ लेल फुटसल एकटा नव नाम होयत। हम अहाँकेँ कहै छी फुटसल के इंडोर फुटबॉलो कहल जाइ छै। एहिमे एकटा टीम में मात्र 5 खिलाड़ी होइ छथि। खेलक मैदानो फुटबॉलक मैदान सँ बड़ छोट होइत अछि। एहि कारणे खिलाड़ी सबके तीव्रता सँ निर्णय लेबऽ पड़ै छनि। हुनका अपन टेक्निक आ स्किल केर उत्तम उपयोग करऽ पड़ै छनि। नागालैंडक वुमेन फुटसल लीग हमरा लोकनिक बेटी सबके अपन प्रतिभा देखेबाक नीक अवसर दऽ रहल अछि। हम एहन पहल सब लेल नागालैंडक लोक सभक प्रशंसा करै छी। एहन प्रयास देशक आन भाग सबके सेहो प्रेरणा दैत अछि। संगी लोकनि, ई टेक्नोलॉजीक युग अछि। प्रत्येक दिन नव रिसर्च भऽ रहल अछि। नव नव AI इनोवेशंस सोझा आबि रहल अछि। एहि दौर में एकटा प्रश्न बड़ महत्वपूर्ण अछि, लोक सभक क्रिएटिविटी के कोना बचेने राखल जाए। नव टेक्नोलॉजीक संग आगू बढ़ैत हमरा लोकनि अपना जड़ि सँ कोना जुड़ल रही, एहि प्रश्न सभक समाधान तकलक अछि नालंदा विश्वविद्यालय। हजारों बरख पुरान हमरा लोकनिक नालंदा विश्वविद्यालय आब नव अवतारक रूप में भारतक भाग्य बढ़ा रहल अछि। 2 बरख पहिने हमरा नालंदा विश्वविद्यालयक नव परिसरक लोकार्पणक अवसर भेटल छल। नालंदा विश्वविद्यालय शास्त्रार्थक हमरा लोकनिक प्राचीन परम्परा के फेर सँ जीवंत कयलक अछि। शास्त्रार्थ मात्र अपन बात रखबाक माध्यम नहि अछि, ई वाद संवाद आ मंथनक एकटा अनुशासित प्रक्रिया अछि। एहिमे तर्कक संग तथ्यक संग अपन बात कहब बड़ आवश्यक होइत अछि आ ओहिमे अहाँकेँ प्रवीणता हेबाक चाही। दोसराक विचार के धैर्य सँ सुनबाक आ बुझबाक पाठ सेहो एहि शास्त्रार्थक प्रक्रिया सँ भेटैत अछि। हमरा प्रसन्नता अछि जे नालंदा विश्वविद्यालय एकरा अपन दीक्षांत समारोहक भाग बनेलक। एहिमे भाग लेनिहार लगभग आधा स्टूडेंट्स अन्य देश सँ आयल छलाह। एकटा प्राचीन परम्परा के आजुक समय सँ जोड़बाक ई प्रयास बड़ प्रशंसनीय अछि। हम एहि लेल नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बहुत बधाई दैत छी। हम देशक आन विश्वविद्यालय सँ सेहो आग्रह करब जे ओ एहन पहल पर विचार करय। संगी लोकनि, जड़ि सँ जुड़ल रहि कऽ युवा लोकनि के नव टेक्नोलॉजी लेल तैयार करबाक एकटा आरो नीक प्रयास भऽ रहल अछि। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ डाटा साइंस में BTech प्रोग्राम आरंभ करऽ जा रहल अछि। ई आधुनिक टेक्नोलॉजी के भारतक पारंपरिक ज्ञान सँ जोड़बाक दिशा में एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि। एहि सँ भारतीय भाषा सब लेल नव AI टूल्स तैयार करबा में सहयोग भेटत। हमरा लोकनिक प्राचीन ग्रंथ सब आ पांडुलिपि सबके डिजिटल रूप में संरक्षित करबाक काज के सेहो नव गति भेटत। हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के एहि प्रयास लेल बहुत बहुत शुभकामना दै छी। संगी लोकनि, आइ भारतीय संस्कृति संसारक फराक फराक हिस्सा धरि पहुँचि रहल अछि। हमरा लोकनिक गीत संगीत आ आध्यात्म के संसार भरिक लोक जानि रहल छथि आ अपना रहल छथि। भारत सँ हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नामक एकटा देश अछि। ओतः भारतीय केर संख्या लगभग 100 अछि, प्रायः एहू सँ कम होयत। एकर बादो भारतीय संस्कृति आ आध्यात्म सँ जुड़ल एकटा बड़ नीक प्रयास ओतः भऽ रहल अछि। ओतः स्पेनिश बजनिहार किछु लोक एकटा टीम बनेलनि अछि। एहि टीम केर नाम अछि ब्रह्मकमल डोमिनिकाना। टीमक सदस्य मिलकर वैदिक साहित्यक अध्ययन करै छथि। ओ लोकनि वैदिक मंत्र सभक उच्चारणों सीखि रहल छथि।

एकर कोनो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भेटलनि अछि, मुदा ओ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनि कऽ वैदिक मंत्र सभक ठीक उच्चारण सिखलनि अछि। आइ ओ सभ कतेको मंत्रक बड़ नीक जकाँ जाप कऽ लै छथि। एहिमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम आ देवी महात्म्य सम्मिलित अछि। भारत सँ एते दूर रहि कऽ हमरा लोकनिक परम्परा सभकेँ सिखबाक हुनका लोकनिक ई प्रयास बड़ प्रेरक अछि। हम ब्रह्म कमल डोमिनिकाना ओतय केर सभ सदस्यकेँ हुनका लोकनिक प्रयास सभ लेल शुभकामना दै छी। हम एहन सभ लोकक हृदयसँ प्रशंसा करै छी जे भारतीय संस्कृतिकेँ संसार भरिमे लोकप्रिय बनेबा लेल निरन्तर प्रयास कऽ रहल छथि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मेघालय केर परिचिति मेघ सँ छै, सुन्दर परिदृश्य सभसँ छै। जे मेघालय जाइ छथि हुनका ओहिठामक लोकसभक अपनत्व नम्मा समय धरि मोन रहै छनि। मुदा मेघालय केर एकटा आरो विशेषता अछि जकर हम आइ मोनक बातमे अहाँसँ चर्च करय चाहै छी। ई अछि मेघालय केर रूट ब्रिज, बाट वाला रूट नहि, जड़ी वाला रूट। एहि रूट ब्रिज सभक खिस्सा बड़ रोचक अछि। ई ब्रिज किछु दिन वा किछु बरखमे नहि बनै छै, एकरा तैयार हेबामे कतेको दशक लगै छै। रबड़ केर गाछ सभक जड़िकेँ नहु नहु दिशा देल जाइ छै, एहि जड़ि सभकेँ जलधारा सभक पार लऽ जायल जाइ छै। समयक सङ्ग वएह जड़ि सभ एकटा मजगूत ब्रिज केर रूप लऽ लै छै। एहि ब्रिज सभक एकटा आरो विशेषता छै, ई जीवित ब्रिज अछि। समय बितबाक सङ्ग ई आरो मजगूत भऽ जाइत अछि। एहि सभमे मेघालय केर लोक सभक सृजनशीलता देखाई दैत अछि। एकरा पाछू बरखोक धैर्य आ प्रकृतिक प्रति गहन सम्मान अछि। ई ब्रिज जनतब अछि जे मनुख प्रकृतिक सङ्ग मिलि कऽ कतेक अद्भुत वस्तु सभ बना सकैत अछि। ई हमरा लोकनिक देशक, एहि धरतीक धरोहरि अछि। आब भारत मेघालय के रूट ब्रिज सबकेँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में सम्मिलित करेबा लेल आवेदन केलक अछि। संगी लोकनि, क्लाइमेट चेंज के कारण एहि रूट ब्रिज सभक सोझा कतेको चुनौती सेहो अबैत अछि। एहन समय में मेघालय के लोक सभ एहि प्राकृतिक धरोहरिक संरक्षणक दायित्व नीक जकाँ निमाहलनि अछि। पहिने ई पता लगाबो सहज नहि छल जे एहन ब्रिज सभक संख्या कतेक अछि। स्थानीय लोक सभ स्वयं एकर गिनती आरंभ कयलनि। एकर बाद समुदाय सभ एहि ब्रिज सभक देखरेख केर दायित्व सेहो सम्हारलक। आइ स्थानीय लोक 120 सँ बेसी रूट ब्रिज केर देखरेख कऽ रहल छथि। किछु टीम प्रत्येक बरख एहि पुल सभक स्थिति केर जाँच करैत अछि। किछु लोक लगपासक क्षेत्रकेँ मजगूत बनेबा लेल नर्सरी सेहो तैयार कयलनि अछि। एहि प्रकारक एकरा सभक संरक्षण लेल एकटा पूरा इकोसिस्टम तैयार भऽ गेल अछि। अहाँ देखने हैब एहि बरख हेली वारजीकेँ पद्म अवार्ड सँ सम्मानित कयल गेलनि अछि। ओ अपना जीवनक 50 सँ बेसी बरख एहि रूट ब्रिज सभक देखरेखमे लगेलनि अछि। हुनकर समर्पण हमरा सभ लेल प्रेरणादायक अछि। संगी लोकनि, अहाँ कहियो एहि रूट ब्रिज सभक यात्रा केने होइ तऽ ओकर चित्र सभ सोशल मीडिया पर अवश्य साझी करू। अहाँक चित्र सभ आन लोककेँ सेहो मेघालय केर एहि अनुपम धरोहर द जनबा लेल प्रेरित करत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा लोकनि सभ गोटे चाहै छी जे हमरा सभक गाम चिक्कन चुनमुन होय, हमरा सभक नगर सुन्नर देखाय। मुदा प्रायहे कखनो रुकि कऽ ई सोचल जाइत अछि जे हमरा लोकनिक लगपास जे कुरकुट जमा होइत अछि ओकरा के साफ करैत अछि। अधिकांश लोक तऽ इएह मानि कऽ चलै छथि जे ई किनको आरोक दायित्व छनि आ वएह सफाई करता। मुदा हमरा सभक बीच किछु एहनो लोक होइ छथि जे अपना सोच सँ हमरा सभकेँ बहुत प्रेरित करै छथि। हमरा मध्य प्रदेश केर राजगढ़ जिलाक व्यावरा केर किछु बहिन लोकनि द जनबाक अवसर भेटल। ओ लोकनि अपना लग पास पसरल प्लास्टिक कुरकुटकेँ हटेबाक संकल्प लेलनि। ई नहि सोचलनि जे क्यो आबि कऽ परिवर्तन आनत। ओ स्वयं नगर भरि सँ प्लास्टिक कुरकुट आ खाली बोतल सभ एकत्र करब आरंभ कयलनि। नहु नहु ई प्रयास आगू बढ़ैत गेल आ फेर ओहि प्लास्टिककेँ इको ब्रिक्समे परिवर्तित

0: कैल जाय लागल। आई एही इको वृक्ष के उपयोग सार्वजनिक स्थान सब के सुंदर बनेबा में कैल जा रहल अछि। राजगढ़ में पिछला किछ मास में सैकड़ों किलो प्लास्टिक के रिसाइकिल क के ओकर नीक उपयोग कैल गेल अछि। अर्थात जे प्लास्टिक पहिने नगर में प्रदूषण पसारे छल, आई वह एहि बहिन लोकनिक प्रयास सँ नगरक सुंदरता बढ़ेबा में योगदान दऽ रहल अछि। हम व्यावरा केर सभ बहिन लोकनि आ एहि अभियान सँ जुड़ल संगी लोकनि के बधाई दैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा कतेको लोक पत्र लिख कऽ एकटा विशेष विषय पर बात करबाक सुझाव पठेलनि अछि। ई विषय गणेश उत्सव सँ जुड़ल अछि। ओना तऽ गणेश उत्सव में अखन बड़ समय शेष अछि, मुदा लोक सभ ई आग्रह कयलनि अछि जे एहि विषय पर अखने बात हेबाक चाही। असल में गणेश जीक मूर्त सभ बनेबाक काज बहुत पहिने आरंभ भऽ जाइत अछि। मूर्त बनेनिहार मूर्तिक व्यापार सँ जुड़ल लोक अखने सँ सक्रिय भऽ जाइ छथि। तैं हमर अहाँ सभ सँ एकटा आग्रह अछि, अहाँ प्रयास करी जे अहाँक घर, सोसाइटी वा लग पासक स्थान सब पर गणपति बप्पा केर जे मूर्त स्थापित होय, ओ हमरा लोकनिक देशक माटि सँ बनल होय, ओ हमरा लोकनिक अपन कुम्हार सब आ स्थानीय कलाकार लोकनिक हाथे तैयार भेल होय। जे लोक गणेश जीक मूर्त बनबै छथि, हुनका सँ सेहो हमर आग्रह हैत जे ओ माटिक मूर्त के प्राथमिकता दैथि, आ जे लोक मूर्त कीनै छथि ओहो ई अवश्य देखथि जे गणपति बप्पा केर मूर्त कथी सँ बनल अछि आ कोन देश में तैयार भेल अछि। प्लास्टर ऑफ पेरिस सँ बनल मूर्त एकदम नहीं कीनैथि। संगी लोकनि, माटिक मूर्त पूजाक बाद सहज रूप सँ पानि में विलीन भऽ जाइत अछि। एहि सँ हमरा लोकनिक नदी सब, पोखरि सब आ पर्यावरणक रक्षा होइत अछि। हमरा लोकनिक आस्थो बनल रहैत अछि आ प्रकृतिक प्रति हमरा सभक दायित्व पूरा होइत अछि। जखन हमरा लोकनि स्थानीय कारीगर सब सँ मूर्त कीनै छी, हमसब वोकल फॉर लोकल केर संकल्प के मजबूत करै छी। हमरा विश्वास अछि जे एहि बेर गणेश उत्सव में आ एहन प्रत्येक उत्सव में हमरा लोकनि एहन सबटा बात पर अवश्य गंभीरता सँ सोचब आ देश हित में डेग सेहो उठाएब। संगी लोकनि, हमरा लोकनिक देशक सबसँ पैघ शक्ति अपना देशक लोक छथि। देशक फराक फराक भाग में भऽ रहल छोट छोट प्रयास हमरा सबके बहुत किछ सिखबैत अछि। ई प्रयास सब कहैत अछि जे जखन मन में संकल्प होय आ समाजक संग भेटाय, तो कोनो पैघ परिवर्तन आनल जा सकैत अछि। अहाँ अपन लग पास भऽ रहल एहन प्रयास सब द हमरा अवश्य लिखैत रही, अपन विचार आ अपन सुझाव पठबैत रही। भऽ सकैत अछि अहाँक लग पासक कोनो छोट सन पहल सौंसे देश लेल प्रेरणा बनि जाय। अगिला मास हमरा लोकनि फेर भेटब, देशवासी लोकनिक किछु नव प्रयासक चर्च करब। तखन धरि अहाँ अपन आ अपना परिवारक ध्यान राखू। आ हाँ, जल संचय तऽ करबाके अछि। बरखाक पानिक एक एकटा बुन्नकेँ हमरा लोकनिकेँ बचेबाक अछि। कैच द रेन ई अभियान कनेको ढील नहि होबय देबाक अछि। तऽ हमर विशेष आग्रह अछि, बरखाक बुन्न बुन्न पानि हमसब मिलि कऽ बचाबी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम का मैथिली अनुवाद, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं।

0: हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत, उपजा नहीं हैत, तो हमरा लोग खाब की।
1: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
3: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

महेंद्र कपूर एवं साथियों को भी आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम में। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म देश प्रेमी से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी एवं साथियों ने। आनंद बख्श की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अंत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म केसरी का ये गीत। इसे गाया है बी प्राक ने, मनोज मुंतशिर की रचना है और आरको का संगीत।

फिल्म केसरी के इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्न

0: पता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
0: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए

0: उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह

0: बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: Hum digital public infrastructure mein Bharat ke safal anubhavon ko सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region

0: World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final in the must-win Group A match at Lord's in London. In reply, Australia were 35-1 in 4.4 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And in men's cricket, hosts Ireland have set a target of 155 runs for India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54-4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 international in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाता है, जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।

0: आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए, जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुस के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाज़ह रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाय वकूआ पर पहुंच गईं, जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुएर म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांव के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। احمد آباد میں آج ABC مردوں کے والی بال کپ

0: में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: एक बार पुनः हम अपने तमाम श्रोताओं को आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को। तो आइए कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म किस्मत का ये गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले एवं शमशाद बेगम ने। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर का संगीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल को संगीतबद्ध किया है SD वर्मन ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को आइए सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा में। इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

लता मंगेशकर एवं महेंद्र कपूर को भी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार किए जावे। और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म फर्ज का ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मुकेश एवं लता मंगेशकर के गाए फिल्म फर्ज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a tabla recital by Pandit Sudhir Pandey. Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh. Inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi, and Arjada gharanas.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mridangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mridangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein unhone vikhyat mridangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एनएस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री M.K.R. प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुस श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एनएस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टीवी शंकर नारायण, Sri T.N. Sheshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N.S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Astana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: Tonight, Sri N.S. Kalyanaraman begins his Laya Vinyasam on Mridangam with Mishra Jati Jampetalam.